ओम शांति। हम इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं, हमने जन्म जन्म हीरो पार्ट बजाए हैं। जितना जितना हम योगयुक्त होते जाएंगे, जितना जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हम स्वदर्शन चक्रधारी होते जाएंगे, तो हमने जो जो हीरो पार्ट बजाए हैं जन्म जन्म, वो हमारे सम्मुख आता जाएगा। इतना क्लियर आएगा मानो साक्षात्कार हो रहा हो, तब हमें बहुत नशा चढ़ेगा। ये पार्ट मेरे हैं। और तब हमारे वर्तमान में यदि कोई कमी रही होगी, कोई छोटा मोटा भय समाया होगा, कोई इम्प्योरिटी बसी होगी, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो हम हीरो एक्टर हैं, पूर्वज हैं, हमें सभी को प्यार की दृष्टि से देखना है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो। हमें किसी के लिए भी अपने मन में तनिक भी घृणा भाव, नफरत का भाव नहीं रखना है, सभी अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष धर्म वालों को देखकर मन में नफरत आती है, क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री बड़ी खराब रही है, परंतु वो सब काम तो राजाओं ने किया था, सम्राटों ने किया था। कोई सम्राट बड़े क्रूर थे, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए हम सभी धर्मों की आत्माओं को प्यार दें। याद रखें, हम महान हैं, सभी धर्म आत्माओं के पूर्वज हैं। हमारी प्यार की दृष्टि उनमें सुख शांति का संचार करेगी। हम उन्हें अपना समझेंगे तो वो भी हमें अपना ही समझेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति काम करेगी। हमें याद रखना है, जब तक हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए नफरत का भाव है, हमारा योग संपूर्ण नहीं हो पाएगा, हमारा योग टूटता ही रहेगा। इसलिए अपने को योगयुक्त बनाने के लिए भी हमें चित्त को सबके लिए प्रेम और सुभावनाओं से भरपूर करना है। किसी के लिए भी मन में यदि नफरत भाव बसा हो तो उसको पूरी तरह निकाल दें। चेक कर लें, कोई अपना, किसी ने हमें कष्ट दिया हो वो मनुष्य, किसी के अवगुण हमें बहुत दिखाई देते हों वो, या कुछ और किसी कारण से हमारे मन में किसी के लिए नफरत तो नहीं बसी है। नफरत का नुकसान दूसरों को कम और मनुष्य को स्वयं को बहुत ज्यादा होता है। ये घृणा एक घुण की तरह है जो हमारी सुख शांति को अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी। आप जानते हैं, हमारे इस देह में 70% से भी ज्यादा पानी होता है। कितना सुंदर ये रहस्य है, धरती पर भी 70% पानी है। बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन इस देह का है, देह में भी उसी परसेंटेज में पानी रहता है। तो अगर हमारे मन में घृणा ईर्ष्या होगी तो हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस हमारी देह में व्याप्त पानी को डर्टी कर देंगे, निगेटिव वाइब्रेशंस उसको जहरीला बना देंगे, और वो पानी हमें अनेक बीमारियां देगा, अनेक बीमारियां इस देह में जन्म ले लेंगी। तो अगर हम अपने मन में प्यार भरेंगे, अगर हम अपने मन में सभी आत्माओं के लिए सुभावनाएं भरेंगे, तो उसके वायु

वाइब्रेशंस हमारे इस देह में स्थित पानी पर भी बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे और हम सदा स्वस्थ रहेंगे, ये भी फायदा हमें बहुत होगा। तो आइए हम सभी आत्माओं को प्यार की दृष्टि से देखें और सबको गुड वाइब्रेशंस दें। तो आज सारा दिन हम महसूस करेंगे मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, महसूस करें मैं पूर्वज महान तपस्वी कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ और बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है। मुझसे निकले हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। इससे सभी धर्मों की आत्माओं को हमसे गुड वाइब्रेशंस जाएंगे। ऐसा भी आप विजन बना सकते हैं, कल्प वृक्ष के तने में एक गुफा है, उसमें मैं विराजमान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, महान हूँ, मुझसे निकले वाइब्रेशंस अंदर ही अंदर सारे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। आज प्रति घंटा एक बार इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना नहीं चाहते और जिसे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना भले न चाहें, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम सहिष्णु बन जाते हैं। किसी के पास जब कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे पास नहीं है, या वह कोई ऐसा परिणाम दे सकता है जो हम नहीं दे सकते, और यदि हम यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाते, तो हम ईर्ष्यालु हो उठते हैं। लेकिन यदि हम यह सब स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम प्रेरित हो जाते हैं। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते कि अब क्या करें, और यह बात हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, तो यह स्थिति हम में भय पैदा कर देती है। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन यह बात हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जोखिम उठाने का साहस अनुभव करते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो और हम उसे स्वीकार न कर पाए, तो हम में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो, लेकिन हम उसे स्वीकार कर लें, तो यह स्थिति उसे माफ कर देने में हमारी मदद करती है।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम यह स्थिति स्वीकार भी न कर पाए, तो हम कह उठते हैं कि हमें उसकी कमी खल रही है। जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम कहते हैं कि हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। और तब भावनात्मक समीकरण काफी आसान हो जाता है। कुछ होना और उसे स्वीकार करना, यह है सकारात्मक भावना। कुछ होना और उसे स्वीकार न करना, यह है नकारात्मक भावना। तो यह कुछ या कोई नहीं है जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को मेरा स्वीकार कर लेना या स्वीकार न करना है जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है। बात इस संसार की नहीं है, बल्कि संसार के प्रति मेरी प्रतिक्रिया, स्वीकार करना या न करना की है, जो मेरी भावनात्मक गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगली बार जब किसी नकारात्मक भावना के कारण हम खुद को परेशान होता पाएंगे, तो यह पूछने के बजाय कि यह क्या है या कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, हम यह देखेंगे कि किस व्यक्ति या चीज या स्थिति के प्रति मैं प्रतिरोध यानी कि स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और फिर उसका प्रतिरोध करने के बजाय मैं उसे स्वीकार कर लूंगा या स्वीकार कर लूंगी। तब नकारात्मक भावना अपने आप ही सकारात्मक भावना में रूपांतरित हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मथे दोष मढ़ना बंद कर देने और स्वीकार कर लेने की जिम्मेदारी के साथ जीवन पर प्रतिक्रिया करने से भावनात्मक कौशल की शुरुआत हो जाती है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि आप देख किसे रहे हैं, अपने अतीत को या अपने भविष्य को। मैं या तो यह कह सकती हूँ कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या फिर यह कह सकती हूँ मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहती हूँ। आज की जमीन पर खड़े होकर आप भविष्य को देखें, अतीत को नहीं। ज्ञान को लेकर आगे देखें, पीछे नहीं। जो लोग यही कहते रहते हैं, काश, यदि, वे दरअसल ज्ञान को लेकर बीते कल में झांक रहे होते हैं। अगर आप अपने भविष्य निर्माण को लेकर जागरूक हैं, तो फिर अपने अतीत को दोबारा जीवित करने की अर्थहीन कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञान आपको देरी से नहीं मिलता, वह तभी मिलता है जब उसे मिलना होता है, जब आप उसे पाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। ऊपर वाले की समय सारणी पर कभी प्रश्न न उठाएं। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब आगे देखा तो वे महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वे विवेकानंद बने। हमारा भविष्य हमारे अतीत के समतुल्य नहीं होता। भविष्य के स्वागत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, हमारा सर्वोत्तम तो अभी आना है। हर ज्ञान के साथ, हर ज्ञात के साथ, हर बोध के साथ, हर गंभीर जागरण के साथ हम अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ें। आपको ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए कतई नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो भविष्य का निर्माण करने के लिए दिया गया है। आगे देखें। आप नहीं जानते कि आप क्या बन सकते हैं। जो आप बनने वाले हैं वह भविष्य में कहीं आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए आगे बढ़ें, उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनने वाले हैं।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

जो उसकी गंदी कार से उतर रहा था। उसको देखकर हम दंग रह गए। वह कार इतनी गंदी थी कि हम अपने बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर भी उसे छूना पसंद नहीं करते। कार के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे नाली अटकने से कूड़े का ढेर लग गया हो। और वह वक्ता महोदय जिस विषय पर भाषण देने पधारे थे वह था जीवन की गुणवत्ता। एक बार हमने देखा कि एक आध्यात्मिक सत्संग से बाहर निकलते चेले अपनी आंखों का मैल साफ कर रहे थे। इससे साबित हो रहा था कि ये लोग जो अपने तन को स्वच्छ रखने तक में लापरवाह हैं, वे अपने मन को अपनी आत्मा को स्वच्छ करने चले हैं। कितना अज्ञान है। वे नहाते तक नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके जीवन पर गुरु की कृपा बरसती रहे। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं जिनके जूतों पर पॉलिश नहीं थी, टाई फूहड़ ढंग से बंधी थी, लेकिन अपने उत्पाद व सेवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला बताने में वे पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुणवत्ता पहले भीतर उदित होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जो गुणवत्ता हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर कैसी गुणवत्ता है। जो गुणवत्ता हमारे भीतर है वह इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है कोई दूसरा हमसे जितनी अपेक्षा करे हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है संसार हमारे लिए जितना उच्च स्तर निर्धारित करे हम अपने लिए उससे उच्च स्तर निर्धारित कर लें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है यह विश्वास करना कि हर चीज और हर अवस्था को उन्नत और बेहतर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। गुणवत्ता यानी एक ऐसी चीज जिसका होना तो नजर से चूक सकता है, लेकिन जिसका ना होना नजर से कभी नहीं चूक सकता। गुणवत्ता उन क्षेत्रों में छोटी बड़ी हर चीज का उत्कृष्ट होना है जिस पर दूसरे शायद ध्यान भी न दें। सुगंध हो या न हो, फूल तो फूल ही रहेगा, लेकिन उसमें सुगंध होने से बहुत फर्क पड़ता है। गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है जिसका होना ही सारा फर्क पैदा कर देता है। तो हम भी अपने जीवन स्तर की गुणवत्ता को चेक करें और उसे उच्च से उच्चतर बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अज्ञान दाता कौन है? क्या वे श्री कृष्ण है या कोई और? वह कौन है जो हमारा स्वयं और परमात्मा दोनों से परिचय कराता है, जो कहता है कि गृहस्थ में रहकर भी कमल फूल के समान पवित्र रहा जा सकता है, अर्थात संसार में आपके आसपास चाहे कुछ भी घटित क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप उससे उपराम न्यारे रह सकते हैं। ऐसे तमाम सत्य से हमारा परिचय कराने वाले प्रजापिता ब्रह्मा की शख्सियत को मैं काल चक्र शत शत नमन करता हूं। उन्होंने जग को बताया कि पवित्रता में कितनी शक्ति है, वही सुख और शांति की जननी है। लेकिन उस पवित्रता के लिए सन्यासियों की तरह घर परिवार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, सबके बीच रहकर ही ज्ञान एवं योग के बल पर जीवन में पवित्रता को धारण किया जा सकता है। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं इसका सैंपल बनकर दिखाया। उन्होंने गृहस्थ में रहकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया। परमात्मा शिव पर अटल निश्चय उनकी सफलता का आधार बना। वरिष्ठ राजयोगिनी बीके गीता दीदी आज हमारे साथ साझा कर रही हैं ब्रह्मा बाबा के साथ के उनके अनुभव, याद कर रही हैं उनकी शिक्षाएं कि कैसे उन्होंने परिवार को छोड़े बिना ट्रस्टी बनकर रहने का पाठ पक्का कराया।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पाल

0: ओम शांति। जब शुरू शुरू में मैं ज्ञान में आई तो पहली बार बाबा से जब मिली थी तो बाबा को देखते ही ऐसे लगा जैसे ये मेरा बाबा है। बाबा की दृष्टि में इतनी पावर थी जिसको देखने से ही अपनापन महसूस हुआ। और बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम तो माया था, तो जो नाम होगा वो ही बताऊंगी। तो बाबा ने कहा ये नाम अच्छा नहीं है, माया जो है ये तो सबको कच्चा खा जाती है। यानी माया मतलब पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन पांच विकारों के कारण संसार दुखी अशांत है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची इन पांच विकारों को छोड़ना है तब जीवन में सुख शांति मिल सकती है। तो मुझे बाबा ने सुनाया कि किस प्रकार से विकारों को छोड़ने के लिए सबसे पहले पवित्रता की धारणा करनी है। तो मैं फैमिली के साथ ही बाबा के पास गई थी। हमारे लौकिक पति थे और एक छोटी सी हमारी लड़की थी 6-7 साल की, वो भी साथ में थी। तो हम तीनों ही गए थे। और फिर बाबा ने बताया कि नेको तुम्हारा नाम, बाबा ना एक सेकंड में मेरा नाम चेंज कर दिया। कहा आज से लेके तुम्हारा नाम गीता है, गीता का ज्ञान सुनाना है। और गीता के ज्ञान सुनने से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति करेगी। तो बाबा के ये वचन सुन के ऐसा लगा जैसे ये बाबा का वरदान है, क्योंकि गीता के ज्ञान से ही तो हम ये ज्ञान सुन के देवता बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तो जानते नहीं कि गीता का भगवान कौन है। लोगों ने तो ये समझा कृष्ण ही है, लेकिन सचमुच में तो गीता का ज्ञान सुनाने वाला तो शिव बाबा है जो अभी सुना रहे हैं। तो बाबा ने ये मुझे सुनाया, तुम सच्ची गीता हो, तुमको अभी गीता का ज्ञान सुनाना है, इसलिए ये माया तुम्हारा नाम खत्म, आज से लेके तुम सच्ची गीता है, अंदर बाहर एक, सच्चाई और सफाई ये जीवन में बहुत जरूरी है। फिर मैं रहती तो ग्रस्त में थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। ये नहीं बाबा ने कभी नहीं कहा कि परिवार को छोड़ो। परिवार में रहते हुए मैंने ये ज्ञान पाया, जिसमें हमारे सारे परिवार वाले, जिसमें हमारी जो मोहिनी बहन है जो अमेरिका में है, तो वो सबसे पहले ज्ञान में आई और उसी के द्वारा ही हम उनके जीवन का परिवर्तन देख के मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल बदल गई है। उसका बोलना, सुनना, देखना, खाना पीना जब सब बदल गया, क्योंकि उस समय वो कॉलेज में थी और पढ़ाई करती थी और वो रोज क्लास करने जाती थी। विनय नगर में हम रहते थे तो मोहिनी बहन भी हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि परिवार था। फिर जैसे जैसे मैंने उसके जीवन में देखा था कि चेंज हो रही है और वो साक्षात्कार में जाती थी, ट्रांस में जाती थी, तो अनुभव सुनाती थी कि आज बाबा ने ये कहा, आज मम्मा ने ये कहा, तो मुझे सुन सुन के लालच आती थी कि मैं भी ये ज्ञान सुनूं तो मुझे भी साक्षात्कार हो। क्योंकि आप जानते हैं कि भक्ति में लोगों को साक्षात्कार की इच्छा ज्यादा होती है। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी दर्शन करूं, मैं भी साक्षात्कार करूं। तो उसने कहा 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया और पहले आत्मा परमात्मा का सारा ज्ञान सुना। शुरू में तो समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे हम रोज में क्लास में जाती थी और 7 दिन का कोर्स करती थी। घर वाले इसके खिलाफ थे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के उनको लगता था कि ब्रह्मा कुमारियां तो घर बार छुराती है, वो तो घर बार छुरा के अपने पास ले जा रखती रही है। और इसीलिए उन्होंने हमको शुरू शुरू में तो मना किया कि किसी भी सत्संग में जाओ परंतु यहाँ नहीं जाओ। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता था, मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे पति को भी अच्छा लगा, तो मैं रोज जाती थी। पहले तो हफ्ते में एक दिन जाती थी, सिर्फ संडे संडे सवेरे सवेरे जाते थे, मुरली सुनी, ज्ञान सुना, और फिर उसके बाद भोग लगता था, भोग का भी करके संदेश सुन के फिर आ जाते थे। तो कई बार तो वो नाराज भी होते थे, कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, नहीं जाना है, मना करते थे। लेकिन जो अच्छी चीज होती है उसको छोड़ना तो मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी हम छिप छिप के उनको बिना बताए वहाँ जाते थे और क्लास वगैरह करते थे। थोड़े समय के बाद हमको जिस जिस क्वार्टर में हम रहते थे वो क्वार्टर हमारे ही नाम था, जिसमें कोई और रहता था। तो ऑफिस में जब गए तो उनको पता चला कि इन्होंने ये जो क्वार्टर जो है किराए पे दिया है, हालांकि किराए पर नहीं था, वो तो हमारे किसी मोहिनी बहन जो थी उनका भाई था, उनकी माँ थी, वो सब यहाँ रहते थे, अलग हो गए और उन्होंने भी वहाँ पर क्लास शुरू कर दिया। तो इसके लिए वहाँ पर क्लास चलती थी, तो थोड़े समय के बाद हम भी उस क्वार्टर में अपना जो क्वार्टर था छोड़ना ही पड़ा और हम उसमें क्वार्टर में चले गए। तो वहाँ पर रहने लगे तो वहाँ तो दिन रात योग ज्ञान चलता था। मैं पहले ज्ञान नहीं सुना सकती थी क्योंकि आता ही नहीं था, योग का भी पता नहीं था। फिर मोहिनी बहन ने मुझे ज्ञान और योग दोनों सिखाया, फिर धीरे धीरे मैं लगाने लगी। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुमको क्लास करानी है। तो जो भी भाई बहन आते थे फिर हमारे ही क्वार्टर में गीता पाठशाला ट्रांसफर हो गई, फिर हमारे ही घर में जैसे कहें कि क्लास वगैरह शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो और कहीं जगह था, लेकिन फिर उसके बाद हमारे क्वार्टर में गीता पाठशाला शुरू हो गई। तो क्लासेस होती थी सवेरे भी शाम को भी, तो उसके लिए उसमें फिर मुझे चांस मिला।
1: बाबा के साथ का अनुभव सुनाइए।
0: ब्रह्मा बाबा जो थे उनको तो देखते ही जैसे एक लगता था कोई फरिश्ता है। बाबा ने हमको सिखाया कि घर ग्रस्त में रह करके, ग्रस्ती नहीं परंतु ट्रस्टी बन के रहना है। मैंने कहा बाबा हमारा तो मुश्किल है कि रहें भी घर में और घर में रह करके ज्ञान योग भी करें, ये तो हमारे से होगा नहीं। फिर बाबा ने सिखाया कैसे ट्रस्टी बनना है। जैसे गृहस्थी कहता है ना, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो बाबा ने कहा कि नहीं, ट्रस्टी बनो, यानी सब कुछ तेरा, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये सब जो कुछ है ये भगवान ने दिया है, हम तो ट्रस्टी है संभालने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा के इन महावाक्यों ने मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने जब से ये हमको ट्रस्टी का वरदान दिया, तो उस वरदान से मैं भी अपने जीवन में घर में रह के, गृहस्थ में रह के अपने को ट्रस्टी समझने लगी। तो मेरे जीवन में चेंज आई, और चेंज आने से ये हुआ कि घर में भी सुख शांति हो गई। तो बाबा ने हमको हमेशा ये वरदान दिए हैं कि सफलता तुम्हारा जन्म से अधिकार है, तुम कभी ये नहीं सोचो पता नहीं सफलता होगी या नहीं होगी। तो निश्चय बुद्धि के ऊपर बाबा का बहुत जोर रहता था कि पहले पहले तो निश्चय होना चाहिए, एक तो अपने ऊपर, दूसरा बाप के ऊपर, तीसरा परिवार के ऊपर, और चौथा ज्ञान के ऊपर। तो कहा कि दुनिया में तो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते, रामायण पढ़ते, यही साधु संत महात्माएं पढ़ते हैं, लेकिन ये भगवान के महावाक्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब ये निश्चय की बात कही तो मुझे समझ में नहीं आई। फिर बाबा ने बताया कि निश्चय में क्या होता है, निश्चय होगा तो विजय है, निश्चय नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं, संशय बुद्धि, क्योंकि हम लोगों को परमात्मा कोई दिखाई तो नहीं देता था, फिर जितना जितना हमारा निश्चय बढ़ता चला गया, उस निश्चय के आधार से मैं निश्चय करके वो ज्ञान योग को धारण करती गई, तो उसमें मैंने देखा कि घर में रह के भी ऐसे लगता था हल्कापन, खुशी, कोई भी ऐसा समस्या आती थी तो बड़ा मुश्किल नहीं, सहज ही सहज, और हमेशा लगता था बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा सर्व संबंधों से साथ है। तो इसलिए जैसे पहले तो बहुत भारी हो जाते थे या उसको मुश्किल समझते थे, लेकिन बाबा को देखने से कि बाबा कितना लाइट रहता है, बाबा को हमेशा मुस्कुराता हुआ बाबा का चेहरा देखे, हम भी कभी कभी हल्कापन आ जाता था और भारीपन भूल जाता था। तो बाबा ने सुनाया को जितना जितना योग करते जाओगे उतने हल्के होते जाएंगे। तो बाबा को देखने से यही अनुभव होती थी कि कैसे जीवन में रहते, क्योंकि आज की दुनिया में लोगों की जीवन में तो देखा है ना कि भारीपन बहुत है, चिंताएं है, भय है। तो इसलिए बाबा ने सिखाया कि बच्चे ये चिंताएं, चिंता करना तुम्हारा काम नहीं, चिंतन करो, जो बाबा ज्ञान देता है उसका चिंतन करते रहो तो चिंताएं खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो चिंताएं खत्म हो गई, तो जितना जितनी चिंता खत्म हो गई तो भारीपन भी चला गया, और फिर जो बाबा जैसे लाइट रहता था, कुछ भी हो जैसे याद आता था ड्रामा क्या है, ड्रामा का ज्ञान भी पक्का हो गया, और उसके कारण से फिर हमको हर बात सरल होने लगी, और सरलता के कारण अपने जीवन भी सरल होती गई और ज्ञान योग में चलते गए। तो बाबा के साथ रह के जो हमने पाया, आज दिन तक भी बाबा की शिक्षाएं याद है, जो बाबा ने कहा वो हमने देखा कि वो हमारे लिए जैसे वरदान था। अभी भी मेरे को हमेशा लगता है कि वो बाप टीचर सतगुरु है, तो गुरु ने हमको जो वरदान दिए हैं, तो इसलिए उन वरदानों के सहारे ये जीवन में मैं चलती हूँ, और निश्चय बुद्धि होके कभी माया, तो माया का तो काम ही है संशय बुद्धि बनाना, परंतु मेरा निश्चय इसमें अडोल है। तो बाबा ने निश्चय बुद्धि भी बनाया और उसे मैंने सफलता को प्राप्त किया। शेष तो बाबा के जीवन का यही अनुभव हुआ। 10 साल में बाबा से मैं हर साल तो नहीं जाती थी, क्योंकि पहले शुरू में तो थोड़े बंधन थे, तो साल में कभी 6 महीने में जाते थे, कभी 2 महीने में जाते थे, कभी साल में 1 बार भी जाते थे, क्योंकि अकेली तो मैं जाती नहीं थी, हमारे जो पति थे लौकिक वो साथ जाते थे, और वहाँ 10 दिन 15 दिन कभी 8 दिन रहते थे वहाँ पर मधुबन में। आजकल तो इतने रहने का चांस नहीं है, लेकिन उस समय तो लोग तो कम होते थे ना, तो बाबा के साथ रहना, सवेरे उठना, योग करना, मुरली सुनना, सारा दिन बाबा के कमरे में जाते थे, तो बाबा जब भी मुझे देखता था तो जैसे बस हर घड़ी हमेशा ऐसा ही लगता था कि बाबा से कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है। तो इस प्राप्तियों के आधार से जीवन में चली। फिर बाबा ने सर्विस करना सिखाई, अब तुमको सर्विस करनी है, तो जो तुमको ज्ञान मिला, जो तुमको निश्चय हुआ, अब तुमको बाबा की सर्विस में लगना है। तो जो बंधन कट गए, जो भी मेरे बंधन थे, बंधन के कटने के बाद फिर मैंने सर्विस शुरू की, और उस सर्विस में बहुत जगह मैं गई। इसलिए पहले तो कुछ नहीं आता था, लेकिन बाबा ने शिव शक्ति का रूप बनाया मेरा, और मेरे बोलने में भी वो शक्ति भरी। तो इस तरीके से जीवन में बाबा से जो पाया, लायक तो थे नहीं लेकिन बाबा ने लायक बनाया। समर्पित मैं ऐसे नहीं हुई, जब हम कट्ठे गए थे ना तो कट्ठे कट्ठे जाते थे, बाबा के पास भी कट्ठे जाते थे, और जब हम समर्पित हुए हैं तो साथ ही साथ हमारा था परिवार में सब और भी भाती थे, जैसे मोहिनी बहन थी और भी हमारे जो रिश्तेदार थे, तो 40-50 के करीब रिश्तेदार हैं जो इस ज्ञान में चले। पहले तो शुरू में लोग थोड़ा अपोजिशन करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा तो वो भी आ गए। तो आज दिन तक भी जो भी निकले हैं वो सब टीचर्स हैं, सेंटर संभालती हैं, क्योंकि शुरू में तो हमको पता ही नहीं होता था ना सेवा क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो इस तरीके से बाबा ने निश्चय बुद्धि बनाया और विजय की प्राप्ति भी कराई, तो और निश्चय बढ़ता गया। नई जगह तो घर तो वही था ना, लेकिन बाबा कहीं भेजते थे इसे इसी सेंटर पर जाओ तो चले जाते थे, लेकिन जो हमारा घर अपना परिवार था उस परिवार को हमने छोड़ के कुछ नहीं किया, उस परिवार को भी साथ साथ चलाया, उसमें जो भी थे छोटे बड़े जो भी थे। तो इसीलिए समर्पित आज की तरह थोड़ी समर्पण होता था, हम तो चलते चलते ही समर्पण हो गए, पता ही नहीं चला कि हम समर्पण हुए। तो इसलिए सहज ही सहज हो गया काम बाबा का। योग में कोई मुश्किल नहीं होती है, फिर भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि योग सहज है तो हम बस बैठ गए, उसमें भी मेहनत करनी है, संकल्प है विकल्प है, इधर के उधर के भटकना तो है ही ना। तो एकाग्रता कभी नहीं भी होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, यानी नियम के बड़े पक्के थे, अमृत वेले का योग और अमृत वेले की मुरली। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ तब से अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया, मुरली कभी मिस नहीं की। तो उस पे मैंने देखा कि ज्ञान और योग ही एक बल है जिसे हमारे जीवन में प्रभाव आता है या परिवर्तन आता है। बाबा से तो बहुत कुछ सीखा।
1: जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड रहते थे ना, जब भी मिलते आपको पता चलता था कि शिव बाबा थे या ब्रह्मा बाबा थे?
0: नहीं, मैंने कभी इसको सोचा ही नहीं। हम तो बाप दादा मात पिता ही कहते थे।
1: मतलब जब भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे आप शिव बाबा समझ कर ही मिलते थे?
0: और ऐसे अलग नहीं समझते थे।
1: अच्छा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों साथ है हमेशा यही महसूस करते थे।
0: यानी ये हमको पता था कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमसे मिल रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको मुरली सुना रहे हैं। ये हमको जैसे ज्ञान मिला ना तो उस अनुसार उसको करते चले गए, बाकी दिखाई बिखाई कुछ नहीं दिया। बाकी ट्रांस में तो मैं अभी भी जाती हूँ, दिव्य दृष्टि दाता बाबा है।
1: दीदी, इस कार्यक्रम का नाम है आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। दादा लेखराज शिव बाबा के दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से संपूर्ण ब्रह्मा बने, तो आध्यात्मिकता कैसे मदद करती है कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में बताइए।
0: क्योंकि जो हमारे अंदर ज्ञान है उससे हमारे अंदर रूहानियत आती है। अभी तक तो हम बॉडी कॉन्शियस में रहे ना, अब जितनी जितनी हमारी सोल कॉन्शियस अवस्था बनती चली जाएगी तभी उससे आधार से ही प्राप्ति होती है। रूहानियत क्या है? रू मतलब आत्मा, रूहानियत तो रूहानी ज्ञान है। वो जब हमने धारण किया तो हमारे में आत्मिक ज्ञान होने से हम देही अम्मानी बन गए आत्मिक स्मृति में, और हरे को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं ना, देह नहीं समझो किसी को, देखना है तो शरीर को नहीं देखो आत्मा को देखो। अब इसमें दृष्टिवृत्ति बदलने में टाइम तो लगता है, ये नहीं कहेंगे कि हमारा बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस खत्म हो गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस की।
1: कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का सोचता है तो क्या करना चाहिए, वो कौन सी आध्यात्मिक ज्ञान है और वो आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी जीवन में संपूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
0: बस रूहानियत को धारण करें, अपने में पवित्रता, दिव्यता, और जितनी जितनी हमारी रूहानी दृष्टि वृत्ति होगी तो हमारे में अपने आप आता जाएगा। आप देखेंगे हमारी दादियों की हम शक्ल देखते हैं। आप जानकी दादी 104 वर्ष की थी, उनके चेहरे से क्या दिखता था? जब बोलती थी कितने उमंग से बोलती थी, नहीं तो 100 के बाद आत्मा बहुत बुरी लगती है ना। मेरी एज भी इस समय 93 है। अब 93 एज है तो मेरे शक्ल से कोई मुझे बुरा नहीं समझता है, इतनी एज मानते ही नहीं है। इसका मतलब ज्ञान और योग में रूहानियत आने से वो हमारे शरीर पर भी असर करती है ना, क्योंकि जब मन ठीक है तो तन भी ठीक है। जब मन आपको देखेंगे हमारा अशांत होता है तो चेहरा बदलता है। तो इसलिए हम जितनी अपनी मनसा को अच्छा रखते हैं तो हमारे में रूहानियत आती है। अब रूहानियत कहने में तो रूहानियत है, परंतु है तो आत्मिक पावर ना, आत्मिक शक्ति से ही तो पवित्र बनते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में पवित्र बनना कितना मुश्किल है। हमारे अंदर सत्यता है, धैर्यता है, गंभीरता है, जो भी है, तो ये सब गुण भी तब आते हैं जब हमारे में रूहानियत होगी। अगर बॉडी कॉन्शियस होगा तो गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे। बाबा कहता है मोह भी होगा, लोभ भी होगा, लेकिन जितनी रूहानियत आती है तो ये विकार खत्म होते जाते हैं। ये है रूहानियत। तो संपन्नता तो यही है ना कि संपन्न क्या बनना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी।
2: देह भान में घिरा मनुष्य आज नाम मान शान में फंसा है, वह क्रोध एवं काम विकार की अग्नि में जल रहा है। ईश्वर अथवा परमात्मा को जाने बिना उससे मुक्ति की गुहार कर रहा है, गुरुओं के दर पर भटक रहा है, सत्संगों में ईश्वर की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसे निश्चय ही नहीं कि परमात्मा शिव एक ज्योतिर्बिंदु है जो ब्रह्मा तन का आधार लेकर गीता का सच्चा ज्ञान देते हैं। मैं काल चक्र उन दिव्य साक्षात्कारों का साक्षी हूं जिसने हीरे के व्यापारी सिंध के एक नामी गिरामी चौहरी दादा लेखराज के जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर उन्हें संसार के प्रत्येक बंधन से मुक्त कर साधारण मानव से एक फरिश्ता बना दिया।

0: रुक रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। एक पूरी श्रृंखला हम तय कर रहे हैं जिसमें कितना कुछ जान रहे हैं। ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो पूरा एहसास है, ये हम इस सफर में तय करते हुए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब एक एक पर्दा हटता जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे किताब का एक एक वर्क, एक एक अध्याय हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो दुनिया का सिनारियो है, उसको जान पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में, उसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, बहुत सी बातें हमने जानी है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। और जो अगर हम पिछली कड़ी को देखें तो हमने उस कार्मिक फिलॉसफी की बात की थी, जो जिसके ऊपर शायद हमारे पूरे अगर हम देखें किसी भी धर्म के हो, हमारा पूरा जीवन खड़ा मिलता है।
1: Absolutely.
0: तो
1: एंड मेजोरिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड
0: एक्चुअली,
1: यू नो, अगर आप सीरियसली उसको समझने की कोशिश करें और किसी भी परिस्थिति में हो तो डिटैच होकर एक मिनट उस लॉ को वर्क करें, यू विल गेट योर आंसर।
0: एक लॉ जो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था पिछली बार, वो ये कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और ये बात आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने पढ़ ली थी। और हर बार ये पढ़ते गए, जानते गए, लेकिन जिंदगी में अपनाना और क्या बो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। मैं तो यही समझ पाती थी कि मैंने पौधा कौन सा लगाया था। आज जाके इतने समय बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये हमारे कर्म है, ये हमारा थॉट है।
1: वही बात हो गई ना, ज्ञान आत्मा हूं ये भी तो पहले पता था, लेकिन अवेयरनेस। इसी तरह कार्मिक लॉ वर्क करता है। सुना था, मतलब ये बात तो इतनी बार सुनी है, एंड उसको न्यूटन्स लॉ से भी कंपेयर करते हैं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी नो इट, बट आर वी अवेयर ऑफ इट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन? आर वी अवेयर ऑफ इट व्हेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन? यू नो, फिर अगर अवेयरनेस होती तो ये नहीं बोलना पड़ता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इफ आई रिमेम्बर कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, अब वो नीचे वापस आएगी और उतने ही फोर्स से आएगी, कहीं और नहीं चली जाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। तो फिर जब वो मेरे पास गिरती है तो मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, ये कहाँ से आ गई मेरे पास,
0: क्यों आई,
1: वेयर हैज इट कम फ्रॉम, आउट ऑफ द ब्लू। यू नो, कर्मा इज लाइक रिपल्स इन द पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल गिराते हैं, ऐसे एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, बहुत सारी लहरें बनती है, रिपल्स बन जाती है, और वो सारी ट्रैवल करती है उस पॉन्ड के अंदर। अब वो जाकर किनारे को हिट करके वापस आ जाती है। और कई जो रिपल्स हैं वो पॉन्ड के बीच में कुछ और पत्थर या कुछ और पौधे होंगे तो उसको हिट करके वापस आ जाएगी, लेकिन वापस हर रिपल आती है। सिमिलरली एवरी एनर्जी दैट आई क्रिएट, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट, इट्स अ रिपल।
0: एवरी एक्शन
1: एक्शन से भी पहले, या दैट्स व्हाट, एवरी थॉट, वी कॉल थॉट आल्सो एन एक्शन, यू नो। तो स्थूल कर्म नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी इसको कर्म, तो हर संकल्प वो एक रिपल की तरह है। ये यहाँ से निकलेगा, जिसके लिए क्रिएट किया गया था वहां पर जाएगा, उस टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा। नाउ द रिपल्स व्हेन दे आर कमिंग बैक, कोई रिपल तुरंत आ जाएगा वापस, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद। लेकिन जब वो 100 साल बाद आता है या 10 साल बाद भी आता है तो वी हैव फॉरगॉटन, यू नो, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सो गए हैं फिर से। तो हमें ये भूल गया कि ये उसी का रिटर्न है जो एनर्जी मैंने बाहर भेजी थी।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि हमें याद रहे।
1: हाँ,
0: सी अगेन, अगर
1: दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स,
0: हमें ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया है,
1: ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वैसे भी
0: कि हमने क्या गलत,
1: हाँ नहीं, क्या हमने गलत किया, वो तो करने के टाइम उसकी अवेयरनेस होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको तुरंत कनेक्ट
0: कर पाए,
1: यू नो, वो वाला जो किया था ये उसका रिजल्ट है। नो, दिस इज एनर्जी फ्लोइंग आउट, कमिंग बैक, व्हेन, वेयर, I might not be able to connect it. And सही बार जरूरी नहीं है उसी टाइम हो जाए ना, कुछ गलतियों का रिजल्ट तो हमें उसी टाइम मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये गलती की थी, ये सजा मिली है। लेकिन जब वो एक टाइम गैप के बाद होता है तब वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी एनर्जी इस तरह से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली.
0: एक बार सिस्टर शिवानी, हम दोबारा वो MIS सिस्टम जो हमारा है, जो पूरा कार्मिक फिलॉसफी का है, कि किस तरह से हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो किस तरह से इंटेलेक्ट एक्शन में परिवर्तित करता है और फिर वो इम्प्रेशन बनता है, एक बार और उस ताकि
1: लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. एंड आई थिंक हर एक को ये बहुत अच्छी तरह से समझ के फिट कर लेना पड़ेगा, ताकि हर टाइम करते समय वो साइकिल जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए. हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं, माइंड बुद्धि उस पर निर्णय देती है, इंटेलेक्ट, और फिर वो कर्म में आ जाता है, एक्शन. सो आई हैव टेकन अ थॉट, डिसीजन, एक्शन. जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसका इम्प्रेशन, तो इट वेंट आउट लाइक दिस, इम्प्रेशन बैक, तो वो मार्क एक बन गया, जिसको हम कहेंगे संस्कार बन गया. अब जैसा

0: He is responsible, she is responsible, situation is responsible, God is responsible. When nobody else is responsible, God is responsible, my stars are responsible, astrology, everything, everything. I mean, we just go.
1: It has to happen. Yeah. It is written.
0: Destiny, meri luck kharab hai. So, unfortunately, jahan reason hai, usko chhod ke, hum bahar ki taraf dekh rahe hain. Spirituality means अपने पास देखना कि अभी मैं उदास हूँ, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में मैंने इस तरह की शक्ति को या इस तरह के इम्प्रेशन को बनाया था, क्योंकि उस समय मेरे में शक्ति नहीं थी एक सही कर्म करने की, एक सही निर्णय करने की. तो आई क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सोरो. नाउ एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग इन टू दैट सिचुएशन या एवरी टाइम आई एम मीटिंग दैट पर्सन, यू नो, कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर दर्द होता है, या उनसे मिलकर नहीं लेकिन उनकी वजह से हमें दर्द मिल रहा है हर टाइम. शायद वो हमारे साथ नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है, कारण कुछ भी है, बट आई, यू नो, आई अकाउंट देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है. और जैसे आपने कहा, वो अच्छा भी लगने लगता है थोड़े टाइम के बाद. तो वो अच्छा लगना मतलब तो हम उसको और भी ज्यादा रीइन्फोर्स करते जा रहे हैं, उस संस्कार को और पक्का करते जा रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा संस्कार मैंने पहले क्रिएट किया था, अब फिर जब मैं कर्म में आ रही हूँ उनके साथ, मैं फिर से वही थॉट प्रोसेस से जा रही हूँ, फिर वो संस्कार पक्का होता जा रहा है. अब मुझे समझना होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्रेशन दर्द वाला है ना, तो वो ही कर्म में आ जाता है. सी, आई हैव क्रिएट, इट्स लाइक सेइंग, लेट्स फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक पिक्चर इनसाइड. अब वो ब्लैक पिक्चर ही एक थॉट क्रिएट करता है, वो ही एक्शन में लाता है, तो एक ब्लैक थॉट क्रिएट होता है, एक ब्लैक एक्शन क्रिएट होता है. अब इस ब्लैक एक्शन का ही इम्प्रेशन
1: दोबारा
0: फिर से ब्लैक वाला बनेगा. तो somehow वो साइकिल ही पूरा ब्लैक कलर का हो गया है. अब नाउ आई एम सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, लेकिन वो कलर ही ब्लैक है यहाँ पे, तो बाहर क्या जा रहा है? तो वो फ्री होने की बजाय वो और भी ज्यादा
1: ब्लैक
0: पक्का होता जाता है, क्योंकि जो अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी बाहर जा रही है, वही एनर्जी फिर से आ रही है. तो वो अकाउंट खत्म होने की जगह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन सबसे पहली अवेयरनेस ये चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, एंड वेन वी से जो कुछ, इट मीन्स एब्सोल्युटली जो कुछ भी, यू नो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आई मीन जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग, या चाहे वो हमारे घर में किसी बहुत नजदीक व्यक्ति का शरीर छोड़ना है, वट एवर, एवरीथिंग, हर चीज जो मेरे साथ हो रही है उसका जिम्मेवार मैं हूं. उससे पहली बात स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये कर्म मैंने कोई किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये अकाउंट मेरा क्रिएट किया हुआ था उसको सेटल मुझे करना पड़ रहा है, तो उसका वाइज वेयर व्हाट हाउ स्टॉप.
1: लेकिन यहां ये जो कार्मिक थ्योरी है पूरी, कि मैं मानती हूँ मैंने कोई कर्म किया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस जन्म में तो मैं देखती हूँ अगर उसी व्यक्ति के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी भी या किसी भी सिचुएशन में मैंने कुछ वहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, यू नो, देन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी बिकम्स रियली टफ.
0: सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो हु इज द आई?
1: द सोल.
0: द सोल, ये क्लियर हो गया. पहले ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज द आई मेंट
1: द बॉडी.
0: तो इट वॉज लाइक अभी मैं ये हूं ना, पहले जो मैंने किया वो, जब मैं हम कह रहे हैं तो हम सोचते हैं पहले तो मैं नहीं थी ना, वो कोई और था. यू सी, वो हम कहते हैं वो पिछले जन्म में वो मुझे नहीं याद ना, लेकिन वी आर फॉरगेटिंग कि वो किसने किया था.
1: लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ये एक्सेप्ट करना कि मैं पिछले जन्मों का ढोती जाऊं.
0: व्हाट इज मुश्किल इन दिस? नाउ यू सी, यस्टरडे यू वर वेयरिंग अ येलो साड़ी, टुडे यू आर वेयरिंग अ रेड साड़ी. जब आपने कल येलो साड़ी पहनी थी एंड आप मेरे से 500 रुपए बोरो करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको दे दिए, आप लेकर चले गए, आज आप आ गए रेड साड़ी पहनकर एंड आई से एक्सक्यूज मी कनुप्रिया, माई 500 रुपीज बैक.
1: मेरा मेमोरी लॉस हो गया बीच में फिर.
0: या दैट्स ओके, बट आई तो नीड माई मनी बैक.
1: बट देन अगेन

0: I'm not living with awareness that I don't have that memory.
1: Right, but I need my money back. So if you are not going to give it to me with love, I will pull it from you. Mm. I will snatch it from you.
0: But then it'll pain me.
1: That is what is happening.
0: So then I accept. I should accept because I have a memory loss.
1: Right.
0: I don't remember that I had given you the money.
1: Right, but you have to remember that when I'm asking you for it, you had borrowed it from me. अब आप आकर कहें कि नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपसे, कहूँगी आपने लिया था आपको याद नहीं है, आप कहेंगे उस टाइम मैं येलो साड़ी में थी,
0: नहीं तो, मुझे तो याद ही नहीं ना. See, again, this is what I'm
1: ठीक
0: saying.
1: है फाइन आपको याद नहीं है लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज होने से आप बदले.
0: मैं नहीं बदली. हाँ.
1: तो आपने ही बोरो किया था, अब आपको रिटर्न करना होगा. अब वो आप प्यार से करें या जबरदस्ती करें, करना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हैं कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई.
0: समझ.
1: आपने बोरो किया था, कॉस्ट्यूम है ये भी, आज ये है, थोड़े साल बाद इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे, लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जो आपके साथ अकाउंट बनाऊंगे, अगर आपको दुख दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो दुख मेरे पास वापस तो आना ही पड़ेगा.
0: तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आज के वक्त में, आज इस कॉस्ट्यूम में, कानुप्रिया की जिंदगी में या किसी का भी नाम ले, उसकी जिंदगी में अगर दुख, जिसका वजह वो आज नहीं समझ पा रही, पिछले जन्म का कुछ कहीं कोई कार्मिक डेप्ट या कुछ अकाउंट चल रहा है, तो वो मेमोरी तो नहीं है.
1: कोई बात नहीं,
0: तब एक्सेप्टेंस.
1: इसीलिए तो मेमोरी नहीं है लेकिन नॉलेज तो अब हो गई ना
0: कि ये कहीं ना कहीं होगा,
1: मेरी वजह से है. सी, एक्सेप्ट करना तब मुश्किल होता है जब मुझे उसका रीजन नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे. लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, भले आपको याद नहीं है लेकिन आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपने बोरो किया था इसलिए आपको रिटर्न करना है, तो भले आप अनविलिंगली रिटर्न करेंगे लेकिन ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी. तो सिमिलरली हमने जो पिछले कॉस्ट्यूम में किया हमें याद नहीं है, लेकिन अब अगर हमें लॉ समझ में आ गया कि हाउ द लॉ वर्क्स, देन वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट्स माय क्रिएशन. मैंने एनर्जी दी थी, आज मुझे वापस मिल रही है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो वो हैवीनेस आती है क्वेश्चंस के साथ वो खत्म हो जाएगी. एंड आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैंने ही इसको एक्सप्लॉइट किया होगा, मैंने ही रॉन्ग एनर्जी ट्रांसमिट की थी, आज मुझे मिल रही है. लुक इन द एनवायरमेंट, व्हाट हैव वी डन टू द एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट हमें वापस नहीं देगा वो, और वो दे रहा है,
0: दे रहा
1: है. अब हम कहते हैं जी ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से इतना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. डोंट वी समवेयर नो दैट वी हैव डन इट. So even to that highest global level, we are going to get the return of our actions, even from nature. It works at every level, personal level, interpersonal level and global level. Tino levels per wo work karne wala. To ab sirf chahiye personal responsibility, ke mere saath jo ho raha hai, uske zimmewar main hu. आधा काम उससे खत्म हो जाता है. यू नो, जैसे राह चलते कोई मिलता है और एकदम से यू नो रोड पे बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप किसी को क्रॉस करते हैं, गाड़ी को टक्कर लग जाती है, कई लोग बस खड़े होकर वहां जोर जोर जोर से आपसे कुछ बहुत कहेंगे और गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे. पहले वी वुड से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू डू दिस. इजी वे इज ओके, अकाउंट सेटल्ड, फिनिश्ड, ओम शांति. Full stop. There is no
0: continuous process.
1: That is the settling of the account first. Jo ye aur hum energy create karte hai na, where, why did this happen? I'm creating more negative energy. Tab fir wo account settle hone ki bajaye aur bhi zyada accumulate hota jata hai. To accept kar lijiye. वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं और एक्चुअली
0: यहाँ यही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि
1: रेजिस्ट करने से भी कोई ऑप्शन नहीं है, इट जस्ट इज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाउ देन यू कैन चेंज इट.
0: वो
1: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
0: ट्रांसफॉर्मेशन है या एनर्जी.
1: जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज को, हम रेजिस्ट करते रहते हैं. तो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. तो पहले ही नेगेटिव कर्म था, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि हम सेटल क्यों नहीं कर पाते. हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते. व्हाट वी कीप डूइंग इज क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्म विद दैट नेगेटिव इम्प्रेशन. एक बना है, हम और अपसेट होते हैं, ایسا کیوں بول دیا, پھر اور اپسٹ ہوتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سو یو سی اگین نیگیٹو آؤٹ نیگیٹو ریٹرن سنسکار اور پکا اینڈ اٹس بیکم اے وشیس سائیکل ناؤ, اٹس اے ویری ویری وشیس
0: سائیکل.
1: کل جیسے اس بوجھ سے
0: اس میں گھستا ہی جا رہا ہے, گھستے ہی جاتے ہیں,
1: جتنا ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں
0: اور الجھ جاتے ہیں.
1: تو اس لیے جو آپ نے کہا نا کہ کئی بار ہم نے اس جنم میں تو کچھ نہیں کیا, بٹ اب اپنے جنم کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا براڈر کریں کہ اب میں آتما, تو آتما کا کوئی جنم اور مرتیو کی بات نہیں ہے, جیون کی یہ یاترا ہے, یہ ایک کاسٹیوم ہے یا کہیں یہ ایک ایپیسوڈ ہے. یو نو آج کل جو سیریلز آتے ہیں ٹیلی ویژن پر, سو یو وونٹ ہیو اے سیپریٹ اسٹوری ان ایوری ایپیسوڈ, اٹس اے کیری فارورڈ اینڈ دیٹ از وائی دی یو نو دی سوپ از ویری انٹرسٹنگ. ایک ہے کہ ایوری ایپیسوڈ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ نو اتنے سالوں سے یو نو ایک سیریل چل رہی ہے, اٹس اے سوپ اوپرا, تو ہر ایپیسوڈ از اے کنٹینیویشن آف دا پریویس ایپیسوڈ. ایوری لائف is a continuation of the previous episode. Now this is one episode. Is episode mein hum jo kuch karenge iska carry forward hamare next episode mein hoga, and that's why the world drama is interesting.
0: Okay, yahan ek aur baat janna chahti hu. I think bahut se hamare darshak log bhi janna chahte hain ki ye ek inquisitiveness hai ki ہر ایپیسوڈ میں جو کیریکٹرز ہیں ہمارے آس پاس وہی کیریکٹرز کیری فارورڈ ہوں گے یا کچھ نئے کیریکٹرز ایڈ ہوں گے یا وہی سول, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہم, کیونکہ اگر کارمک ڈیپتھس ہیں یا کارمک اکاؤنٹس ہیں تو وہی لوگ پھر مل جاتے ہیں.
1: Absolutely.
0: So کیا ہم گھما پھرا کے چلتے ہیں؟
1: Yes, absolutely. It is a particular set which is together. جیسے ڈفرنٹ سیریلس چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم آن ایئر, لیکن ایک پرٹیکولر سیریل میں ایک پرٹیکولر سیٹ آف ایکٹرز ہیں, یو نو, تو ان کا انٹر پلے ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس ایپیسوڈ میں آپ چار ایکٹرز کو دیکھتے ہیں, پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس میں سے دو کوئی اور دو کے ساتھ ہے. سو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہم ہر لائف ٹائم میں مل رہے ہیں, بٹ گھما پھرا کے یا ایک دو چھوڑ کے لائفز, دین وی آر اگین کمنگ بیک ان ٹو پلے. لیکن جن کے ساتھ جتنا اکاؤنٹ ہوگا وی ول کم بیک ان ٹو پلے ود دیم. ایبسولیوٹلی. ناؤ واٹ از ویری امپورٹنٹ از لائک یو سیڈ اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ, کہ ہاؤ وڈ وی نو, تو اگین نو بڈی ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ, لیکن پھر بھی اس کو اگر بہت اٹرنل بیسس پر دیکھیں, جیسے آتما کی ہمیں پہچان ملی کہ دیٹ از دا ٹروتھ, تو اس پہچان میں رہ کر جو ہم کرم کریں گے اور اس پہچان کی وسمرتی سے جو ہم کرم کریں گے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے.
0: اوکے, یہ جانتے ہوئے اپنے بیسکس کو جانتے ہوئے
1: ایک امیج کریٹ کر کے, یو نو, وین آئی ایم دا سول, یہ ہم بھول گئے, میں شریر ہوں اور میں وہ سارے لیبلز ہوں, پوزیشن ہوں, اس بھان میں جس کو ہم کہتے ہیں باڈی کانشیسنیس, باڈی کانشیسنیس میں رہ کر جو بھی کرم کریں گے اٹس ایگو. ایگو ہے نا, اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج آف مائی سیلف. تو باڈی کانشیسنیس دیہ ابھیمان میں رہ کر جو بھی کرم ہوگا, ایون اے تھاٹ, وہ نیگیٹو.
0: تو اس کا مطلب ابھی تک جو ہم کرتے آئے یا میں کرتی آئی یا ابھی جب جب تک ہم باڈی کانشیسنیس میں تھے, سو دیٹ واز رانگ.
1: یا بیکاز سی وائی اٹس رانگ, اگین وائی از اٹ رانگ, کیونکہ آپ باڈی کانشیسنیس میں ہیں, آپ ایک الیوژن میں چل رہے ہیں کہ میں یہ شریر ہوں, آپ ایک بھے میں چل رہے ہیں کہ یہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی, آپ اس بھی بھے میں چل رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میرا ہے یہ ختم نہ ہو جائے, تو آپ کے تھاٹس کیسے والے کریٹ ہو رہے ہیں,
0: سارے نیگیٹو ہیں,
1: میرے کچھ ہو نہ جائے, ان کو کچھ نہ ہو جائے, یہ مجھے چاہیے, وہ بھی مجھے چاہیے, تو ڈر میں چل رہے ہیں. اب یہ جو ساری جن چیزوں سے میری ڈپینڈنسی جن پر ہو گئی ہے, اڈکشن بھی ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے, ایک سروائیول کا سارا دن لگا ہوا ہے, اور چاہیے اور چاہیے, واٹ کائنڈ آف تھاٹس ایکشنز امپریشنز بن رہے ہیں ان دس پروسیس, نیگیٹو. اب ایک فیئر کریٹ ہوتا ہے, کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے, کہیں یہ میرے سے چھوٹ نہ جائے, واٹ کائنڈ آف تھاٹ, نیگیٹو. تو پھر اس پروسیس میں
0: اور ان کو بچانے کے لیے سارے اور طریقے, یو نو, دام دام دان,
1: اگر ان کو کسی نے کچھ کیا یا میرے اس امیج کو کسی نے کچھ کہا انسلٹ کی, غصہ آئے گا, وچ تھاٹ ایکشن, اینگر. تو یہ اینگر, گریڈ, جیلسی, ان کے وش جو بھی کرم ہوگا, مطلب دیہ ابھیمان کے وش جو بھی کرم ہوگا وہ نیگیٹو کرم میں جائے گا, جن کو ہم کہیں گے سنفل ایکشنز. بٹ سن کیا ہے, پاپ کیا ہے, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं और उस स्वरूप में हम जो भी कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे रहा है और वो ही आज हमारा रिजल्ट हो गया. इतनी टेंशन, इतनी वरी, इतनी एंग्जाइटी. तो बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म नेगेटिव या जिसको हम विकर्म कहते हैं. दूसरा है न्यूट्रल एक्शन, अकर्म, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. ऑर्डिनरी एक्शन, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज इनसे मिलना है. लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्शन भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किया, इट विल गेट अकाउंटेड इनटू नेगेटिव. सो टू बी वेरी केयरफुल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब हमें चांस मिला है करने का, पॉजिटिव एक्शन या जिसको कहते हैं सुकर्म. अपने सही स्वरूप को पहचान लिया. आई एम ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक दैट फ्लावर. वंस आई कम टू नो हु आई एम, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग माई अवेयरनेस. आई डोंट नीड एनी थिंग फ्रॉम एनी बडी. माई फ्रेग्रेंस, माई ब्यूटी इज जस्ट फॉर एवरी थिंग आउटसाइड. मुझे कुछ चाहिए नहीं. तो भय
0: नहीं रहे,
1: मृत्यु का भय खत्म हुआ, चीजें खोने का भय खत्म हुआ, अपनी पोजिशन, अपने स्टेटस खोने का भय खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुई. थॉट्स आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग, रिजल्ट इज चेंजिंग. जस्ट विद वन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट विद गेटिंग द ट्रूथ. एंड दैट्स व्हाई इतनी सदियों से हम सुनते आए कि हु एम आई. जिस दिन ये आंसर कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम्स
0: सॉल्व हो जाएंगी,
1: बिकॉज दैट्स रियली द ट्रूथ. क्योंकि उस एक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से सारा हो जाएगा.
0: लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि विकर्म जो हम करते आए सुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था की बात जो कहते हैं, स्लीपिंग, व्हाइल स्लीपिंग वी कंटिन्यूड डूइंग थिंग्स
1: राइट,
0: जो विकर्म हो गए, इट मींस उनका भी हमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा.
1: सारा बन गया ना, एक स्टैक जमा हो गया.
0: तो अब वो जो हम ये सुकर्म कर रहे हैं, क्या वो सेटल कर पाएगा
1: राइट,
0: या वो सेटल होंगे कैसे? ये तो अपने ही कर्म जो इसी जन्म में हमने किए हैं,
1: एब्सोल्युटली,
0: जिनको हमें अब तो रियलिटी ये है कि इतने सालों से हम वो करते आ रहे हैं
1: राइट,
0: जो कि विकर्म में ही शामिल हो रहा है, चाहे हमें अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन आज अगर हमें क्लियर होता है तो वो एक कार्मिक डेब्ट है जो हमें क्लियर करना है, अकाउंट को क्लियर करना होगा. अनदर इज जो हम पिछला लेकर आ रहे हैं,
1: वो सारा स्टैक कट्ठे ही है अभी यहाँ पे, यू नो. तो इसलिए जो कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट है वो काफी
0: हैवी,
1: एंड उसका रिजल्ट हमें प्रत्यक्ष दुनिया में इस टाइम दिखाई दे रहा है. जो हम देख रहे हैं आजकल कि डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग उदास रहने लगे हैं. दिस इज एन साइन ऑफ अ वेरी डीप कार्मिक डेप्ट. क्योंकि जिसके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा होता है वो खुश नहीं रह सकता. उसके ऊपर बहुत भार है तो वो खुश नहीं रह सकता. तो उसका साइन चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है. बच्चों को देखो, बच्चे हैं. दिस इज द यू नो टाइम व्हेन दे शुड बी एंजॉयिंग. लेकिन व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय? क्योंकि आत्मा तो अभी आई है ना. वो बच्चा तो शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है. इट्स जस्ट कैरी फॉरवर्ड अ वेरी डीप अकाउंट राइट नाउ. How will it be able to be happy here? Because it's so heavy already. और इसलिए बच्चों को भी स्ट्रेस. ये ज्यादा पहले नहीं था. जितना समय बीतता जा रहा है और हम उस अकाउंट को सेटल करने की बजाय
0: और उसमें घुसते जा रहे हैं,
1: तो जितना घुसते जा रहे हैं उतना ही कम एज से हम में वो हैवीनेस महसूस होने शुरू हो रही है. और मानसिक रीति से सबसे ज्यादा उदासी, परेशानी, चिंता, ये सबसे ज्यादा घेर लेती है. क्योंकि ये सबसे बड़ी भोगना होती है.
0: बिल्कुल, सोसाइटीज आज दुखी है, परेशान है,
1: भोगना है ना. क्योंकि हम पनिशमेंट जैसे कि भोग रहे हैं, तो ये जो भोगना है ये अभी हम भोग रहे हैं और ये हम इसी तरह भोगते हैं. दुखी, अशांत रह के भोगते हैं.
0: तो ये बात सामने आती है कि इसी जन्म में जो हम विकर्म करते आ रहे हैं, जो हम सोते हुए कर रहे थे, एक बात ये जानना चाहते हैं हम सिस्टर शिवानी की, बहुत से दर्शकों के दिमाग में भी ये बात है कि 84 लाख योनियां हैं. हम जो जो कर्म करते हैं उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा. कभी हम पशु बन जाएंगे या हम पशु थे पिछले जन्म में, और आगे आने वाले जन्म में जो जो हम कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ क्या हम कर सकते हैं. सो ये भी एक बहुत बड़ा एक भार लेके हम चल रहे हैं,
1: ये डर में भी चलते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आज दिन तक हम ये सुनते आए थे कि बहुत सारी योनियों में क्रॉस करते हुए अपने सारे पाप को हम उस योनि में भोगते हुए फाइनली हमें
0: इंसान की योनि मिलती है,
1: इंसान की योनि मिलती है। तो फिर वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा इतने योनि से गुजरते हुए, मतलब सारे पाप भोगते हुए, तो वो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए?
0: सुंदर होना चाहिए।
1: बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आज जो हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये क्या वो सारे पाप भोगने के बाद जो पुण्य का जीवन मिला है वो ऐसा वाला जीवन है? अगर वो जीवन होता तो वो मनुष्य जीवन कितना वैल्यूएबल होना चाहिए। आज मनुष्य तो अपने जीवन से इतना परेशान है कि वो अपना ही आपघात करने का सोचता है,
0: सुसाइड्स का इतनी ज्यादा। इनफैक्ट देखा जाए तो इतना ज्यादा मनुष्य जीवन सबसे सस्ता जीवन माना जाने लगा।
1: एब्सोल्युटली। तो ये वो जीवन है जो इतनी योनियों में गुजरने के बाद आज ये मिला है। तो यही जो हमने कहा ना कहीं ज्ञान तो है लेकिन उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन। तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा और पशु आत्मा वो भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में वेरिएशन है, वो बीज अलग है, ये बीज अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग इन एन एनिमल? इंटेलेक्ट। वी आर अ हायर डेवलप्ड, और वी आर सपोज टू बी अ हायर डेवलप्ड इंटेलेक्ट, एंड एनिमल इंटेलेक्ट इज अ लोअर इंटेलेक्ट। अब अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, पहली बात तो हो नहीं सकता क्योंकि बीज क्या करेगा? एक पौधा है, वो बीज निकाल कर कितनी बार भी आप बोएंगे, चीकू का बीज है, वो वही वाला फल निकलेगा। हम कहें हम ये वाला बीज बो रहे हैं अब इसके अंदर से दूसरा फल निकलना चाहिए, नहीं, उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो संस्कार है वो उसी के है। तो ये मनुष्य आत्मा है, बीज है, इसके अंदर वही मन बुद्धि संस्कार है। ये अगर दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले किसी पशु का तो इंटेलेक्ट कैसी होगी? वो जाके चेंज तो नहीं हो सकती। या वो आत्मा अगर यहाँ आ जाए तो वो इंटेलेक्ट कैसी होगी? तो दोनों अलग अलग है बीज, इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता है। वो बीज अलग, वो हमेशा उसी योनि में जाएगी। और मनुष्य आत्मा ही, मतलब आत्मा वो है, उसको मनुष्य शरीर ही बार बार मिलेगा, लेकिन कर्मों अनुसार वो जीवन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग जीवन और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में जाएंगे, लेकिन योनि इंटरचेंज हो जाएगी वो नहीं होगा। आज मनुष्य योनि ही सबसे भोगना की योनि है, यू नो, सबसे ज्यादा दुख शायद मनुष्य योनि को है। पशु योनि को इतने दुख नहीं है, ना इतनी फिजिकल बीमारियां हैं, ना इतनी मेंटल बीमारियां हैं, ना सुसाइड है। तो कहें कि सबसे ज्यादा जो भोगना की योनि है इस टाइम, ये हमारी योनि है। तो इतने पाप करने के बाद अगर हम कह रहे हैं, इतने भोगने के बाद ये पुण्य का जीवन मिला, तो ये जीवन फिर कैसा होना
0: लेकिन चाहिए? एक बात और कही जाती है, आई जस्ट वॉन्ट दैट क्लैरिफिकेशन, कि अगर श्राप मिल जाए तो आप फिर पशु योनि में चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ है? श्राप भी क्या है? क्या है श्राप और क्या?
1: श्राप और वरदान हम खुद ही तो अपने आप को देते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये किसी ने आकर ऊपर से श्राप नहीं दिया। जैसे कहते हैं कि हिंसा अगर आप करते हैं किसी की तो आप हिंसक योनि में चले जाएंगे, ये श्राप मिलेगा। हिंसक योनि, लेट्स से अ टाइगर, आप हिंसक योनि में चले गए। अब अगर आप एक शेर बन जाते हैं तो उसको कोई भोगना नहीं होने वाली है कि मैं हिंसा, भोगना क्या है, हमने एक पाप किया उसकी भोगना मतलब मुझे पश्चाताप होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, उस पश्चाताप से मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा। लेकिन अगर मैं एक हिंसक योनि में चली जाऊं, उसके लिए हिंसा करना तो नेचुरल
0: सहज है, वो तो उसका जीवन है।
1: इट्स नेचुरल संस्कार ऑफ अ टाइगर, वायलेंस इज अ नेचुरल संस्कार, उसको कोई भोगना नहीं होगी। तो भोगना अगर मुझे भोगनी है अपने ही पाप कर्म की, तो वो मुझे इसी मनुष्य तन में ही भोगना होता
0: है, क्योंकि मैं अपना जो नेचुरल मेरा जो संस्कार है उससे परे जा रहा हूँ।
1: उससे परे हम नहीं जा सकते। तो उसी मनुष्य तन में आकर, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, मेरे साथ क्या क्या होता है, एनर्जी किस तरह की मिलती है, तो उसमें मेरा पाप और पुण्य का खाता सेटल होता है। तो जो मुझे भोगना है अच्छा या बुरा, वो मनुष्य योनि में ही आकर होता है।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ये ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। अगर उम्मीद जिंदा है तो खोई हुई शांति, प्रेम, विश्वास इन सबको वापस ला सकते हैं। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, पुदीना कौन सी बीमारी ठीक करता है, कैसे हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है, जरूर जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज आप सभी को सिखाने वाली हूँ मैं कॉर्न पाक, मकई का हलवा। ठीक है भाई, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो कैसे भूल सकते हैं, मीठा सिखाएंगे आपको जरूर। और आज की पहेली भी बहुत सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो खोई हुई शांति, प्रेम, विश्वास, इन सबको वापस ला सकते हैं, इसलिए कभी उम्मीद नहीं खोना है। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक बच्चा होता है, उसने 4 कैंडल्स जलाए। चारों के नाम, एक का नाम था शांति, एक का प्रेम, तीसरे का विश्वास और चौथे का उम्मीद। चारों कैंडल जलाए तो जिसका नाम शांति था, जिस कैंडल का, उसने सोचा कि कहाँ शांति है, आजकल तो चारों तरफ अशांति अशांति है, न मेरे अंदर शांति है, न इस बाहरी दुनिया में शांति है, फालतू की उम्मीद लगा करके क्यों जीना है, चलो बुझ जाते हैं। तो शांति नाम का कैंडल बुझ गया। इधर विश्वास ने देखा कि शांति तो गई, आजकल विश्वास भी कहाँ रहा, कब कौन किसको धोखा देगा, कब कौन किसके साथ विश्वासघात करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में रह करके भी क्या करना है, चलो अपन भी यहाँ से चलते हैं। और विश्वास नाम का कैंडल भी बुझ जाता है। अब प्रेम को भी लगता है कि कहाँ है प्रेम, सब स्वार्थी हो चले हैं, पहले एक दूसरे के लिए जीते थे, अब तो स्वयं के लिए जीते और स्वयं के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का अहित कर देते हैं। क्या करना है भला ऐसी दुनिया में रह करके, चलो यहाँ से चलते हैं हम भी। तो प्रेम नाम का कैंडल भी बुझ जाता है। जितने में वो बच्चा आ जाता है, बच्चा सोचता है कि ये क्या, मैंने तो चारों ही कैंडल जलाए थे अच्छी तरह और ये 3 कैंडल बुझ गए हैं, ये एक ही कैंडल रहा है।

उम्मीद नाम के कैंडल ने सोचा कि क्यों बुझे। अरे भाई, वो कहते ना कि नकारात्मकता के माहौल में ही सकारात्मकता को लाना है, नेगेटिव माहौल में ही पॉजिटिव माहौल बनाना है। और एक उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं, अच्छा सोचेंगे, हम सभी को प्रेम देंगे, हम विश्वास करेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे, तो हो सकता है कि ये सब कुछ वापस आ जाए। तो उम्मीद नाम का जो कैंडल है उसने बच्चे से बोला, बच्चा दुखी हो जाता है कि चार कैंडल जलाए उसके बावजूद भी तीन बुझ गए हैं, क्या मतलब रहा कैंडल जलाने का। जितने उम्मीद नाम के कैंडल ने कहा कि आप उदास मत होइए, आप मेरे सहारे इन तीनों को जीवित कर सकते हैं, जला सकते हैं। बच्चा बड़ा खुश हो गया और उसने वापस तीनों ही कैंडल को उम्मीद नाम के कैंडल से जला दिया और तीनों ही जल उठे, तो चारों ही जगमगाने लगे। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, क्या बात है, रोशनी बहुत अच्छी हो गई, खुश हो गया। वो बाहरी रोशनी ढूंढ रहा था, लेकिन ये तीनों ही समझ गए। कौन कौन? शांति, प्रेम और विश्वास, तीनों ही समझ गए कि नहीं नहीं, हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए थी। उम्मीद नाम के कैंडल को दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम तीनों तो हार गए थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, तो आपकी हिम्मत को देख करके हम तीनों भी आपका साथ जरूर देंगे। और तीनों जगमगाने लगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अगर उम्मीद जिंदा है तो क्या होगा? प्रेम, खोया हुआ प्रेम, विश्वास, शांति, ये भी लौट आएंगे। और उम्मीद ही खत्म हो गई तो बस, फिर तो चारों तरफ अंधकार होना ही है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी उम्मीद नहीं खोनी है। कोई भी हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उम्मीद बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए सुनते हैं फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में जैसा कि गीत सुना है वैसे ही आपको घरेलू उपाय देने जा रही हूँ। जी हाँ, पुदीना ये कौन सी बीमारी ठीक करता है जानेंगे आप। तो देखिए, त्वचा की गर्मी है तो हरा पुदीना पीस करके चेहरे पर आधा घंटे तक लगा कर रहने दीजिए, त्वचा की गर्मी शांत हो जाएगी। ठीक है, कितनी बार हम धूप में चल करके आते हैं, त्वचा जलती है, ऐसी स्थिति में हरा पुदीना पीसिए, इसकी पेस्ट बनाइए और चेहरे पर आधा घंटे तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद बस फिर नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं, गर्मी शांत हो जाएगी। अगर पित्ती उछलती है, ठीक है, पित्ती उछलती है, जल्दी जल्दी निकलती है, तो 15 ग्राम पुदीना को 25 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ताज़ा पानी में उबाल करके रोगी को पिला दीजिए, पित्ती निकलना बंद हो जाएगी। पित्ती किसको कहते पता है? नाभि को। ठीक है, यदि पित्ती जल्दी जल्दी निकलती हो तो 15 ग्राम पुदीना को 25 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ताज़ा पानी में उबाल करके रोगी को पिला दीजिए, पित्ती निकलना बंद हो जाएगी। खून जम रहा हो, चोट लग गई, चोट लगने पर खून जम जाता है पता है ना, तो वहाँ पर पुदीने का आप अर्क पीजिएगा। खून जम गया हो चोट की वजह से तो पुदीना का अर्क पीने से खून जहाँ भी जमा होगा वो ठीक हो जाएगा। हरे पुदीने को पीस करके चटनी की भांति बना लीजिए, उसे रात्रि में सोते समय चेहरे पर लेप करिए, इससे चेहरे की फुंसियाँ मुहासे दूर होकर के चेहरा खिल उठेगा। हरे पुदीने को पीस करके इसकी चटनी की तरह बना दीजिए, मतलब इसका पेस्ट बना दीजिए, फिर उसको रात में सोते समय चेहरे पर लेप करिएगा तो चेहरे की फुंसियाँ है, मुहासे है, झाइया है, ये सब ठीक हो जाएगा और चेहरा खिल उठेगा। और बहुत सुंदर उपाय है, हिचकी आती हो, पेट में कीड़े हो, वमन होते हो, दस्ते लगती हो, भोजन के प्रति अरुचि हो गई हो, तो सभी में पुदीने का रस बहुत ही फायदा करता है। थोड़ा सा आप पुदीना का रस पी सकते हैं। तो कौन कौन सी तकलीफ कही मैंने? हिचकी आती हो, पेट में कीड़े हो, वमन की शिकायत हो, वोमिटिंग की, पतले पतले दस्त लगते हो, भोजन के प्रति अरुचि हो गई हो, तो इन सभी बीमारियों में पुदीने का रस बहुत ही फायदेमंद है, आप पुदीने का रस पी सकते हैं। और लास्ट उपाय है, बिच्छू ने काटा हो तो दंशित स्थान पर पुदीने का लेप करिएगा, साथ ही पुदीना जल में पीस कर पीजिएगा भी, इससे जहर उतर जाएगा। मान लीजिए बिच्छू ने काट दिया है, ठीक है, अब भाई बारिश के मौसम में या खेती बाड़ी में काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है अक्सर, तो दंशित स्थान पर क्या करेंगे, पुदीने की पेस्ट बना करके उसका लेप करिएगा और साथ ही पुदीना को पानी में पीस करके पीजिएगा, तो जहर जल्दी उतर जाएगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, न मैं त्योहार हूँ न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो यह आज की पहेली है, फिर से दोहरा रही हूँ, न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी देखे एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। तो बहुत ही सुंदर विषय आप सभी के समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते हैं उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो बहुत ही सुंदर पहेली भी आपके समक्ष रख चुकी हूँ, विषय भी आपके समक्ष रख चुकी हूँ। अब आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, पहेली का जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
3: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश भाई बोलता हूँ जफाना से। कैसे हो दीदी?
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
3: बस अच्छे हैं, बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आज का विचार भी आपने बहुत अच्छा सुना दिया, क्योंकि जो विचार था दीदी बिल्कुल सही है, शांति प्रेम विश्वास उम्मीद, इसके बारे में आपने जो बताया दीदी, तो बस ये अभी जो बता रहे हैं आपसे, ये जो खुशनुमा जीवन के लिए ऐसी ही बात कहते थे कि उम्मीद है तो सब कुछ है, प्रेम है, शांति है, विश्वास है, वरना तो कुछ नहीं है। कैसे हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो सफलता तो जरूर मिलती है दीदी, लेकिन इसके लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। हम कहते हैं कि एक सेकंड में कोई करोड़पति नहीं बन जाता, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे हम आगे आ पाएंगे? तो धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और तभी तो हम कुछ आगे जाके कुछ कर पाएंगे
2: जी।
3: तो बस हम सभी भी ऐसा कहेंगे कि आप विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए और प्रेम रखिए, शांति रखिए, तो हम धीरे धीरे आगे चले जाएंगे।
2: आजकल क्या है सुरेश भाई, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बंगलों को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरे पास कब होगा, तो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं।
3: चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में दीदी बताते हैं ना कि हम देखो कोई पड़ोस वाले कोई चीज लाए तो चलो हम भी ला दे, जरूरत नहीं हमारे फिर भी ला देते हैं, बाद में दीदी पछताना पड़ता है। जब पैसा देना पड़ता है तो इतने मुसीबत आ जाते हैं कि पैसा कहाँ से लाए, लेकिन जो हमारे पास जितना है इतने में हम रहेंगे तो ही तो हम संतुष्ट रहेंगे, शांति से रहेंगे। ऐसे करोड़पति बनना कोई मामूली बात नहीं है सर, हम पैसा कमाते हैं दीदी, तो पैसा इतना तो जल्दी हमारे पास आ ही नहीं जाता, हम मेहनत करनी पड़ती है, सात दिन मेहनत करते हैं तो ये तो हम आगे जा पाते हैं
2: जी।
3: और ऐसे हम ऐसे चीज ला देते हैं तो बाद में पैसा कहाँ से लाए, प्रॉब्लम हर सबको रहता है, पैसे वाले को नहीं रहता है, लेकिन जब पैसे नहीं है वो भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। ऐसी उम्मीद रखना सही है, हमारे पास है तो हम ऐसे कुछ चीज ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है वो चीज ला के हम घर में रख देते हैं, पैसा तो कहाँ से लाएंगे बाद में, ये नहीं सोचते।
2: जिसकी जरूरत नहीं है क्यों लाने की फालतू की।
3: हाँ, कई चीजें दीदी ऐसी पड़ी है घर में कि कई सालों से रखी है, कोई काम में भी नहीं आती है, फिर भी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ उठा के ले आते हैं। फिर ले आते हैं कि दूसरों की वजह से, दो चार साथ में जाते हैं, एक तो जरूरत है लाए है सही है, लेकिन दूसरे को जरूरत नहीं है, जिसके सामने देख के वो भी ला देते हैं
2: जी।
3: तो ऐसा नहीं करना है, हमारे जितने हैं इतने में हमको रहना है, बाद में पछताना पड़ता है। कई लोग दीदी आज इसी वजह से सुसाइड करते हैं, हमने देखा है
2: जी।
3: पहले गाड़ी ला देते हैं, बंगला बना देते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि हम बाद में पैसा कहाँ से लाएंगे, इतनी हमारे पास कोई इतनी उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है जो हम इतना पैसा ला के दे सके
2: जी।
3: ऐसा करेंगे कितना इतने में हम आराम से जिएंगे, पैसा तो धीरे धीरे आ ही जाता है सबके पास, लेकिन ऐसा किसा दुरुपयोग नहीं करना है पैसा का, वरना जीवन में कई सारे ऐसे हाउ ऐसे हो रहे हैं। तो बस नमस्ते दीदी
2: जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बात को बहुत सुंदर तरीके से रखी। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, प्रैक्टिकल विषय है और आजकल हो रहा है इस दुनिया में सब कुछ

0: एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है, क्या कहेंगे आप। बहुत ही सुंदर विषय है और प्रैक्टिकल विषय है, तो आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आज की पहेली का जवाब आप चाहे तो रेडियो से जुड़ कर के दीजिएगा, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभकाम। नमस्ते सुभाष भाई, नमस्ते।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग आपको, हमारे प्यारा रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का महाराष्ट्र से प्यार भरा नमस्कार। और विषय भी बहुत अच्छा, सुविचार भी बहुत अच्छा, और हमारे दोस्त सुरेश भाई जोटाना वालों ने तो बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण किया है। लेकिन थोड़े में मैं बोलता हूँ दीदी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अपना जो भाग्य है उस पे नाज रखना है, क्योंकि आरे का पार अलग है, आरे का कर्म संस्कार अलग है, और सभी अपने अपने भाग्य से, कर्म से, मेहनत से पिछला जन्म हो ये जन्म हो खा रहे, तो जलन नहीं लगना है। हम भी आगे बढ़े इसीलिए योग्य रीति से परमात्मा का ज्ञान आध्यात्मिक रहते हुए आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, यही मैं। और जलन रखना नहीं है, जलन रखेंगे तो हम ही खुद पहले जल जाते हैं। तो सभी को नमस्कार, थैंक यू दीदी। और कल आपने जो व्यंजन सुनाया, सब कुछ दिया मराठी व्यंजन की, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते
0: हैं। नहीं नहीं, आपको धन्यवाद। आपने कहा तो एक नई रेसिपी सभी को सीखने को मिली, चने की दाल के वड़े।
1: बहुत ही अच्छा, आपने जो हमको थोड़ा बार मालूम नहीं था वो भी मालूम हो गया, और बहुत ही अच्छा लगा जानकारी, और इसके लिए थैंक। और सभी को नमस्कार, ओम शांति दीदी। ओम
0: अच्छा, आज की पहेली का जवाब देंगे।
1: हाँ, मैंने मैसेज में मैसेज दे दिया।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
1: मैसेज दे दिया है मैं।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने भी बहुत ही सुंदर बात कही है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, वह भी पूरे लगन से। जैसे सूरज भी एकदम कहाँ उग जाता है, वह भी तो धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है, तो क्या कहेंगे आप। और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभकाम। तो ये बहुत ही सुंदर आज का पहली भी है, तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं। क्या बात है, अभी श्राद्ध के दिनों में व्यस्त हो गए, फिर नवरात्रि में क्या होगा। मुझे तो नवरात्रि की चिंता होने लगी है कि भाई नवरात्रि में तो फिर आप गरबा कर करके ही थक जाएंगे, फिर सुबह उठने का ठिकाना नहीं। अभी श्राद्ध में तो जुड़ ही जाइए, ठीक है, क्योंकि बड़ा श्राद्ध होता है तो हम खाना बाहर बनवाते हैं, हलवाई बनाता है, लेकिन छोटा श्राद्ध तो हम घर पर ही करते हैं, उसमें ज़्यादा तो महिलाएँ बनाती हैं। तो देखते हैं कौन जवाब देते हैं, कौन जुड़ते हैं। बाकी बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए जो हम ये चकाचौंध देखते हैं दुनिया की बाहरी चकाचौंध, ठीक है, तो एकदम नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। किसी के पास बहुत ही सुंदर बंगला है, गाड़ी भी है, अरे भाई उसके पास तो क्या नहीं है ये बताइए, सब कुछ है। और आखिर हमारे ऐसे कैसे किस्मत है कि हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं है, फोर व्हीलर तो छोड़ो टू व्हीलर भी नहीं है, अरे ये भी कोई जीवन है क्या, है ना? ऐसे लोग हीन भावना भर लेते हैं, अरे भाई उसकी मेहनत देखो कि वो मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि कभी कभी एक पीढ़ी मेहनत करती है उसका सुख दूसरी पीढ़ी भोगती है, और कभी कभी तो देखिए खुद को ही मेहनत करना पड़ता है और खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे एक बात याद आ रही है, सच्ची बात है कि एक बच्चा है तो बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया, माँ ने स्ट्रगल करके चार बच्चे चारों की पालना की। देखिए माँ क्या है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो पिता का भी प्यार दे देती है और माँ की ममता भी लुटा देती है, बाहर कुछ भी करके दो पैसे कमाई भी कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है। और पिता भी कम नहीं है, लेकिन पिता क्या कमा के ला के रख सकते हैं, लेकिन घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक के लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए। तो माँ ने चारों ही बच्चों की अच्छी पालना की, मतलब संस्कार अच्छे दिए, और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया बच्चों को, क्योंकि एक तीसरी में था, एक तो अभी चलना सीख रहा था, एक पांचवी में था और एक पहली क्लास में। तो इस तरह चार बच्चे थे और पति का देहांत हो गया, कोई घर में खास कुछ है नहीं, और घर भी सास ससुर की नज़र में था कि ये जो एक रूम रसोई में रहते उसको भी यहाँ से निकालो। तो आए दिन झगड़ा करते थे, लेकिन वो बहन हिम्मत करके भले ससुर के हाथ की मार खाई, सास ने धक्का भी दिया, काफ़ी कुछ सहा, लेकिन फिर भी वो उसी घर में डटी रही कि भाई अपना घर होता है, पति ने बनवाया है, मैं नहीं निकलूंगी। सास ससुर का घर अलग अलग रहते, फिर भी उसके बावजूद झगड़ा करने आते थे, लेकिन बहन हिम्मत रखती तो मोहल्ले वाले भी साथ देते, और ऐसे करके वो टिक गई। फिर लोगों के घर का झाड़ू पोछा किया, फिर किसी के पापड़ बनाना, पापड़ी बनाना, किसके क्या करना, मतलब कोई भी काम नहीं छोड़ती थी। कोई कहते हमारे गेहूँ साफ करने आओगी तो हाँ आ जाऊंगी ना, और इस तरह लोगों के घरों में काम कर करके दो पैसा कमाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया, सरकारी स्कूल में पढ़ाया और बड़ी क्लास में, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में जो आजकल बच्चे को नहीं पढ़ाते वो कोई सरकारी स्कूल क्या गलत है क्या, पढ़ाना ही चाहिए। स्कूलों में हम पढ़ाएंगे तो बाकी ये अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए फीस भरते क्यों भरने की। तो संस्कार भी अच्छे दिए, पढ़ने में बच्चे बहुत होशियार थे, उनको सिर्फ माँ यही कहती कि तुमको पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है, बाकी सारा छोड़ दो मैं कर लूँगी, और वो कर लेती थी लगभग काम। बच्चों को चारों ही बच्चे काबिल निकले, दो बेटियाँ और दो बेटे चारों ही गवर्नमेंट जॉब में। और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ से काम छुड़वा ही देते हैं, माँ को भी मना कर दिया, और गांव में एक अच्छा सा मकान बना दिया कि भाई कभी भी अपने गांव के जो धरोहर है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, जहां हम बड़े हुए, जहां से हमें शिक्षा संस्कार मिले, पालना मिली, सब कुछ मिला, तो उस गांव को कैसे भूले। इसलिए चारों बच्चों ने मिलकर के बहुत सुंदर वहां पर मकान बना दिया कि कभी कभी आएंगे और छुट्टियों के दिन यहाँ बिताएंगे। और बच्चे शहर में, चारों अलग अलग शहर में, अब माँ को बुलाते हैं, माँ कभी एक बच्चे के पास, फिर दूसरे, फिर कभी बेटी के पास, कभी किसके पास, थोड़े थोड़े दिन घूम करके वापस गांव में आ जाती थी। बच्चे डांटते थे कि आप गांव में क्या करते हो, हमारे साथ ही रहो, लेकिन माँ को तो जो मिला गांव से मिला है ना, मतलब गांव भी ऐसा कोई बिल्कुल गांव नहीं, कस्बा समझ सकते हैं आप, कस्बा में रहते थे तो कस्बा में तो काम मिल ही जाता है। तो फिर माँ ने काम तो खैर बच्चों ने छुड़वा ही दिया, लेकिन फिर भी वहाँ ही उनका मन लगता था, तो बोले कि आप सभी आओ त्यौहार करने यहाँ पर, मैं आऊँगी बीच बीच में आपके पास। तो इस तरह उनका चल रहा है। तो अब ये थोड़े ना हम कहेंगे कि अरे उनके पास ये हो गया वो हो गया, गांव वाले जो कस्बे वाले कहते हैं कि इन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया हमें पता है, इसलिए बच्चों के पास जो भी है होना ही चाहिए। अब कस्बे में जब उनका बंगला देखते हैं तो लोग आते हैं जो बाहर शहरों में रहते, वो आते तो कहते अच्छा फलानी चाची के बंगला बन गया, क्या बात है, वो रूम रसोई कहाँ गई। अरे वो रूम रसोई तो अब उन्होंने अपने सास ससुर को सौंप दी कि बहुत झगड़ा किया ना, ले लो हमें नहीं चाहिए, बच्चे अब काबिल है, हमें जो चाहिए हम अपनी मेहनत से ही कमा रहे और हो जाएगा, आप ले लो। सास ससुर भी बड़े शर्मिंदा हुए कि देखो कितने तकलीफ उठाई उसके बावजूद भी।

तो फिर चारों बच्चों ने सोच लिया कि अब मम्मी को यहाँ रहने नहीं देना है, लेकिन हाँ अच्छा सा मकान जरूर बनाना है कि हम भी सभी आकर के साथ में रह सके। तो अच्छा सा बंगला बना दिया, एक गाड़ी वहां पर छोड़ दी कि कभी भी आए तो हम आसपास के एरिया में घूमेंगे तो गाड़ी भी चाहिए। फिर लोग आते देखते, अरे भाई क्या बात है, पर फिर सब यही कहते कि इसने मेहनत कम की क्या, इसके मेहनत का फल है कि बच्चे इस काबिल हुए हैं। तो आप किसी का भी स्ट्रगल के पीछे वो हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि अरे भाई उसके पास तो बहुत बड़ा बंगला है, ये है वो है, ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, तो हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में देख रहे हैं ना आप कितना साइबर क्राइम हो रहे हैं, आए दिन उनके पैसे उड़ गए, उनके पैसे उड़ गए, ये हो गया वो हो गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो लेकर के भाग गया। हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है और मेहनत से आगे बढ़ना है, ठीक है? मेहनत का फल कोई नहीं रोक सकता देने से। चलिए इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। बहुत ही सुंदर विषय है। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। क्या कहेंगे आप, आज की पहेली भी सुंदर है। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। बहुत ही सुंदर पहेली है, अपने आप में ये स्पष्ट है, इसलिए आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की और जवाब देने की। विषय बहुत ही सुंदर है कि जो कुछ भी मिल रहा है इस दुनिया में एकदम से नहीं मिलता है लोगों को। ठीक है, हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई, आपको और सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस दीदी अच्छे हैं, काम काज भी चल रहा है, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे विषय तरफ बात भी आप और दोस्त कर रहे हैं
0: जी,
1: तो बिल्कुल सही बात है दीदी। तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या है, सोच। जो ही जो जैसा सोचेगा ना वैसा ही बन जाएगा और वैसा ही काम करेगा। कोई हिंसा का सोच रखता है तो हिंसा का भी करेगा, कोई अच्छी सोच तो अच्छा काम करेगा। किसी के मन में मेहनत लगन से ईमानदार से पैसा कमा कर बड़ा होने की जो सोच रखता है तो वो कोई शॉर्टकट की रास्ते। तो मैं यही कहूंगा कि सोच बहुत अच्छी और बड़ी रखनी चाहिए, ईमानदार सोच। तो एक थोड़ी सी एक बात थी, कहानी के जरिए मैं बताऊंगा कि एक इंसान जंगल में जा रहा था तो थका, तो एक पेड़ के नीचे बैठा, तो वो पेड़ चमत्कारी था। सोचा कि कहीं से पानी मिल जाता तो अच्छा होगा, मन में सोचा तो सचमुच पानी मिल गया उस पेड़ ने दे दिया। तो खाना भी मिल जाता तो अच्छा, तो खाना भी मिल गया, तो आराम करने का खटिया भी मिल गया। जैसा सोचता था वैसा होता रहा गया। और फिर
0: जी
1: तो उसने सोचा कि कहीं भूत आ गया तो क्या करेंगे, तो सचमुच उनके सामने भूत आ गया। अरे ये तो मारकर खा जाएगा तो क्या करेंगे, तो सचमुच मारकर खा गया। तो तो वही बात कहूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। मेहनत का जो मेहनत पसीने की कमाई जो हम खाते हैं तो बड़ी भगवान भी प्रसन्न होते हैं और बड़ी अच्छी हमें लगती है। अपने ही मेहनत से कमाई के किसी को हम दान पुण्य किसी की सेवा करेंगे तो हमें कितना अंदर से आनंद आएगा ना दीदी, तो वो बात अलग ही रहती है। तो एक तो ये बात है दीदी
0: जी, जी।
1: मैं यही कहूंगा कि कोई शॉर्टकट रास्ता, कई लोग ऐसे हैं ना दीदी, अभी आपको दोहरा रही थी कि कोई शोर के चक्कर में ये वो
0: जी।
1: तो सावधानी के साथ अच्छी सोच रखिए दीदी
0: जी।
1: जी जी दीदी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी कहानी के माध्यम से समझाया है कि कैसे मतलब शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी। ऐसा ही हो रहा है अभी समाज में, तो धोखाधड़ी कौन कब किस पर किसके साथ धोखा देगा कुछ भी नहीं कह सकते। हेलो,
2: हाँ नमस्कार, फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते, कैसे हो?
2: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी।
2: आज तो गंजी पांचवा श्राद्ध है ना गंजी?
0: हाँ जी।
2: तो पांचवा श्राद्ध में भी देखो अपने जो घर वाले जो रहते हैं, जो देहांत हो गए उनकी आत्मा को शांति के लिए जो घर वाले जो ये कोई जो खीर बनाते हैं या तो मिष्ठान बनाते हैं या तो चावल बनाते हैं उसका भोग लगा के फिर बाद में खाते और ये अपना ये जो कौए है उनको भी
0: ये तो श्राद्ध की बातें नहीं, आज का विषय है इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। क्या कहेंगे आप?
2: वो तो है, लेकिन उसमें भी वक्त चाहिए, वक्त से पहले किसी को ज्यादा और कम नहीं मिलता इसमें। हाँ, किसी को कम मिलता है, कभी को किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि उसका देख के अपने को भाई अपने को भी एक दिन मालिक देगा, चलो अपने ये काम करते रहो, इसमें एक दिन तो सफलता अपने को भी मिलेगी।
0: जी जी, और आज का आज की पहेली भी आपको सुना रही हूँ। हाँ जी, आज की पहेली है, न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। ठीक है, तो देखते हैं सही है गलत है, आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि फोन नहीं लगता है, बहुत व्यस्त चलता है। देखिए अभी तो समय है, तो आप फोन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का विषय है कि भाई इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिलता है। सूर्य को भी हम देखते हैं ना, कैसे वो धीरे धीरे धीरे धीरे उदय होते होते होते खिलते खिलते खिलते खिलते फिर एकदम धूप देता है, एकदम आते ही तो प्रकाश नहीं फैला देता है ना। समय लगता है, हर चीज़ का एक समय होता है, समय के अनुसार ही मिलेगा। फिर हम गलत काम करने लग गए, गलत काम करके हम ज़्यादा कमाने लगे, वो तो फिर ठीक है, उसका परिणाम भी फिर अच्छा नहीं आएगा, है ना। जो मेहनत के दम पर कमाता है उसको पूछिए कितना सुगुन मिलता है। जैसे हमारे श्रोता बंधु बता रहे, सुरेश भाई भी बता रहे थे कि जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है सचमुच उसका दान पुण्य करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो सही है, किसी ने पकड़ा दिए और हमने किसी को दे दिया उसमें क्या है, लेकिन जब मेहनत से हमने कुछ किया है और फिर हमने दो पैसा किसी के ऊपर लगाया है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने भी कुछ तो अच्छा किया, पुण्य का काम। तो वो कहते ना कि भाई एकदम किसी को कुछ नहीं मिलता है, जिसके हम ये बाहरी चकाचौंध देखते हैं कि बंगला भी है इनके तो, बड़ी कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ अच्छी बात है, प्रेरणा लीजिए कि हाँ भाई वो कर सकते तो हम क्यों नहीं, चलो हम भी मेहनत करें, प्रेरणा लेनी चाहिए। ईर्ष्यावश अगर आप गलत काम के चक्कर में पड़ जाएंगे तब तो बहुत ही गलत होगा। देखो यहाँ पर मुझे सच्ची घटना याद आ रही, दो दोस्त होते हैं, ठीक है, तो एक साधारण और एक बहुत पैसे वाला। अब पैसे वाला है क्योंकि उसके दादाजी ने बहुत मेहनत की थी, मेहनत करके कारोबार शुरू किया था, उस कारोबार को उसके पिता ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ाया। तो कहते हैं ना कि भाई जब मेहनत करते पूरी तो कारोबार बढ़ता जाता है, फलता फूलता है। तो ऐसे ही उनका कारोबार, पहले छोटी सी दुकान थी, उससे उसके शोरूम बना दिया, और पिताजी चाचा जी सब बैठते थे, और संयुक्त परिवार था, बंगला बहुत ही बड़ा बना दिया, गाड़ी भी है, सब कुछ भी है। और जब भाई पिता पैसे वाला है तो वो तो जो बच्चा भी तो उन्हीं का कहलाएगा, तो पैसे वाला ही है, तो जो साधारण है उसके मन में धीरे धीरे हीन भावना आने लगी। वो बार बार उसको कहता, अरे तेरे तो क्या कमी है, कभी कुछ उपकार कर लिया कर, तेरे पास क्या कमी है। वो समझ जाता कि ये हीन भावना का शिकार होता जा रहा है। उसने कितनी बार उसकी हेल्प की, ठीक है, कितनी बार मदद की, धीरे धीरे कॉलेज भी आए, कॉलेज में भी वो उसका खर्चा करता था, चलो कोई बात नहीं दोस्तों के सामने इसको नीचे नहीं देखना पड़े, इसलिए वो उसकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि था तो वो भी स्टूडेंट, और स्टूडेंट को भला कितना भी घर में पैसा हो लेकिन माता पिता सोच समझ करके ही पैसे देते हैं ना, कि कहीं ये गलत राह पर न चला जाए, इसलिए उसको भी एक पॉकेट मनी मिलती थी लेकिन सीमित मात्रा में, फिर भी वो शेयरिंग करके चलता था कि चलो मेरे दोस्त को बुरा नहीं लगे और मेरे दोस्त को ऐसा नहीं लगे कि मेरे पास नहीं है, तो वो कोई भी चीज़ खाने की खरीदता तो भी दो चीज़ खरीदता, दोस्त को भी खिलाता, खुद भी खाता। कहीं पर मान लीजिए एक आध पिक्चर देखने चले गए क्योंकि कॉलेजियन बच्चे है, रोकने से रुकते तो है नहीं, तो भी दोस्त को लेके जाता, फिर भी वो दोस्त कभी संतुष्ट नहीं होता, तुम्हारे पास ये है वो है, अब तो भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, फिर तो बच्चों में थोड़े से ये आने लगते ना, सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है उनकी, बोलता है कि अरे कितनी मदद कर ली, कितना मैं इसका ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये अपने आप में हीन भावना भर रहा है, तो अब ये जाने। उसको उसने कितनी बार समझाया कि देखो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी माँ मेहनत कर रही है, तो तुम भी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन वो हीन भावना इतनी रखता था कि न तो वो पढ़ने में होशियार, न ही वो माँ के जो मेहनत है उसको महसूस कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। और दोस्त के साथ भी ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो दोस्त कंटाल करके फिर पीछा छुड़ा दिया कि भाई ऐसी दोस्ती नहीं करनी है, इतना साथ निभाया उसके बावजूद भी ये तो बिल्कुल ही बदलने को तैयार नहीं है। और दोस्त को तो फिर आगे पिता ने बाहर शहर में भेज दिया कि नहीं, अब इस कॉलेज से निकलो और दूसरे शहर में जाना है आपको, तो दूसरी जगह भेज दिया। शुरू शुरू में फ़ोन पर बातें होती रहती थी, फिर बाद में नहीं, धीरे धीरे बंद हो गई क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हो गया। अब इधर वो साधारण जो दोस्त थे सोचा कि अरे वो अपने आप को क्या समझता है, फ़ोन भी नहीं उठाता, ये भी नहीं करता है, अब मैं बताता हूँ कि पैसे वाला किसे कहते हैं। और एक दिन उसने किसी के घर में चोरी कर ली, चोरी की तो पकड़ा नहीं गया, तो उसको तो अच्छा लगा कि अरे वाह, चोरी में उसने मतलब कितने 55-56 हज़ार रुपये चुरा लिए किसी के, कुछ सोने के दागिने भी थे। और फिर वो लेकर के दूसरे शहर में चला गया क्योंकि अब यहाँ पर तो माँ पूछेगी कि इतना कहाँ से आया, इसलिए माँ को बताया कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, कॉलेज तो हो गया है और हो जाएगा, एग्ज़ाम देने आ जाऊँगा, लेकिन मैं बाहर जा कर के कुछ काम ढूँढता हूँ। बोले ठीक है, माँ को क्या पता। और जो पैसे चुराए उससे कमरा किराए लिया, खुद के लिए 2-व्हीलर खरीद ली, बाइक खरीद ली, और इधर उधर घूमना। और धीरे धीरे वो कहते हैं कि जैसा आप चाहोगे ना वैसा आपको मिल जाएगा, तो उसका संग भी खराब मिला, धीरे धीरे धीरे धीरे उसका संग बिगड़ता गया, चोरियाँ चकोरे और बड़े बड़े अपराध करने लगा। और एक दिन पकड़ा भी गया, थाने में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तब माँ को सूचना मिली कि बेटा ऐसा काम कर रहा है, माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकती है माँ, कुछ भी नहीं, उसने तो मेहनत करके बच्चे की पालना की, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है। तो उसने सोचा कि शॉर्टकट अपनाऊं, तो शॉर्टकट के चक्कर में पूरा ही गया जेल में। कोई कोई बच जाते हैं, शातिर माइंड के होते हैं वो, तो क्या सोचिए, अपने आप में सोचिए कि क्या अच्छा कर रहे हैं, ये काम अच्छा तो नहीं है ना। पाप का पैसा पाप में ही जाने वाला है, उसका कभी भी घर में अच्छा नहीं होता है, एक चीज जाएगी दूसरी चीज आएगी, एक नेगेटिविटी खत्म हुई दूसरी नेगेटिविटी आ जाएगी, इसलिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, मेहनत से आगे बढ़ना है, और मेहनत करते करते आप आगे बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज की पहेली की तरफ। आज की पहेली है, ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, और यहीं पर आप फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में। आज आपको वो सिखा देते हैं कॉर्न पाक, मतलब आपको मकई का हलवा सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, कल जैसे महाराष्ट्रियन रेसिपी आप सभी ने सीखी, सुभाष भाई का कहना था, आज कंचन भाई मंडाली से आपकी फरमाइश है कि आप हमें मकई का हलवा सिखाइए, जिसमें गुजराती में कहते हैं डोडा पाक सिखाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, सिखा देंगे। तो डोडा पाक के लिए देखिए, सभी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपको सिखा रही हूँ, हलवा सिखा रही हूँ। ठीक है, खीर नहीं, खीर भी सिखा देंगे आपको, आज हलवा सीख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, मकई लीजिएगा एकदम सॉफ्ट वाले। अभी तो देखिए देसी मकई जो खेतों में है, तो वो वाले मकई लेने हैं आपको, सॉफ्ट वाले जिसके दाने एकदम सॉफ्ट हो। कैसे एकदम छोटे छोटे से दाने, मोती जैसे छोटे छोटे से दाने और एकदम सॉफ्ट वाले, वो मकई लेनी है। ठीक है, और फिर आप ले लीजिए घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। तो ये हो गए सामग्री। क्या क्या लिया, मकई सॉफ्ट वाली, शक्कर, घी और ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे, जो मकई लिए है उसके छिलके ऊपर से निकाल दीजिए और अंदर से जो सॉफ्ट दाने मकई निकलती है ना, उसका आप कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस इतना भी मत कर लीजिए कि अंदर का कचरा चला जाए, मकई ही छिल जाए साथ में, नहीं। ठीक है, वो दाने ही गिरने चाहिए। और फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं कहीं कचरा चला जाएगा, तो आप दाने उंगली से निकाल दीजिए, उंगली से निकाल करके मिक्सर में पीस लीजिए। ठीक है, तो आप पीस भी सकते हैं, और मतलब पीसेंगे कैसा, अध कचरा, एकदम बारीक नहीं। और अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो भी वो तो खैर अध कचरा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये किस किस निकाल दिया, सारा किस एक में इकट्ठा हो गया। अब इसमें देखिए, ये जो हम सॉफ्ट वाले मकई इसलिए लेते हैं कि मकई के दाने के भी ऊपर वो छाल होती ना, तो पक जाते हैं दाने, तो वो छाल अटकता है, वो अच्छा नहीं लगता। फिर हलवा है, खीर है, ऐसे बनाओगे उसमें वो छिलके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सॉफ्ट वाले मकई लेते हैं ताकि इसमें वो छिलके नहीं आए। अब कद्दूकस कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर और गैस चालू कर दीजिए, घी डालिए। घी गर्म हो जाए तो इसमें ये जो किसकिस आपने डाला ना, कद्दूकस किया है, ये सारा आप घी में डाल दीजिए और धीमी मध्यम आंच पर इसको सेकिएगा। ठीक है, और सेकने के बाद जब आपको लगे कि ये खुशबू दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप सेकेंगे तो वैसे वैसे सफ़ेद जो है वो दाने धीरे धीरे हल्के हल्के बादामी में बदल जाएंगे। ठीक है, बादामी कलर के हो जाएंगे, और तब आप समझ लीजिए हल्के से बादामी हो जाए तो कि हाँ हमारा यह सिक गया है। एक तरफ आप गर्म पानी रख दीजिए, फिर आवश्यकता के अनुसार ये गर्म पानी इसमें डालिए कढ़ाई में। ठीक है, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल दीजिए कतरन करके, और जब ये गाढ़ा हो जाए मिश्रण, पानी ख़त्म हो जाए, फिर आप शक्कर डाल दीजिए। फिर शक्कर एक रस हो जाए, इसका भी पानी उड़ जाए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। लास्ट में इलायची पाउडर बुरका देना है। तो ये बन गया मकई पाक, जिसको कॉर्न पाक कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट रेसिपी है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट वाले मकई लेना है, भले आप कद्दूकस करिए, भले दाने निकाल करके मिक्सर में पीसिएगा, अत कचरा, बहुत ही बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। ठीक है, और फिर आप गैस चालू करिए, कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में घी डालिए, और घी गर्म हो जाए तो ये आप कद्दूकस किए हुए मकई डाल दीजिएगा और धीमी आँच पर इसको सेकिएगा। जब सिक जाए तो एक तरफ गर्म पानी रखिएगा, तो वो गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार इसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट डाल देना है, और फिर थोड़ा सा आपको गर्म होने देना है, तो ये पानी उड़ जाएगा, क्योंकि भाई हलवा बना रहे हैं तो हलवा में तो पानी उड़ ही जाता है। पानी उड़ जाए उसके बाद आप शक्कर डाल दीजिए, शक्कर का पानी भी एक रस हो करके उड़ जाए, बस फिर गैस बंद कर दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए। ये आपका बन गया
मकई का हलवा, जिसको गुजराती में कहते हैं डोडा पाक। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाई है, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा। ठीक है, और फिर से एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो आपको रेसिपी में जो मकई का हलवा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर थी। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो आज खुशी की बात यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि सभी का जवाब सही है, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी अब नाम सुनाना चाहूँगी। सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई धानेराव से, संगीता जी कपासन से, शोभा जी कपासन से, अलका जी चित्तौड़गढ़ से, दीपा जी उदयपुर से और फिरोज भाई पालनपुर से। एपी वो कहाँ से है नहीं पता, उनका मैसेज आया है। तो सभी का जवाब सही है, बहुत बहुत आभार। श्राद्ध, आज के पहेली का जवाब है श्राद्ध पक्ष। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई चोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई धानेराव से और फिरोज भाई। तो आपके लिए पुनः ढेर सारी तारीफ। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूँगी। यदि आप दूसरों की कमजोरियाँ अपने में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो शीघ्र ही वे आपका अंग बन जाएगी। अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। जिस भज

जन्म दिया उसे कभी भूलना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए।

ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी

0: दाता को बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
2: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
1: सोनोग्राफी वो किस लिए?
2: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
2: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
2: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए।
4: कोई सुझाव हो तो बताओ,
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सके।
5: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
5: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
5: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
6: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभलकर विद्रोह का निर्णय लेना है।
7: आपने क्या सोचा है?
6: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
7: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
8: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
9: What is their plan? Tell me.
8: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
9: Don't test my patience. Just tell their plan.
8: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
9: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
5: मुझे कहां जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाद, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलाद और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
10: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
10: आप अपनी करो, मैं अपनी, सारा दोष मेरा है।
11: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
10: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
10: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
12: कौन करेगा हमारी मदद?
10: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
12: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए। लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
13: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
14: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
13: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
14: Oh, you foolish! चलो देखता हूँ।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुँचता है और ताला खोलने को कहता है।
14: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
15: जी जनाब।
16: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
15: सर जी, ये देखिए, इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
14: औजार जब्त कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
17: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
10: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
11: Then I must announce the judgment.
17: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी, लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके

शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहां अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए, या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले। और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं, और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया, और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे शहर लखनऊ से, कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लखनऊ के शहर से, खूबसूरत शहर से आती है हमारी साथी, हमारी सीनियर बहन, जिनका नाम है ममता कपूर। और ममता कपूर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और एक शानदार रेगुलर सेवाओं के बाद अब समाज में कैसे अपनी सेवाएं दे रही हैं, या कहें कि दूसरी पारी जीवन की कैसे खेल रही है, आइए हम जानेंगे। तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और पर हम कहते हैं ना, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ममता जी, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
0: जी, ऑक्टावो की वादियों से आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो शो, और आप इसे सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी, और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर, नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से ममता जी हमारे साथ हैं, और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है। और अब आप थाम के बैठ जाइए आपका दिल अगले 1 घंटे के लिए, देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, तो माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझते रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं, जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी, हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी, और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियां मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जन्म में हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक, और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी, किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया, और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे, और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता है था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे एसएससी बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हुई ना आपके साथ। तो वो और मैं, मेरे से वो 1.5-2 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही एसएससी बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया। और वहाँ भी मुझे दिया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन पे इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर, मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे, और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स सब उसी क्लास में करवाए, मुझे कहीं भी मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझ पे दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई, और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई, मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया, और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल आबाद गत से करे, और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया, मेरे एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और मैं आप विश्वास करें, मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई। और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए, आई रिटायर्ड एज मैनेजर। मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी, सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे। बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से। मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
0: तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन। और जिस हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं या हम उनको यही बताना चाहते हैं, और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं जागरूकता, कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए और उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया। बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भरपूर प्रयास किया और वो अमेरिका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला और आपने वहां पर अपने प्रेम से, अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो हम भी इस बारे में जानते हैं कि हम एक आदमी की जो गरिमा है जो देश के संविधान ने उसको दी है, तो यह वो गरिमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और वो दोनों ही आपने उसको मिसाल बनाते हुए आपने जीवन को दिया है और इसलिए हम लखनऊ से आपसे जुड़ पाए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मन की आंखों से 107.8 FM और मैं हूं आपका होस्ट शरद। तो आज के इस शो में ममता जी से फिर हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो उन्होंने बात कही है, देखिए 2016 का जो कानून देश में लागू है और आज भी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रैंप नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है और बहुत सारी समस्याएं एक व्हीलचेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया, तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे और कैसे वो सहयोग मिल पाया। और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, लोग कहे बिना ही कह देते। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अंबेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
1: देखिए, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने 4 लड़के आए और जैसे गॉडसेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के 8 हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या? तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं बस। उस दिन का दिन, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया, और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या, मतलब हर क्लास, हर ट्यूटोरियल, हर आउटसाइड लेक्चर, सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला। मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया, लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा। वरद हस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की, उसके अलावा साथियों ने, और ईश्वर का वरद हस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए एक भैया जी मिल गए रिक्शे वाले, तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे, वो हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे, मुझे बैडोली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके। और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य नृत्य की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की, मैंने LLB भी की भी डिग्री पाई, और वहाँ ज्वाइन करा नहीं, लेकिन मैं एग्जाम देने गई और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे। और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे, और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती, लेकिन देखिए भगवान, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा बावेली होमियो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में बन गई, और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी अपने ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया और मैं उस पर बैठ के 9:45 से शाम को 5 बजे तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी, और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की, और मेरी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं डॉक्टर ममता कपूर हो गई।
0: जी।
1: फिर उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में, तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अट्यूनमेंट लिए। मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था लेकिन उससे और बढ़ा। लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ज्ञान बाटर मास्टर थे उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी। तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और इस तरह मेरा सही पूछे तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
0: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुवत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहीं कि हमको चुनौती आ जाए तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि भले मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था साधित कॉलेज से कहते हैं और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी। तो फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया, मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो तो जज्बा है। तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके वो मैं जानना चाहूंगा।
1: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल्य थे
0: जी,
1: उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया। तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य और मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। ये जो चीफ होते हैं बैंकों के उनको तो हर 3-5 साल में ट्रांसफर होके जाना, पर जो आया उसने ही मदद की। किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ। हाँ, इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे ले के जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की, होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रैंप जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी, लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए, तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तब मुझे ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी, तो मुझे
0: जी
1: शायद ममता कपूर के नाम से लोग कम जानते थे, ममता दीदी के नाम से बहुत जानते थे और सम्मान और प्यार भी देते थे, और बल्कि लोग कहा करते थे कि अगर किसी को कभी कोई डिप्रेशन हो तो जाके ममता के पास बैठ जाओ तो
0: जी
1: तुम्हारा डिप्रेशन तुरंत दूर हो जाएगा। दीपक सिंघल जी वहाँ आए और उन्होंने
0: जी
1: मुझे पैर लगा के व्हीलचेयर से चढ़ाते हुए देखा, और उन्होंने हमारे जो लोकल इंचार्ज थे उनसे कहा, अरे दीदी को इतनी परेशानी हो रही है आपने देखा नहीं उस दिन? मतलब आप ये सोचिए कि सुबह मैं जब आई हूँ तब मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई हूँ,
0: जी बहुत बढ़िया
1: रैंप से वापस गई हूँ, इतना
0: जी
1: कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला।
0: जी और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं, और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता जी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे, उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डीआर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं, और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जो जल रहा है, कुछ नेताओं की क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उस उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
1: बहुत
0: तो
1: परेशान हो
0: उनको
1: गए हैं।
0: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी के आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा?
1: अरे उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि
0: जी
1: मेरे मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे, यहाँ
0: हाँ
1: लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये
0: जी
1: बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने
0: जी
1: बताया, तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं
0: जी
1: जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत मिली है।
0: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहां पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है, तो ये भी धारणा कई बार लोग
1: बिल्कुल
0: हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो
1: हाँ
0: यही कहना चाहता हूं, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं,
1: बिल्कुल
0: और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी
1: काबिलियत
0: चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं, ये हमारे जीवन के मूल्यांकन, किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे शख्सियत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे, और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो कुछ 1990 से लेकर शायद 1991 से लेकर कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे, और उस दौरान
1: हाँ।
0: उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
1: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को देती है उसके लिए भी हुआ था, नाम
0: नॉमिनेट हुआ था
1: मेरा
0: आपका नाम?
1: प्रस्ताव नॉमिनेट हुआ था हाँ,
0: जी
1: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो
0: जी
1: उसने लखनऊ में यूपी से सात ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
0: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिले को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया, वो आठ हाथ, वो हेवनली आठ हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी हमने याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे,
1: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
0: जी जी, और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी और शायद आप पहली शख्सियत है जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, ए से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है, तो ये सब जो करने की का जज्बा क्या माता पिता का रहा या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आपके अंदर आई और वो चलता रहा, कैसे हुआ ये?
1: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
0: जी,
1: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
0: और मैं आपको बताऊँ, हमारी दो बेटियाँ होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है, उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसमें लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है, तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें जिससे जल्दी से आहत ना हो। तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं और वहां पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में, और मैं एक जमाने में एक दौर में उस बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से या कहीं समुदाय से, और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और ये सब में, भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसपे है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
0: जी।
1: ये तकलीफ दे बात है।
0: जी जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं और हम सबको जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है श्रोताओं, आप जान लें कि खासतौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा, तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने एक जीवन में अपना एक मुकाम पाया और उसका कारण है शिक्षा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी बहुत सारे देश के बच्चों के जो हालात है आप देखते हैं
1: कि मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूंगी, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के, यहाँ के टॉप को स्कूल के बच्चों का मेरे लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में, अपने ओआईसी से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो जब वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन, जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था, जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी, मैं 5 साल पहले मधुबन से हमारे पहले के जाने वाले अनिल भटनागर, जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए। वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो वो आए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इसमें भी मैं ईश्वर की दया ही कहूंगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के, किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना। और मिस्टर भटनागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ। बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हो चुकी हूँ, और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं बाबा की होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ, और अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अब ब्रह्म कुमारी में आने के बाद मुझे पता चली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं वो सब आत्माएं हैं, और उनका हमारे साथ अटूट और भाई भाई का नाता है, और ईश्वर से हमारा अटूट नाता है, जो कि मुक्ति धाम शांति धाम में रहते हैं। और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है वो बाबा की याद और साथ में गुजरे, और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूँ और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूँ और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
0: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके, और आज हम इस बात का, इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं। ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा, और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशों को जमाने और सजाने, और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें, और श्रोताओं फिर से ऐसी एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ।
1: शरद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: जी,
1: इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने, बहुत अच्छे अनुभव साझा किए हैं, मजा आ गया। आशा है
1: थैंक यू।
0: कि हमारे भाई

0: नमस्ते भाभी, ये लुई की लंबी लिस्ट वाली सारी सब्जियां हाजिर है।
1: ओ शुक्रिया मनोज, अब क्या बताऊं, जब तुम्हारे लुई भाई साहब रसोई में लग जाते हैं उन्हें तो घंटी भी नहीं सुनाई देती। कह रहे थे आज सबकी छुट्टी है, कुछ खास बनाता हूँ।
0: अरे फिर तो अच्छा हुआ, जो मैं बाजार निकल ही रहा था आज मंडी में ताजा ताजा
2: काचे।
0: हाँ भाई एल्मो, ताजी भिंडी और पालक भी।
2: एल्मो मनोज अंकल के साथ खेलेगा अपना नया खेल, सब्जी गिनो रंग से छाटो। एल्मो गिन के छाटेगा 3 लाल और 3 हरी सब्जियाँ।
0: 1, 2, 3 हो जाओ शुरू।
2: पहले 3 लाल सब्जियाँ, गाजर। 1, 2, 3 3 लाल गाजर।
0: अरे वाह।
2: और अब 3 हरी सब्जियाँ, भिंडी। 1, 2, 3 3 हरी भिंडियाँ।
0: क्या बात है, तुमने तो चुटकी में गिन ली। अच्छा एल्मो, भाभी बाद में मिलते हैं।
2: ओके अंकल।
1: अच्छा मनोज, तो क्या कहते हो एल्मो, हो जाए मम्मी के साथ एक और गिनती वाला खेल?
2: नया खेल मम्मी के साथ।
1: बिल्कुल, और इस खेल को कहते हैं हाँ ताल पे गिनती।
2: ताल पे गिनती।
1: हाँ, मजेदार गिनती। एक खिलाड़ी सुर गाएगा और दूसरा उन सुरों को गिनकर उतनी ही बार इस डब्बा ढोलक पर ताल बजाएगा।
2: हो, जितने सुर उतनी बार डब्बा ढोलक। ओके, अब मम्मी पहले एल्मो बजाएगा
1: और मम्मी गाएगी। एल्मो तैयार?
2: सुपर तैयार।
1: तो शुरू करते हैं। ला
2: मम्मी ने गाया एक सुर, तो एल्मो बजाएगा ढोलक एक बार।
1: वाह एल्मो वाह, पहला राउंड हुआ पार। टडा, अब अगला।
2: ला ला, एक ला और एक ला। मम्मी ने गाए 2 सुर और ये एल्मो ने बजाया ढोलक 1, 2 बार।
1: बिल्कुल सही गिना उस्ताद एल्मो डब्बे वाले। और अब ध्यान से सुनो।
2: ला ला ला, एक ला और एक ला। यानी 3 सुर। एल्मो को ढोलक बजाना है 1, 2, 3 3 बार।
1: और इसी के साथ एल्मो ने किए ताल पे गिनती के सभी राउंड पार। शानदार। अब एक और ताल पे गिनती वाला खेल हो जाए।
2: जाए।
1: ताल पे गिनती द्वितीय। इस खेल में हम दोनों बारी बारी से कोई धुन गाएंगे और दूसरा उस धुन में जितने सुर है उतनी ही चीजें गिनेगा।
2: हाँ, तो पहले मम्मी गाएंगी और फिर वो चीजें गिनेगा। रेडी?
1: रेडी। तो पहली धुन है
2: ला ला ला ला। हाँ, 4 सुर, 4 चीजें। हाँ, ये भी 1, 2, 3, 4 4 किताबें।
1: एल्मो ने पूरा किया एक और धुआंदार खेल। अब मम्मी के गिनने की बारी
2: और एल्मो सुर में गाएगा ला ला ला ला ला।
1: 5 सुर। क्या गिनूं? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 5 कटोरियाँ।
2: वाह मम्मी गिनती वाली, आपने भी राउंड किया पार फटाफट। अब मम्मी गाएगी।
1: ठीक है, शुरू करते हैं। ला

0: 최순 엘목이니가 제일 좀 멋지. 한, 둘, 도, 딘, 잔, 빠지, 채. 제일 조디조디 좀 멋지.
1: 샤바시.
0: 맘미, 엘목고 딸백인 디게일게 보았 맞아야. क्या मम्मी और एल्मू और खेल सकते हैं?
1: एल्मू, अभी मम्मी को थोड़ा काम तो करना है, पर एक आइडिया है।
0: आइडिया?
1: हाँ, काम का काम और खेल का खेल। क्या एल्मू उस फाइल के ढेर से मम्मी को गिनकर 3 नीली फाइलें दे सकता है?
0: उस्ताद, एल्मू गिनती वाला तैयार है मम्मी। आइए लो, 1 नीली फाइल, 2 नीली फाइल,
1: हाँ,
0: 3 नीली फाइल।
1: शाबाश।
2: वैसे एल्मो को गिनने का शौक तो है, पर वो साथ साथ डब्बा मतलब ढोलक बजाने में भी सच में उस्ताद है।
1: हाँ, और मजे की बात तो ये है कि चाहे घर में रखी या आसपास की चीजें हो, गागा कर गिनना हो या एक ही रंग या आकार की चीजें ढूंढनी हो, ये सारे ही खेल गिनती सीखने के मजेदार तरीके हैं। हर रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
2: अरे वाह, ये तो काफी जबरदस्त खेल है भाभी। मैं भी चिंटू के साथ ट्राई करूंगा। वैसे चिंटू भी बाजार में सारी दुकानें गिन लेता है।
1: वाह, बढ़िया है।
2: और उससे भी बढ़िया, जब बच्चे हमें गिनने को कहते हैं और हम भी खेल खेल में बच्चे बन जाते हैं।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बनाने के लिए आज हमारे साथ विशेष बनारस से बीके तापोशी जी हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे और निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है बीके तापोशी बहन, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है। आप सभी कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अच्छे हैं और आपको सुनने का मौका मिल रहा है हमें, और भी अच्छा लग रहा है। और चिराग यादव जी ने याद भेजा है, हेलो दीदी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, आपका इंतजार खत्म हो गया है और हम लोग अब बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जिस तीर्थ स्थल पे हैं, भारत का एक बहुत ही मुख्य जो है आध्यात्मिक स्थल जिसको कहा था बनारस, सुन के ही अच्छा लगता है, खुशी होती है, गंगा का किनारा और वो सारी चीजें जो हैं याद आती हैं। और बनारस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर भी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे एक आशा का केंद्र भी है। हर व्यक्ति चाहेगा कि एक बार जरूर बनारस गंगा स्नान करके आ जाए। तो आप उस नगरी से बिलोंग करते हैं और वहां पर रहकर जो आध्यात्मिक जो सेवाएं हैं वो काफी कर रहे हैं आप और दीदी मिलकर, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत अच्छा लगेगा आज आपको सुनकर। जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए, वहां पर किस तरह से आध्यात्मिक सेवा केंद्र आप चलाते हैं।
1: ओम शांति एंड सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बनारस जो है एक आध्यात्मिक नगरी है, एक्चुअली सच में यही है। बनारस कहे, काशी कहे या वाराणसी कहे, बहुत प्रचलित स्थान है क्योंकि ये साधु संन्यासी महंतों जगत गुरु शंकराचार्यों का मेन स्थान माना गया है। क्योंकि इसको काशी को कहा जाता है शिव की नगरी, लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में आते हैं, काशी के दर्शन करने के लिए। और अभी स्पेशल ये बन गया है कि जब से हमारे माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सुंदर काशी विश्वनाथ धाम बनाया, कॉरिडोर बनाया, तब से ये स्थान का महत्व पहले तो था लेकिन और ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे भारत की संस्कृति या फिर हमारे भारत का इतिहास देखने तो काशी नगरी सुप्रसिद्ध है, आध्यात्म नगरी इसको कहा जाता है। और इस आध्यात्म केंद्र को, स्पिरिचुअल केंद्र को बरकरार रखने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से जीवन में खुशियों को कैसे बरकरार रखे, इस उद्देश्य से एक सुंदर सा जीवन मूल्यों पर बहुत सुंदर शामनाथ बनारस में म्यूजियम खोला गया है। और इस बनारस जोन की संचालिका हमारी परम आदरणीय बड़े दीदी, इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं, उनका नाम आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी है। अभी एक महीने पहले उनका भी सेशन चला था जो पश्चिम नेपाल और पूर्वांचल की संचालिका है, तो उनके ही नेतृत्व में ये सारा कारोबार चलता है और बहुत जगह से लोग देश विदेशों से इस म्यूजियम का अवलोकन करने भी आते हैं। तो ये सुंदर सा आध्यात्मिक नगरी को और स्पेशल बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी इस राज्य में मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। तो अभी जो मुझे कहा गया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस तभी व्यक्ति शेयर करता है जब उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, जब उसके जीवन में कुछ स्पेशल मोमेंट होता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है, तब वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। और वो चाहता है कि जैसे मेरे साथ अच्छा हुआ या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए जिससे मेरे संबंध और मधुर हो गए, ऐसे संबंध मधुर औरों के भी हो, जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए व्यक्ति एक्सपीरियंस को शेयर करता है। जब मैं इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आई, इससे जुड़ी, तो सबसे पहले मेरे फैमिली वाले जुड़े, मेरे फादर जुड़े। और जब मेरे फादर जुड़े और उनके अंदर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ओरा पहले से ही था क्योंकि वो आरएसएस में जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री रह चुके थे, तो फादर को स्पिरिचुअल टच पहले से ही था। तो जब वो इस स्पिरिचुअल ज्ञान को, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तो लाइफ में उनके बहुत चेंजेस आ गए। गुस्सा ना के बराबर रह गया और फैमिली में कुछ कुछ ऊपर नीचे कलेश जो होते थे वो एकदम खत्म से होने लगे। माता जी में परिवर्तन आने लगा। तो जब माँ बाप का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है तो बच्चे अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे फादर बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही शांत एंड कूल नेचर के हैं, बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे लाइफ में एग्जाम फोबिया हुआ, बिकॉज मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे एग्जाम फेयर और साथ साथ स्टेज फेयर बहुत ज्यादा होता था। और फादर की इच्छा थी कि मैं जैसे आरएसएस का सीनियर लीडर, मेरी बेटी भी एक अच्छी स्पीकर, एक अच्छी वक्ता बने, लोगों को फेस कर सके, अपनी बातों को रख सके। लेकिन मुझे ये विल पावर एकदम जीरो लेवल का था। मैं कभी स्टेज को फेस नहीं कर पाती थी और ना ही मैं कभी एग्जाम को फेस करने की कोशिश भी करती थी कि एग्जाम ना हो तो बेटर हो। वो अंदर इतना फेयर क्रिएट करता था जो हमारे अंदर का विल पावर डाउन करता था। और जैसे ही विल पावर डाउन होना शुरू होता है तो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाते। हम अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली
0: जी
1: मेरी क्वालिटी क्या है। विल पावर के डाउन होने के कारण मेरे फादर ने कहा, कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन करो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर को ज्वाइन करो, सिंपली मेडिटेशन सीखो। घर में छुट्टी का दिन था और मैं जस्ट 9th क्लास हाई स्कूल में ही जाने वाली थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज्वाइन किया और मेडिटेशन सीखा, और मेडिटेशन से मेरा मन अपने आप शांत, एकांत और साथ में कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ने लगा कि जो बच्चा 4 घंटा पढ़ाई करता था लगातार और उसको खाली एक पेज याद होता था, और मैं सिर्फ आधे घंटे में किताबों को अच्छे से स्टडी कर लेती थी, मेरी याद करने की मेमोरी पावर जो थी या कंसंट्रेशन पावर थी वो एकदम पीक पॉइंट पे चली गई। मुझे अंदर खुशी होती थी कि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई है, मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता आ गई है। मुझे सब्जेक्ट में सबसे मैथ बहुत टफ लगता था कि मुझे तो मैथ्स नहीं पढ़ने हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मैथ्स से ग्रेजुएशन भी करूंगी, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैथ्स को मैंने स्पिरिचुअल से जोड़ा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट को मैंने स्पिरिचुअल से टैली किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या सोचा कि मैथ्स में जैसे सपोज करते हैं, एजम्पशन करते हैं, लेट इज सपोज दैट एक्स बराबर दिस, उसी प्रकार मैंने सोचा कि जैसे मैथ्स में सपोज करते हैं और वो प्रूफ हो जाता है, उसी प्रकार जब मैं ये सपोज करूं कि वी आर द सोल, वी आर द एनर्जी, तो वो सपोज करते हैं तो जो फील करते हैं वो प्रूफ हो जाता है। और हम सभी ने साइंस में ये पढ़ रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, हम सभी ने साइंस में पढ़ा। फिर हमने एनालाइज किया कि मैंने जो पढ़ाई किया है ये स्पिरिचुअल प्योर साइंस है। जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है एनर्जी, दैट मीन्स इट्स नॉट ए, एनर्जी को हमने हमेशा सुन के रखा है कि एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा, दैट मीन्स उसको ना जलाया जा सकता है, मारा जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इट्स नॉट ए क्रिएट, नॉट ए डिस्ट्रॉय, इट्स ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरे को समझ में, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है स्पिरिचुअल। और जब मैंने स्पिरिचुअल को अपने लाइफ में उतारा, मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मेरे संबंध परिवार में बहुत अच्छे बने, क्योंकि बाय नेचर मैं पहले थोड़ा सा गुस्से वाली थी, थोड़ा सा छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाती थी, क्योंकि फादर का स्कूल चलता था तो अपने आप को भी एक रॉब होता था कि मेरे फादर का स्कूल है, मेरी दादी का स्कूल है, कोई कैसे मेरे बेंच पे बैठ गया, है ना। तो थोड़ा सा ईगो होता था, थोड़ा गुस्सा होता था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करने के बाद मेरा नेचर इस कदर परिवर्तन हुआ कि मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि इतना चेंजेस कैसे अपने जीवन में आपने लाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रह्मा कुमारी में अपने जीवन को समर्पित करूंगी। आज मुझे 10 साल से ऊपर हो गए ब्रह्मा कुमारी बनारस जोनल जोन में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। मैंने लाइफ में जब इतने चेंजेस आए, नेचर इतना इंस्टेंट चेंजेस आ गए, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन करने के साथ साथ कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया। वो रूल रेगुलेशन ये था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में तो थी, मोबाइल भी देखती थी, बाहर कॉलेज में भी पढ़ाई करती थी, सबके कांटेक्ट में थी, लेकिन अंदर अंदर मेरी एक जर्नी चलती थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी थी। अंदर अंदर मेरी कन्वर्सेशन चलती थी उस परमात्मा के साथ, मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने ही है, ऐसे लाइफ नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल के साथ साथ एक यूथ आइकन बनना है जो बहुत सारे युवाओं को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब हम सभी थे तो कई सारे बच्चे के ऐसे केसेस आते थे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने थोड़े से नंबर कम हुए तो उसने अपने आप को एक खत्म कर लिया, या एग्जाम के कारण वो एग्जाम छोड़ के भाग गया, या कोई ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या गलत संगत में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस भारत का भविष्य क्या होगा। यूथ जो हमारे भारत की शान है, आन है, आज वो मिसगाइड हो रहा है। इनको सही दिशा दिखाने वाला एक यूथ ही चाहिए। उसके जैसा ही होगा तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि मैं स्टडी करने के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी भी कर रही हूँ, लाइफ में परिवर्तन भी आ रहा है। और मैं यही कोशिश करती हूँ सभी युवाओं को, यूथ्स को बताने की कि आप अपने लाइफ में कुछ विशेष करें, स्पेशल तो करें, लेकिन हम कभी दिशा विहीन हो जाते हैं। रीजन इज दैट कि हम स्पिरिचुअल नहीं बन। लाइफ के तीन क्वेश्चन होते हैं, IQ, AQ एंड SQ। IQ दैट मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ दैट मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, एंड थर्ड इज दैट SQ दैट मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो हमारे पास इंटेलिजेंसी बहुत सारी है। इमोशनली हम कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन जब हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन मजबूत रहता है तो हम अपनी IQ को सही दिशा में और स्पिरिचुअल क्वेश्चन के साथ अपने इमोशनल क्वेश्चन को भी सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, उसको डायरेक्शन चाहिए, या तो वो गलत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज वो पॉजिटिव में मूव करेगी। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। और मुझे बहुत
0: बिल्कुल
1: खुशी होती है कि मेरे कॉलेज लाइफ की मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। वो लोग मेरे को कहते हैं यू आर जस्ट आइडियल फॉर मी। मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो एज ए स्टूडेंट थी, है ना, लेकिन मैं जब स्पिरिचुअल फील्ड में आई तो लोग मेरे स्पीच को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर लाइफ में कुछ परिवर्तन महसूस किया, अपने लाइफ को चेंज किया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि यही मेरे जीवन की दुआओं को कमाने का सही तरीका है। क्योंकि तो जीवन में मैंने सभी ने पैसा तो कमाया लेकिन दुआएं नहीं कमाया, और ये दुआ ही दवा का काम करता है। इसलिए कहा जाता है जहां दवा काम ना करे वहां दुआ काम करता है। तो एक्चुअली मेरे जीवन में भी ऐसा रहा। जब हमारी परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे सेंटर पे आए तो उन्होंने कहा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आपको क्या करना है। और उनको भगवान का संदेश ही कहते हैं। वो वतन में गई, भगवान के पास गई, और आते ही पूछा उन्होंने कि आपको लाइफ में क्या करना है। मैंने कहा कि अभी तो मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये जॉब करना है। मैंने माइंड में बहुत सारी प्लानिंग किया। दीदी ने कहा नहीं, आपको एक यूथ आइकन बनना है, कुछ तो करना होगा ना लाइफ में। उन्होंने मुझे पावरफुल दृष्टि दिया, एक ब्लेसिंग दिया, और मैं इंस्टेंटली अपने लाइफ को समर्पित कर दी कि नहीं, मुझे तो ईश्वरीय सेवा में हाजिर होना है। मेरे मॉम डैड दोनों ही शॉकिंग हो गए कि ये क्या बोल रही है, और फ्रेंड सर्किल में भी किसी को पता नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में डिवोटी होने जा रही हूँ, समर्पित होने जा रही हूँ। कई लोग कहे अरे ये साधु संन्यासी बन गई, अरे ये तो घर बार छोड़ दी, लेकिन एक्चुअली आज लाइव है और आई थिंक मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे। और मैं कोई सन्यासी नहीं बनी हूँ, मैं कोई साधु नहीं बनी हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल आइकन कहें या यूथ आइकन बनी हूँ जो सबको सही दिशा दिखाने वाली हूँ। मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैं ईश्वरीय जॉब कर रही हूँ, और
0: जी
1: सोशल सर्विस है। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट लेकर, वो पेशेंट कैसा होता है, फिजिकल पेशेंट, लेकिन आज फिजिकली जो बीमारी हो रही है ना मेंटल से कनेक्टेड है। क्योंकि मन की बीमारी का इफेक्ट ही हमारे तन पे पड़ रहा है। आज सारे लोग टेंशन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, खुशी को भूल चुके हैं, लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं हंसने के लिए, खुशी
0: बिल्कुल
1: खत्म हो गई है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल को अपनी लाइफ में ज्वाइन करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं कि आप घर परिवार को छोड़ो, देश दुनिया को छोड़ो, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने जीवन में परमात्मा को जोड़ो, दैट्स इट।
0: बिल्कुल
1: अपने जीवन में परमात्मा को जोड़ो, उसकी शक्तियों को महसूस करो और सिंपल अपने लिए टाइम दो। अपने नेचर को परिवर्तन करो, अपने आप को और खूबसूरत बनाओ स्पिरिचुअल पावर से, है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी सी मेथड है। हमने सबको सिखाया, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के करो, सोच समझ के देखो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि सोच समझ के सोचो कि ये बात सोचने लायक है, ये थॉट सोचने लायक है। तो स्पिरिचुअल यही सिखाता है कि हमारे थॉट की क्वालिटी क्या है। इसलिए कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को
0: जी
1: बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नजर आएंगे। तो हमें
0: बहुत
1: अपनी स्पिरिचुअल डायरेक्शन को बदलना है, स्पिरिचुअल जगह को बदलना है कि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे थॉट में चेंजेस आते हैं। कई बार मेरे फ्रेंड सर्कल भी कहते हैं कि नहीं, मेरे लाइफ में बहुत बुरा बुरा हो रहा है, मेरा लाइफ बहुत स्ट्रेस है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। एक्चुअली हम सभी से यही कहना चाह रहे हैं, बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको आवाहन कर रहे हो, क्योंकि आप बुरा देख रहे हो, आप बुरा सुन रहे हो। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और साथ साथ बुरा बुरा बोलते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। इज दिस पॉसिबल? आप बुरा देख रहे हो, बुरा ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके साथ फिर नेगेटिव ही होगा। इसलिए नेगेटिव ना देखना है, कोशिश करना है कि जिससे मेरे मन को हार्मफुल हो। जैसे आपको डायबिटीज है, तो आपके पास कितनी भी मिठाई क्यों ना हो जाए, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, इतने हेल्थ कॉन्शियस है। उसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा ही है, हमारे मन को नेगेटिव टीचे टच ना करे। तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस होंगे, कुछ टॉक्सिक वीडियो होंगे जो आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे वो। आप देखेंगे मिठाई भी, या फिर जिसको डायबिटीज होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई आती है, चॉकलेट्स आएंगे, केक आएंगे, पेस्ट्री आएंगे। लेकिन जो डायबिटिक रहेगा वो क्या सोचेगा कि अगर मैं इसको खाऊंगा वो मेरे बॉडी पे इफेक्ट करेगा। सेम उसी प्रकार आज चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही नेगेटिव दुनिया है, बहुत ही भपका वाला दुनिया है। लेकिन इस नेगेटिव वातावरण को पॉजिटिव करने का तरीका है कि हमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सुनना है।
0: अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, और हमारे साथ
1: वो
0: हिमाचल से भी संतोष जी जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे एक मित्र जो है वो भी जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप आशीष जी, कैसे हैं? और मैं ओम शांति जी, ओम शांति। और आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ पर हैं इस वक्त?
2: मैं इस समय वैसे ग्वालियर में रहता हूँ
0: जी जी,
2: और मैं जॉब करता हूँ बामौर में।
0: अच्छा अच्छा,
2: और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया ही हूँ।
0: अरे वाह क्या बात।
2: और मुझे श्याम भाई ने बोला सिंगरौली से कि आज लाइव आप गाने का चांस मिल सकता है आपको, तो मैंने सोचा चलो दो लाइन बाबा की सुना दूं आप सभी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं चाहूंगा कि आप दीदी आ गई हैं तो उनके स्वागत में एक छोटा सा गीत आप पेश ही कर।
2: अच्छा तो बाबा कोई भी सुना सकते हैं? हेलो, ओम शांति।
1: बिल्कुल
2: ओके।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी खुश हैं आपके आवाज सुनकर। और रमेश काका अफ्रीका से लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके साथ में मेरे बहुत सारे भाई बहने जो हैं वो आपको याद कर रहे हैं, और कर्नल सोलंकी सर भी आ गए हैं, वो भी याद भेज रहे हैं आपको। तो आइए मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। अब वापस बीके दीदी को आपसे जोड़ना चाहूंगा। और सबसे पहला तो सवाल ये है कि आजकल खुश रहना आसान है, लेकिन खुशी को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या कुछ हमारा प्रमोशन हो जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, फिर वापस दुखी भी हो जाते हैं। तो वो जो खुशी है, कंटिन्यू कैसे रहे, बरकरार कैसे रखें हम, इसका कोई विधि विधान है ब्रह्मा कुमारी इसमें कुछ बताया हो तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो विधि विधान सुने आपसे। जी
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वह एंजॉयमेंट का माहौल होता, कोई ओकेशन रहता, तब तो मैं खुश हो जाते हैं हम सभी लोग। रीजन इज दैट कि वो खुशी का कोई एक रीजन मिल जाता है, एक कारण मिल जाता है। उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सिंपल सा मेथड बताया गया है कि आप अपने थॉट को चेंज करें। थॉट्स को चेंज कैसे करें, खुद को पॉजिटिव कैसे बनाएं, खुशियों को बरकरार कैसे रखें। खुशियों को बरकरार रखने के लिए हम क्या सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं खुश होंगी, मेरे संबंध दूसरों के साथ अच्छे होंगे, मुझे रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो मैं खुश होंगी, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा तो मैं खुश रहूंगी। तो हमने एक रीजन रखा कि अगर ऐसा होगा देन आई विल हैप्पी, ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी। तो हमने एक रीजन बनाया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सुंदर सा ये तरीका बताया गया है कि बिना रीजन के, बिना किसी त्योहार के, बिना किसी ओकेशन के, तो खुश कैसे रहे। सिंपल सा मैथड कि जब हम खुद को, जब हम स्वयं को पहचानते हैं कि एक्चुअली में खुशी मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मैं खुश रहकर जीवन जीता हूँ, ये जरूरी है। क्योंकि मैंने पैसा भी कमाया खुशी के लिए, जॉब भी किया खुशी के लिए, फैमिली भी बनाया खुशी के लिए, बाहर घूमने भी जाते हैं खुशी के लिए कि मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या रहता है, खुशी। लेकिन आप देखें कि मेरा डेस्टिनेशन हैप्पीनेस है, लेकिन मेरी जर्नी जो है वो अनहैप्पी हो रही। क्या मैं खुश होकर जॉब कर रहा हूँ? क्या मैं खुश होकर अपने काम को कर रहा हूँ? क्या मैं खुश होकर जीवन को जी रहा हूँ? दिस इज द इम्पोर्टेंट। इस रीजन से मैं खुश होऊंगा, ये रीजन बिल्कुल हटाना। फर्स्ट इज दैट कि अगर आप
1: जी
2: लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जो व्यक्ति जैसा भी हो उसको इजीली एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, कैसा भी हो, आपके चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके कलीग्स क्यों ना हो। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाता है जो व्यक्ति जैसा हो उसको इजीली एक्सेप्ट कर, बिना इरिटेट हुए, बिना चिड़चिड़ किए, बिना उससे आर्ग्यूमेंट करें, इजीली एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं या झेल रहे हैं या सहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट करना दैट मींस उसको दिल से स्वीकार। सपोज दैट कि आपके फैमिली में कोई है जो आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है और आपसे टॉलरेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जान गए कि इस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, तो आप क्या कहेंगे, किसका नेचर है, बेचारा बीमार है, मन से बीमार है। जैसे मैं एक मेडिकल कॉलेज में गई तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर आपको जब डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है, ये बहुत इरिटेशन होता है और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं मेरे डॉक्टर। हमने कहा पेशेंट, पेशेंट का बेचारे बीमार है, वो तो चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे ही। तो हमने पेशेंट को इजिली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डॉक्टर को नहीं किया। हम भूल गए कि डॉक्टर भी बेचारा मन से तो बीमार होगा ना। मन से वो बीमार है इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है या अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है, लेकिन पेशेंट के लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो जब हम जीवन में एक्सेप्ट करना आ जाता है तो संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक फैमिली में गई थी, वहां पे क्लासेस हो रहे थे, एक भाई ने कहा कि मेरी वाइफ बहुत चिल्लाती है, बहुत इरिटेट करती है, जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरी वाइफ फोन पे जोर से बात करती है। हमने कहा तो कोई बात नहीं, आप बाद में मेडिटेशन कर लो। हम लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे तब तक सब्जी वाला बेचता हुआ चला गया और जोर से चिल्लाया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। हमने कहा भाई साहब आपने इसकी आवाज सुनी, आपको किसी आवाज आई ना? सब्जी वाला है, उसका काम ही है, उसका धंधा ही है चिल्लाना। वो चिल्लाकर बोल रहा है, सब्जी बेच रहा है, अपना काम कर रहा है, हम लोग आपस में बात करें, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो बहुत हो रहा है। हमने कहा कि जैसे आपको अपनी वाइफ की आवाज इरिटेट कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आपका उनसे एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग बोलेगी, मेरे अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, इजीली उसको एक्सेप्ट करना है, तभी आज ये क्लैशेस होना बंद हो जाएगा। उस भाई ने एक्सेप्ट किया, सच में मैं अपनी वाइफ वाइफ को सोच रहा था मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग धीरे बात करेगी, जब मैं मेडिटेट करूँ तो शांत रहेगी, चुप रहेगी, लेकिन आज से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और सच कहें, जब से उस भाई ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, आज वो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में साथ में गए, दोनों में इतना अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई, कोऑर्डिनेशन, कि दोनों साथ में मेडिटेशन करते, दोनों साथ में क्लासेस करते, तो कितना छोटा सा चेंजेस से लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, संबंध मधुर हो गए और दोनों स्पिरिचुअल पर्सन बन गए, काम भी इजी हो गए। तो फर्स्ट इज दैट, लोगों को आप एक्सपेक्टेशन ना करें, एक्सेप्ट करें। दूसरा, अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक संबंध हमारे दूसरों से अच्छे नहीं होंगे, हमारी खुशी भी गायब होने शुरू हो जाएगी किसी ना किसी कारण से। संबंध अच्छे कब बनेंगे? जब हमें झुकना आएगा, जब हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आएगा। कोई बात नहीं, पहले मैं, आजकल संबंधों में ऐसा ही होता है कि पहले हम क्या सोचते हैं, पहले आप सॉरी बोलो फिर मैं बोलूंगी। मैक्सिमम ऐसा ही होता है फैमिली में कि आपकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, मैं कितना झुकूं, मैं कितना सॉरी बोलूं, मैं कितना अपने आप को नीचे रिग्रेट करूं, पहले आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी। आप देखो कि जब कुछ आपस में अनबन होता है तो आजकल का फैशन क्या हो गया, बात करना ही खत्म कर देते, वो भी ड्यूरेशन बढ़ जाती है बात ना करने की। कभी कभी 7 दिन बात नहीं करते, कभी 2 दिन बात नहीं करते, कभी कभी महीनों तक बात नहीं करते, एक ही फैमिली में रह रहे हैं लेकिन आपस में ऐसे मुंह घुमा के रहते हैं कि हमें आपसे बात नहीं करना है। तो ये संबंधों में खटास आने का रीजन क्या है? हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा अहंकार। वो एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उस एक पर्सन के लिए हमने ज्वेलरी, अपने गहने, सब कुछ बेच देते, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अपने संबंध को, उस व्यक्ति को बचाने के। लेकिन जब अपने ईगो की बात आई तो हमने अच्छे खासे संबंध को भी तोड़ दिया। इसलिए जो ईगो है, अहंकार, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं देह अभिमान, तो ये जो देह अभिमान जो आता है, वो देह अभिमान हमारे संबंध को खराब करता है, हमारे संबंध को ईजी नहीं बनाता, बहुत डिफिकल्ट बनाता। तो कुछ भी हो जाए, सॉरी आप पहले कहें। इसलिए कहा जाता है झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो पहले आप झुके संबंधों को अच्छे बनाने के लिए। एक छोटी सी इंसिडेंट मेरे को याद आती है, बड़ी हंसी मजाक वाली इंसिडेंट है कि दो कपल थे, आपस में अनबन हुई, बात करना बंद कर दिए, और फिर हस्बैंड को याद आता है कि अरे मुझे तो सुबह फ्लाइट पकड़नी है और मुझे सुबह जगाएगा कौन, तो बात तो करता ही नहीं था, उसने कसम खाया था कि मुझे बात नहीं करनी है उनसे। तो उसने क्या किया कि पर्ची में लेटर लिख के रख दिया बिस्तर के नीचे कि सुबह 4 बजे मुझे जगा देना, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। तो 4 बजे से ज्यादा हो गए, 5 बज गए, और वो एकदम हड़बड़ा के उठता है और देखता है कि मुझे किसी ने जगाया नहीं। गुस्से में किचन में जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि 4 बजे जगा देना, तुमने जगाया क्यों नहीं। तो उसकी युगल कहती है बिस्तर में जाकर के देखो। तो उसने जाकर के देखता है कि 4 बज गए, अब उठ जाओ। तो उसने जैसे ना बोल करके उसको कहा मुझे जगा दो, उसी प्रकार उसने ना बोल करके उसको कहा कि आप उठ जाओ। तो ना बोलने से कितना बड़ा लॉस हो गया, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, संबंधों में और कड़वापन आ गया। तो अगर किसी की भी गलती हो, सबसे पहले आप सॉरी बोल के उस संबंधों को जो खट्टे हो गए हैं उसको उसके अंदर मिठास लाएं। हम जब ई से बात नहीं करते ना, तो अंदर अंदर सबसे ज्यादा उससे ही बात करते। अब देखिए, जैसे आप इसे बात नहीं कर रहे हो, आपस में झगड़ा हो गया और आपने मुंह फुला लिया, मुझसे बात नहीं करना मुझसे, लेकिन अंदर अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन उन्हीं के साथ होती है। ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा नहीं बोला, कैसे बोल दिया मेरे को, ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ ये हमारे संबंधों को और ही खट्टा कर देते, और जिससे हमारी खुशी धीरे धीरे धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है। तो अपनी खुशियों को अगर बढ़ाना है, बरकरार रखना है, तो एक्सेप्ट करना और अपने ईगो को कम करना, डाउन करना, अपने आप को नम्र करना, पोलाइट होना। और तीसरा है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान करने से हमारा मन एकांत और शांत होता है, सही जजमेंटल हम कर सकते हैं, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। आइए हम 2 मिनट रिलैक्स होके बैठेंगे, और ये मेडिटेशन हम सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी करें और अपने जीवन को खुश रखना पाए। सब रिलैक्स होके बैठेंगे, कंफर्टेबल
1: जी
2: होंगे, आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। ब्रीथ इन,

स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट, एकदम रिलैक्स होके बैठे। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, खोल कर भी रख सकते हैं। मैं आपको कमेंट्री दूंगी, आपको उसको बहुत सुंदर सा विजन बनाना है। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट लें। कोई और संकल्प क्रिएट ना करें, एकदम रिलैक्स होके बैठे। अपने आप को बड़े से मिरर के पास ले जाए, एक बड़ा सा शीशा। अपने दोनों पैरों को देखें, अपने हाथों को देखें,

0: ओम शांति। शायद नेटवर्क इशू हो गया है दीदी का। तो हम लोग अभी उसे से मेडिटेशन वाला सेशन चल रहा था, इसी साइलेंस में रहेंगे और जुड़ जाए तो फिर पूरा ही हो जाएगा। अच्छा,
1: अनुभव करें कि आपके मस्तिष्क के बीच में

ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा जो है भाव आपने प्रकट किया। अब जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप एक छोटे से गीत के साथ हम लोग पूरा करेंगे। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से, तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पीस, एक मुखड़ा, एक अंतरा सुना दीजिए, कोई भी हम पूरा करेंगे 1 मिनट का। जी

0: ओम शांति, ओम
1: बहुत
0: शांति।
1: शांति। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने
0: थैंक
1: सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, जहाँ पर आपने बीके तपोशी दीदी को सुना जो बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बड़ा अच्छा जो है खुशी को बरकरार करने का अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, और लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन के टाइम पे चीजें जो है नेटवर्क इशू हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे संकल्प विचार हमारे साथ साझा किए। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे काम कीजिए आप, अगर खुशी को बरकरार रखना है तो जैसे ही स्वीकार भाव आप अपने अंदर लाते हो तो निश्चित तौर पे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, आप जो इरिटेशन था वो खत्म हो जाता है। आप एक बार करके देखिए, सिर्फ उन्हें स्वीकार कर लीजिए जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा टूल है जिसका यूज करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप खुश रहें सदा, इसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। संतोष जी एंड आशीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर
0: थैंक
1: बहुत ही
0: यू।
1: प्यारा सा सुनाने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनाए हैं रीडमा 90.4 FM। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: नमस्कार मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मैंने आप सबके लिए एक प्यारी सी कविता लिखी है। लो सुनो। कितने सारे दोस्त हैं मेरे, करते मुझसे प्यार, रोज रेडियो पे करते हैं मेरा इंतजार। मैं भी उनसे मिलने को दौड़ लगा के आता और फिर उन सबको प्यारी मीना से मिलवाता। थी ना बढ़िया मेरी कविता। चलो अब जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। वो रही मीना, सुनील के साथ स्कूल से वापस लौट रही है।
1: मीना बेटी।
2: वीरू चाचा। नमस्ते वीरू चाचा, आप यहाँ?
1: हाँ भाई, मैंने सोचा कि चलो आज जरा भाई साहब, भाभी और तुमसे मिलाऊं। और सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई?
2: चाचा जी, पढ़ाई भी ठीक और लिखाई तो और भी ठीक।
1: मतलब?
2: मतलब ये चाचा जी कि आजकल हम स्कूल में स्याही वाले पेन से लिखना सीख रहे हैं।
1: अरे वाह, क्या हुआ सुनील, तुम खुश नहीं लग रहे?
3: वीरू चाचा, मुझे स्याही वाले पेन से लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्याही वाले पेन से एक तो हाथ गंदे हो जाते हैं और दूसरा अपनी गलती को मिटा भी नहीं सकते।
1: भाई ये बात तो है।
3: अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ।
1: अरे तुम भी हमारे साथ चलो ना मीना के घर। ये देखो कितने रसीले आम लेके आया हूँ मैं, साथ में बैठ कर खाएंगे।
2: हाँ हाँ सुनील, चलो ना।
3: मीना तुम वीरू चाचा के साथ जाओ, मैं दादी जी को बता के आता हूँ।
0: लो भाई, मीना तो वीरू चाचा के साथ चली अपने घर। और उधर जब सुनील अपने घर पहुंचा तो,
3: दादी जी मैं मीना के घर जा रहा हूँ।
4: कुछ खा तो ले पहले।
3: मीना के घर में आम खाऊंगा, आपने पानी भरा था ना आज?
4: हाँ हाँ बेटे, आज सुबह ही हैंडपंप से ताजा पानी भर कर लाई थी घड़े में।
3: अच्छा दादी जी, मैं जा रहा हूँ।
0: सुनील अभी गया ही था कि उसके घर शोभा काकी आ गई।
5: नमस्ते अम्मा, सुनील की माँ नजर नहीं आ रही। बहू तो सुनील के बाबा के साथ साथ वाले गांव गई है अस्पताल, कल तक लौटेंगे।
6: अरे क्या हुआ?
5: बहू के पेट में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए। खैर तू बता कैसे आना हुआ?
6: अम्मा वो थोड़ी चीनी चाहिए थी।
5: हाँ हाँ तू बैठ, मैं अभी लाई चीनी। पहले तुझे एक गिलास पानी तो दे दूं।
6: हाय हाय, ये क्या हो रहा है इस घर में? पहले बहू की तबीयत खराब, अभी नीला पानी। सत्यानाश, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है।
2: क्या हो गया अम्मा? अरे ये पानी तो नीले रंग का है। अरे अम्मा कहीं ये पानी बहुत दिनों का भरा हुआ तो नहीं?
6: अरे आज सुबह ही भरा था हैंडपंप से, घड़े को अच्छी तरह से धो के। लगता है जरूर कोई विपदा आने वाली है।
5: अम्मा ये भी तो हो सकता है कि उस हैंडपंप का पानी साफ ना हो। मैं तो कहती हूँ आप दूसरे हैंडपंप से पानी ले आओ।
6: हाँ ये ठीक रहेगा।
0: सुनील की दादी ने शोभा काकी को चीनी दी और फिर दूर वाले हैंडपंप से पानी भरने गई। और वापस लौटते समय उन्हें मिले मीना और सुनील।
3: दादी जी आप यहाँ?
6: हाँ सुनील बेटा, पानी भरने आई थी।
3: लेकिन पानी तो घर में था।
6: वो पानी फेंक दिया मैंने।
2: क्यों दादी जी?
5: मीना बेटी नीले रंग का था वो पानी। हाँ
2: नीले रंग का।
5: हाँ लेकिन अब सब ठीक है, ये पानी बिल्कुल साफ है।
3: लाइए दादी जी, घड़ा मैं उठाता हूँ। अच्छा मीना, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: और अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी के बाद सुनील अपने घर पहुंचा।
3: माँ तुम कब आई, अब तबीयत कैसी है?
7: ठीक हूँ बेटा। एक गिलास पानी देना बेटा।
3: ये लो माँ पानी।
7: अरे ये पानी तो नीले रंग का।
6: हाय हाय सत्यानाश, मैं ना कहती थी कोई विपदा आने वाली है इस घर पे। कल भी पानी नीला पड़ गया था और आज भी।
3: दादी जी क्या पता हमारा घड़ा ही गंदा हो, मैं मीना के घर से एक घड़ा लेके आता हूँ।
6: हाँ हाँ बेटा जा भाग के ले आ।
0: सुनील भागा भागा मीना के घर पहुँचा।
3: मीना क्या तुम्हारे घर में एक और घड़ा होगा? वो हमारे घड़े में कुछ गड़बड़ है।
8: गड़बड़?
3: हाँ मीना, आज भी घड़े का पानी नीला पड़ गया।
9: पानी नीला पड़ गया, तभी सुनील भी डर गया।
8: मिट्ठू चुप। सुनील तुम रुको, मैं अभी घड़ा लेके आती हूँ। डंडे वाला लोटा भी लाऊं सुनील?
3: नहीं मीना, डंडे वाले लोटे की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही गिलास घड़े में डालकर पानी भर लेते हैं।
9: पानी भर लेते हैं, गलती कर लेते हैं।
8: ये लो सुनील घड़ा। वैसे माँ कहती है कि हमें हमेशा डंडे वाले लोटे से ही पानी भरना चाहिए, ताकि पानी में गंदे हाथ न जाए। इसीलिए ये लो, ये डंडे वाला लोटा भी ले जाओ।
3: मैंने कहा ना मीना, इस डंडे वाले लोटे की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ।
8: रुको सुनील, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
0: और जब मीना के साथ सुनील अपने घर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि सुनील की दादी नर्स बहन जी को पानी के नीला पड़ने की बात बता रही है।
4: कल भी सुनील पानी पी के गया तो घड़े का पानी नीला पड़ गया, और आज भी इसके पानी निकालते ही, हाय हाय, कहीं मेरे सुनील पर तो कोई विपदा नहीं आने वाली।
5: लेकिन अम्मा, पानी नीला कैसे पड़ सकता है? जरूर कोई और बात है। सुनील जरा दिखाओ तो वो नीला पानी।
3: जी अभी लाता हूँ।
5: सुनील जरा यहाँ आओ तो।
3: जी नर्स बहन जी, कहिए।
5: जरा अपने हाथ दिखाओ।
3: मेरे हाथ तो साफ।
5: अम्मा ये रही वो विपदा जिसकी वजह से घड़े का पानी नीला पड़ रहा था। सुनील के हाथों पे लगी स्याही।
4: स्याही?
5: सुनील तुम डंडे वाले लोटे का इस्तेमाल नहीं करते हो?
3: जी नहीं।
5: अब समझी तुम्हारी माँ बार बार बीमार क्यों पड़ती है। देखो सुनील, जैसे तुम्हारे हाथ पे लगी स्याही पानी में फैल गई, उसी तरह हाथ पे लगे कीटाणु भी पानी को गंदा कर देते हैं, जिसे पीने से हमारा पेट खराब हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं।
3: ओह, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं।
5: आज से ये बात अच्छी तरह याद रखना सुनील। घड़े को अच्छी तरह साफ करके उसमें साफ पानी भर के किसी साफ प्लेट या बर्तन से ढक के उसे किसी ऊंची जगह पे ही रखना, ताकि पानी में धूल मिट्टी ना पड़े। और जब भी उसमें से पानी निकालना हो तो डंडे वाले लोटे का ही इस्तेमाल करना। भूलोगे तो नहीं?
3: कभी नहीं भूलूंगा,
9: कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा।
0: आप भी कभी मत भूलना दोस्तों, जब भी घड़े से पानी निकालना तो डंडे वाले लोटे का इस्तेमाल करना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने कैसी कविता लिखी है।
8: साफ हो पानी, घड़ा ढका हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो,
9: ऊंचाई पे रखो, साथ में डंडे वाला लोटा हो।
0: भाई वाह, छोटी सी कविता में कितनी बड़ी बात सिखा गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: क्या गाना था, मजा आ गया। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़
2: पहेली तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी, पैर नहीं है मेरे फिर भी दूर दूर मैं जाती हूँ।
3: नदी।
4: आवाज।
3: रोशनी।
1: अरे अरे पहले पूरी पहेली तो सुन लो, फिर से बोलती हूँ। पैर नहीं है मेरे फिर भी दूर दूर मैं जाती हूँ, दोस्त यार रिश्तेदारों को दिल का हाल बताती हूँ।
3: क्या हो सकता है, क्या होगा?
4: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है।
3: सोचो ना,
4: कुछ तो सोचो।
3: सोचो ना,
4: कुछ समझ में नहीं आ रहा।
3: क्या करें? दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, आज तो मुझको भेजने के तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन बरसों पहले मेरी सवारी थे कबूतर प्यारे।
3: बहन जी तीसरी कड़ी बताइए ना।
5: हाँ हाँ बहन जी बताइए ना, तीसरी कड़ी भी बताइए, बोलिए ना बहन जी।
1: अच्छा अच्छा बताती हूँ, ये रही तीसरी कड़ी। ले जाऊंगी वो संदेशा जैसा तुम सब चाहोगे, लेकिन मैं जाऊंगी तब जब मुझ पे टिकट लगाओगे।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है चिट्ठी।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 15वां पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पृष्ठ संख्या 139। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। कोने में खड़े एक मियां बालिश दिए उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने, मगर फिर रहा ना गया। आखिर वे ठुम्मक ठुम्मक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताजुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बालिश्तिये ने पूछा, बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? पृष्ठ 140। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियां बालिश्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा यह बात है। यह कहकर बालिश्तिये मियां वहां से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया, उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग, तो वह फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल न पूछो। पृष्ठ 141। बालिश्तिये से फिर ना रहा गया और ठुम्मक ठुम्मक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गर्माता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा? नहीं मियां टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूं। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियां बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगा, उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा, क्यों मियां, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियां बालिश्ते थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। यह कहानी लिखी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सोचो, क्या असल में बालिश्ते होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिश्ते की बात क्यों की होगी? करके देखो। बालिश्ते ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो, तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? पृष्ठ 142। सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? अपने रूमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। बालिश्ते ने देखा कि लकड़हारा गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म हैं, तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 में मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? चित्र 2 में सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा। पृष्ठ 143। तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? कागज से अपनी सीटी बनाओ। एक कागज का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। यहां दिए गए चित्र के अनुसार उसे आधा मोड़ दो। अब दिखाए गए चित्र 2 के अनुसार कागज को बीच में से काट कर छेद कर लो। दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ दो। कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर होंठों से लगा लो। अब फूंक मारो। तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजी या तुम्हारी? सीटी में धीरे और जोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालो। अलग अलग चीजों से सीटी बजाओ। यहां कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों से आवाजें निकाल कर देखो और लिखो उनमें से किससे सबसे तेज सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज की तेजी को क्रम में लिखो। चीजें हैं टॉफी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, किसी और चीज से। पृष्ठ 144। क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि। क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाजें पहचान सकते हो? इन सभी चीजों के बारे में और बातें पता करो, चित्र भी इकट्ठे करो। लिखो, क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज निकलती है? उनके नाम लिखो। करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो। अब सांस भरो। क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? अपनी छाती का नाप लो। एक लंबी गहरी सांस भरो। पृष्ठ 145। अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। नाप रिक्त स्थान। अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती नापने को कहो। नाप रिक्त स्थान। क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे उंगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। क्या सांस फूलने लगी? अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया? तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी। घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी

छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। यह आवाज कहां से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुनें अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज सुन पाए? पृष्ठ 146। सांप बताए हवा का बहाव। इसके लिए लगभग 10-12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लो। इस गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो। नीचे लटकने वाले धागे पर गांठ बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? फूंक का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण दो। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 15वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, the happy moments, share it with everyone and that is what life is all about.
2: अमीक्षा, तुझे पता है मुझे ना रात में बहुत डर लगता है अंधेरे से।
3: हाँ, मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई पैर ना खींच ले,
2: लेकिन असलियत में तो ऐसा होता ही नहीं है,
3: कुछ भी नहीं होता ऐसा।
2: फिर डर क्यों लगता है?
4: अरे क्या नहीं होता असलियत में?
2: अरे दीदी, हमें रात को बहुत डर लगता है अंधेरे से।
4: अंधेरे से डर लगता है?
2: हाँ।
4: ओके, तो आप लोग यानी रात को किस किस चीज से डर लगता है उस बारे में बात कर रहे हो?
2: हाँ।
4: चलिए तो एक काम करते हैं, इसी के बारे में आज सब बच्चों से बात कर लेते हैं। डर तो भाई सबको लगता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डर नहीं लगता, चाहे छोटे हो या बड़े हो। और आज डर के बारे में बात करने के लिए बच्चों की दुनिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में?
2: रूहानी,
3: अमीक्षा,
5: अनुष्का

0: भी अब ज्यादा नहीं लगता, पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पापा रात को ही मुझे किचन से पानी लेने भेजते थे, फिर मैं लाइट बंद करके तुरंत भाग जाती थी, पीछे भी नहीं देखती थी,
1: फटाफट जल्दी जल्दी पानी लेके
0: हाँ
1: आके।
0: मेरे को ऐसा लगता था अभी लाइट चालू करूंगी ना तो कोई मेरे को देख रहा होगा अंधेरे में से। एक तो उसी रात को मैं इतने डरावने डरावने वीडियो देख के ही जाती हूँ वहां पे, तो और डर लगता है।
1: डर लगता है, अब डर की वजह पे भी बात करेंगे। पहले बताओ अमीक्षा, आपको किस चीज से डर लगता है?
2: जैसे मुझे अगर मैं हॉरर मूवी देख लूँ ना तो मुझे रात को बहुत डर लगता है, मुझे नींद ही नहीं आती।
1: हॉरर मूवीज देखने से डर तो लगता है, तो एक बात बताओ फिर हॉरर मूवीज क्यों देखते हो?
0: मजा भी तो आता है
2: इसीलिए।
1: मजा आता है डरने में?
0: हाँ
1: पर उसको देख के तो डर लगता है ना, तो उसमें मजा कैसे आता है?
2: वो देखने में मजा आता है,
0: डर तो रात में लगता है ना, मूवी के टाइम तो मजा आता है।
1: मूवी में लगता है अब आगे क्या होगा, अब
0: हाँ,
1: आगे कौन
0: वही
1: कहाँ से निकलेगा।
2: भूत भूत दिख जाता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, पर डर फिर हमें रात को लगता है।
1: अच्छा, उस वक्त हंसी आती है।
2: हाँ
1: और रूहानी को?
0: मेरे को भी वही लगता है, वो मूवी ना इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए देखने में मजा आता है।
1: इंटरेस्टिंग क्या लगता है उसमें?
0: अरे जैसे अभी क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, कोई सीरियस पॉइंट हो गया, कोई ट्विस्ट आ गया, तो इसके बाद क्या होगा इसलिए।
1: सस्पेंस।
0: हाँ
1: और आपको अनुष्का?
2: मुझे भी ऐसी हॉरर मूवीज से डर लगता है,
1: तो हॉरर मूवी देखते हो आपकी फिर नहीं देखते हो?
2: फिर देखते हैं फिर रात को बहुत डर लगता है।
1: अच्छा, आप लोग साथ में बैठ के देखते हो सब लोग, या अकेले अकेले यूट्यूब पे ऐसे देख लेते हो?
0: यूट्यूब पे देखती हूँ क्योंकि कभी कभी कोई छोटा सा शॉर्ट आ जाता है ना, जैसे कि इस मूवी में ये हुआ, फिर वो ना एकदम ट्विस्ट पर ही छोड़ देते हैं शॉर्ट को, इसलिए फिर मुझे वो मूवी सर्च करके देखनी पड़ती है।
1: पता है ऐसे वीडियोस बनाते इसीलिए हैं ताकि आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, आप सोचो क्या होगा इसमें आगे, और आप जाके वो उसके मूवीज के व्यूज और बढ़ाओ और देखो। प्रमोशन के लिए तो बनते हैं ऐसे वीडियोस।
0: लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ, हमेशा नहीं देखती।
1: बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया है ही ऐसी, सच में। बड़े भी वीडियोस जब रील्स देखते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाते हैं ना। और अनुष्का, आप किसके साथ देखते हो?
2: मैं तो मेरे भाई के साथ देखती हूँ।
1: आपका भाई बड़ा है आपसे कि छोटा?
2: बड़ा।
1: तो डर नहीं लगता फिर आपको उस वक्त?
2: लगता है थोड़ा थोड़ा,
1: थोड़ा थोड़ा लगता है। और फिर
2: कभी
1: रात को
2: कभी
1: ज्यादा
2: अचानक से कोई आ जाता है ना, अचानक से नीचे से निकल जाता है तो बहुत डर लगता है।
1: तो डर लगता है, हाँ, अचानक से जब कोई निकल जाता है अब तो डर लगता है। अमीक्षा को?
2: मेरे को तो वही हॉरर मूवी से डर लगता है।
1: देखते किसके साथ हो बैठ के?
2: मैं अकेले देखती हूँ।
1: अकेले देख लेते हो?
2: हाँ।
1: और अकेले हंसी भी आती है उसको देख के?
2: हाँ।
1: अरे बाप रे। और उसके बाद रात को लगता है डर?
2: हाँ।
0: मुझे डरना और डराना भी पसंद है।
1: डरना डराना पसंद है?
0: हाँ।
1: किसको डराना पसंद है?
0: जैसे रेडियो मधुबन में बहुत सारे लोगों को डराती हूँ मैं, नकली सांप लेके आई हूँ मैं
1: डराने के लिए।
0: और उससे लोग डरते भी है।
1: घर पे भी डराते हो और दोस्तों को?
0: हाँ, मेरी दादी जी तो अभी तक डरती है, पकड़ने को भी तैयार नहीं है, वो बोलते हैं अब इसको सामने लाया ना तो फेंक दूंगी घर से बाहर।
1: उनको अच्छा नहीं लगता होगा ना वो सांप देखने में, ऐसे रबर वाला सांप होता है।
0: हाँ।
1: और अनुष्का, आप वो हॉरर मूवी से डर लगता है, तो कभी ऐसा लगा आप लोगों को कि डर लगता है तो फिर नहीं देखे या छोड़ दे, ऐसा लगा कभी?
0: हाँ कभी कभी लगता है ऐसा, फिर बाद में मन हो जाता है फिर से देखने का,
1: फिर से देखने का मन हो जाता
2: फिर
1: है,
2: वापस चालू कर लेते हैं।
1: बस थोड़ी देर के लिए लगता है, मतलब ऐसा कि नहीं देखे, फिर दोबारा देखने पर लगते आते हो। तो यानी जब आप मूवीज नहीं देखते थे तब भूतों से डर लगता था?
0: तब तो सिर्फ अंधेरे से डर लगता था, तब तो हमारा मन ही भूत बना लेता था अपने आप ही।
1: अनुष्का को, जब आपने मूवी नहीं देखी थी तब, ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं देखी थी?
2: हाँ, हमको भी अंधेरे से डर लगता है ऐसे।
1: अंधेरे से
2: रात को बाहर भी नहीं निकलते, मेरे भाई बोलते हैं भूत काट लेगा क्या आगे से आके, ऐसे बोलते हैं।
1: भाई बोलता है?
2: हाँ, उनको वो डर नहीं लगता है।
1: भाई को नहीं लगता?
2: हाँ, अंधेरे से डर नहीं लगता।
1: ओके, तो वो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको डराने के लिए बोलते हैं ऐसा? अमीक्षा को भी कोई ऐसे बोलता है?
2: मेरी बहन मुझे डराती थी पहले, जब मैं छोटी थी तब है ना, मुझे बोलती थी भूत आ जाएगा, भूत तेरा पैर खींच लेगा, भूत ऐसे ऐसे करके मुझे डर पैदा करते थे।
1: बहुत छोटे थे आप तब?
2: हाँ।
1: तो फिर आप डरने

0: लगे धीरे धीरे ना। कोई ऐसे बार बार बोले तो डर लगने लगता है ना।
1: मेरी दादी जी भी किससे सुनाती थी, वो पीपल के पेड़ के नीचे ना भूतनी लटकी होती है, इसलिए मेरे को डर लगता था रात को पेड़ों के नीचे जाने से।
0: इसलिए कोई किससे सुना दे, कोई डरा दे तो फिर डर लगने लगता है ना।
2: और गांव में तो पीपल के पेड़ के नीचे ही सोते हैं सब लोग खटिया डाल के।
0: गांव में तो सोते हैं खटिया डाल के, ये भी सही बात है, यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं है ना। लगता है आप लोग को रियल में भूत होते हैं ऐसे डरावने डरावने जैसे मूवीज में दिखाते हैं?
2: भूत नहीं होते, वो आत्मा होती है भटकती हुई।
3: हाँ आत्मा मेरे अंकल ने देखी थी, वो हमको बता रहे थे कि हमारे गेट है ना उसके सामने एक आत्मा भटकती, उनने छत पे से देखा था रियल में।
0: अच्छा।
3: हाँ हमको भी डर लगता है, तब से हमको ज्यादा डर लगता है
0: जब से अंकल ने देखा।
3: वो तो बोल भी रहे थे कि है ना भी आएगी तो हम तुमको भी दिखाएंगे, हमने तो मना बोल दिया हमको नहीं देखना।
0: हमको नहीं देखना भाई, सही बात है, क्यों देखेंगे, है ना, डर लगेगा।
3: उनने तो पूरे 4 बार देख लिया है।
0: अच्छा।
3: हाँ एक तो उनके घर के बाहर देख लिया है आंखें काली काली, और एक तो है ना हमारे गेट के बाहर देख लिया, कभी कार के पीछे ऐसे आगे ऐसे देखा है।
0: तो उनको डर नहीं लगता?
3: नहीं वो तो देखते हैं तो चले जाते हैं।
2: किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता।
0: तो उनको ऐसा नहीं लगा हो सकता है कोई खड़ा होगा वहाँ पे?
3: कोई नहीं खड़ा था रात के 12 बजे, वो तो काम करके आए थे अपना।
0: अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कोई खड़ा हो और फिर गलती से लगा हो कि ये तो कोई भूत है, मगर कोई इंसान ही खड़ा हो, ऐसा हो सकता है?
3: नहीं कोई नहीं था, पूरी गली सो रही थी।
0: अच्छा कोई नहीं था, बस वो दिखा और गायब हो गया। ओके ठीक है। रूहानी
1: दीदी, मेरे तो पापा ने बोला है कि हमारे घर में ही है, हमारे पितरों के जो होते हैं ना वही आत्मा है, घर में ही है। क्योंकि ना एक बार ना पापा ने बोला था कि हमारे घर में जो पेंटिंग्स है ना उनमें है, तो उन्होंने जब पेंटिंग्स बाहर निकाली ना तब उस खिड़की में ही छेद हो गया। अच्छा। और खिड़की के बाहर वाला पेड़ अपने आप गिर गया, और पापा ने बोला कि इतनी सारी आत्माएं थी कि बाहर निकली ना इतने प्रेशर से तो पेड़ ही गिर गया नीचे। और एक बार मेरी 2 दोस्तें मेरे घर पे आई थी ना और नीचे पड़ा हुआ नींबू लेके गई थी, तो वो जैसे ही अपने घर में गए उसको बुखार हो गया बहुत तेज।
0: अच्छा। देखो गुड एनर्जी और बैड एनर्जी तो हम सब जानते हैं, फील भी करते हैं, है ना। कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव होते हैं तो हमको अच्छा फील होता है उनके साथ, है ना। और कुछ लोग बहुत ऐसे गुस्सा कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनका मूड भी खराब रहता है एकदम, वो कमरे में आते हैं तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना। होती है आप लोगों को फील? होती है ना। तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी तो होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मतलब वो फीलिंग मतलब बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी होती है। लेकिन इतना डरावना जैसे मूवीज में दिखा देते हैं चीज़ें, वैसी लगता है रियल लाइफ में होती हैं?
1: नहीं वैसी तो नहीं होती, उससे तो बहुत ही कम डरावनी होती है असलियत में।
0: मूवीज में कैसे दिखाते हैं, बहुत डरावना दिखाते हैं ना?
1: हाँ, जैसे चेहरे में इतना सारा खून लगा है, वो पूरा आसमान में उड़ रहा है वैसा।
3: हाँ ड्रेस भी पूरी फटी हुई है और उसके सामने जैसे चाकू मार दिया, खून खून ऐसे
0: खून खून निकल रहा है।
3: हाँ
0: वो मेकअप भी कैसा करते हैं ना, ऐसे डरावना सा
1: जैसे कोई मर के सड़ गया हो।
0: कैसा अजीब सा लगता है, वो बाल भी ऐसे कर देते हैं खड़े, और पता नहीं
3: बाल ऐसे नीचे कर देते हैं, वो जो हमारे अंकल ने देखा था ना। हाँ। बाल भी ऐसे ही किए हुए थे।
0: अच्छा। चेहरे
3: सुड़ रहे थे क्योंकि हमारे एक अंकल है ना वो तो अभी गांव गए, उनके घर में एक है ना दीदी थी जो है ना चूल्हे पर कुछ बना रही थी तो आग उनके लग गई थी, तो वो वहीं पर तड़प के मर गई थी, इसलिए उनकी आत्मा हमारे गले में घूमती है।
0: कभी कभी बहुत ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, उससे भी
3: गलती से उनके साड़ी थी ना वो वहाँ पर लग गई थी।
2: और दीदी अगर है ना किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती ना तो जिसने अगर मारा हो ना उसके पीछे प्रेत पड़ा रहता है।
0: ओके।
3: मारा तो किसी ने नहीं था, वैसे भी उनका खुद से जल गया था।
0: कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, बहुत ऐसी घटनाएं बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं, उससे सबको डर भी लगता है फिर और बहुत परेशानी भी होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे में बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ पता चलता है तो
1: उसके लिए जैसे उसके साथ कुछ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो ऐसा कर सकते।
0: हाँ ध्यान रख सकते हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं
2: कि उसकी आत्मा को शांति मिले,
0: कि वो अच्छे से रहे, शांति मिले, सब ठीक रहे, है ना। ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें हमारे हाथ में है, है ना। तो ऑलवेज ऑलवेज हम भगवान जी को अपने साथ रख सकते हैं, है ना, दोस्त बनाकर। और आप लोग को बड़े भाई बहनों के साथ जैसे रहना पसंद है ना, वो लोग ध्यान भी रखते हैं ना, तो बड़ा भाई बनाकर भी रख सकते हैं अपना, तो वो फिर हमारा ध्यान रखेंगे डेंजर में, है ना। फिर डर भी कम लगेगा, ऐसा हो सकता है।
1: हाँ, हो सकता है।
0: तो सकता है, है ना? और थोड़ा मूवी देखना कम कर सकते हैं क्या?
1: अभी तो नहीं देखते, हम पहले देखते थे,
2: अभी तो हमने बंद कर दी।
0: ऐसी मूवी देखना बंद कर सकते हैं ना। क्योंकि ऐसी मूवी देख के एंटरटेनमेंट तो होता है थोड़ा सा, और फिर डर लगता है ढेर सारा, और लगता ही रहता है, उसको ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना।
1: मैंने एक मूवी देखी थी, उसका मुझे अभी तक याद है, इतनी डरावनी थी वो। जब पहले पहले देखते थे तब तो मैं किचन में ही नहीं जाती थी रात को। फिर 1-2-3-4 महीनों बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ था।
0: कितना समय लग गया ना। वही तो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा माइंड कॉन्शियस अलग है और सब कॉन्शियस माइंड अलग होता है ना। सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की कई चीजें ब्रेन कैप्चर कर लेता है, हमें पता नहीं चलता, पर वो अंदर रहती हैं, तो वो हमारी डर बना देती हैं, बुरी आदतें बना देती हैं। और फिर ना आपको पता नहीं चलेगा, आप बड़े हो जाओगे, आप भूल जाओगे मूवीज के बारे में, मगर जो डर है वो आपके सब कॉन्शियस में बैठ गया है, तो वो फिर इतना ईजिली कभी कभी नहीं जाता है, अब मूवीज भी भूल जाओगे।
2: वो सालों तक अपने माइंड में रहता ही है।
0: तो हमारे जो सब कॉन्शियस है ना, बहुत पावरफुल है, इसलिए वो थोड़ी देर की बात नहीं होती, बहुत समय तक आपके माइंड में सब कॉन्शियस उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि आप जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, है ना, और देखना आईज का तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कुछ और वीडियोस हैं ऐसे जो देख सकते हो आप ऐसी मूवीज की बजाय, कुछ और एंटरटेनिंग जो आपको पसंद भी आए, जो आपको अच्छा भी लगे, जो इसमें आपको क्यूरियोसिटी भी हो, क्योंकि उस मूवीज में ऐसा लगता है ना, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ऐसा कुछ और हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट अगर हम सोचें तो।
1: हाँ, हम टीवी पर एक सीरियल देखते हैं, श्रीमद् रामायण।
0: हाँ,
2: ऐसा वो दीदी बहुत अच्छी है, उसमें ना श्री राम की कहानी आती है, उससे हम लोगों को पता भी चलता है कि क्या हुआ था उनके साथ,
1: और उसमें एपिसोड्स भी आते हैं जो एक ट्विस्ट पर छोड़ते हैं, तो हम अगले दिन वही देखते हैं।
0: हाँ, आगे क्या होगा उसमें भी ऐसा लगता है ना।
1: हाँ, और एक और सीरियल है, वो तेनाली रामा की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता से काम करता है और महाराज कृष्ण देव राय को खुश करता है।
2: पर इन लोगों के बीच में एक दुश्मन भी होता है उनका।
0: अच्छा।
2: जो है ना, वो नहीं कर, वो उनको राजा के पास मतलब पहुंचाते तो है सच, पर वो उनको झूठ कह देते हैं, वो उनके दुश्मन।
0: अच्छा, मतलब वो फंसाना चाहते हैं।
2: हाँ।
0: फिर वो ऐसे नए नए आइडियाज निकालते होंगे ना।
1: हाँ, हर बार दुश्मन ना राजा को ही मारना चाहता है ताकि वो सिंहासन ले सके।
0: सिंहासन लेने के लिए तो राजा भी अटैक करना पड़ेगा। तो फिर उनको बचाते कौन है?
1: तेनाली रामा।
0: नए नए आइडियाज निकाल के। आपने देखा है अनुष्का तेनाली रामा?
2: नहीं,
0: नहीं देखा। वैसे इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं उनकी बहुत, और वो इतने क्रिएटिव आइडियाज निकालते हैं जो हमें भी नहीं सोचने में आते कभी कभी, है। तो मजा आता है वो देखने में। कभी भी कोई चीज अगर आपको ऐसा लगे ना कि पसंद भी आ रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या पसंद आ रहा है पहले वो पता करो। जैसे हॉरर मूवीज में पसंद आता है ट्विस्ट, हॉरर मूवीज में पसंद आता है सस्पेंस, है ना। तो ये चीजें कहीं और कहाँ मिल सकती हैं, उसको ढूंढो जो आपको फायदा भी करे और आपको मजा भी आए, तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आसान। ठीक है, तो इसको कोशिश करके देखना, कभी कोई चीज जिसमें मजा भी आए लेकिन लगे ये अच्छी नहीं है, तो मजा किस चीज में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो और फिर वो पॉइंट और कहाँ मिल सकता है उसको ढूंढो, है ना। आपके पास तो इंटरनेट है, आज मम्मी पापा हैं, दोस्त, कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत चीजें पता कर सकते हो, है ना। तो डर लगता है हमको ये वाली चीजों से, इसको हम कर सकते हैं ठीक, वैसे हर डर को हम जीत तो सकते ही हैं, है ना।
1: और अनुष्का का कॉकरोच वाला डर कैसे भगाए?
0: हाँ, अनुष्का को क्या लगता है बताओ, अगर डर भगाना है तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ। अच्छा, क्या लगता है आपको अनुष्का को अगर कॉकरोच का डर भगाना है तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को?
1: हम सोच रहे हैं कि अनुष्का को ये करना चाहिए कि कॉकरोच भी तो इतना छोटा सा है, अनुष्का से ज्यादा तो कॉकरोच को ही डर लग जाता होगा कि इतनी बड़ी इंसान ने मेरे पे पाव रख दिया तो मैं मर नहीं जाऊंगा,
2: इसलिए वो भाग के चला जाता होगा।
0: वो अनुष्का के पास ही आ जाए तो भाग के, फिर उसको तो इसलिए डर लगता है मेरे पास आ गया तो उड़ के,
2: तो ये भाग जाएगी।
0: तो फिर उसका डर कैसे भागेगा? और क्या कर सकते हैं बताओ, और कैसे?
1: उसे बॉटल में लेके बाहर छोड़ देना चाहिए कॉकरोच को।
0: हाँ, लेकिन अगर डर लगेगा तो बॉटल में कैसे उसको लेंगे, फिर तो देख के डर लग रहा है, उसके पास कैसे जाएंगे?
2: उसको रोज वही कॉकरोच दिखाएंगे, देखने से उसका थोड़ा थोड़ा डर ठीक होने लगेगा।
0: क्या लगता है आपको निष्का?
3: गिलास लेके उसके ऊपर डाल के एक ढक्कन लगा के छोड़ दो बाहर, वैसे गिलास का मुंह तो ज्यादा ही बड़ा है।
0: अच्छा, तो आपने किया है कभी ऐसा?
3: कभी कभी।
0: हाँ, कर लेते हो तब तो आप?
3: डर तो लगता है थोड़ा बहुत,
0: पर डरते डरते भी कर लेते हो। वाह, वेरी गुड, ब्रेव हो आप, डरते डरते कर लेना, ब्रेवरी है भाई।
1: इसको ना ऐसी मूवी दिखानी चाहिए जिसमें दिखाया जाए कि कॉकरोच को भी इंसानों से कितना डर लगता है।
2: इससे उसका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा और आगे जाके ये कॉकरोच से डरेगी नहीं, उसको देख के बोलेगी तू मेरे से डरता है, मैं तेरे से नहीं डरती।
0: ये भी बोला जा सकता है कॉकरोच को कि तुम मुझसे डरते हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, है ना, तुम तो इतने से हो और मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम क्या कर सकते हो, बस यहाँ उड़ सकते हो और चल सकते हो। उसे बातें करनी पड़ेंगी लग रहा है मुझे।
1: अगर कॉकरोच सुन पाता तो?
0: हाँ, तो कॉकरोच क्या कहता बताओ, सुन लेता तो?
2: सुनता कैसे, कान तो दिखते ही नहीं है। उसके पास कान होते भी है कि नहीं पता नहीं।
0: ये तो साइंस में पता चलता है आप लोगों को, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो इंसेक्ट्स के बारे में तो उसमें भी पढ़ाई होती है।
2: साइंस में तो है ना, मेरा भाई जब गया था लाइव वहाँ पर जहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट ऐसे कुछ रखे थे, तो वहाँ पर कोई केमिकल था, उसने एक मरी हुई मछली डाल दी थी ताकि वो है खराब ना हो, क्योंकि बदबू मारता है। ऐसे ही है ना, वो केकड़ा ऐसे कुछ डाले थे, छोटे छोटे सांप ऐसे डाले थे। और दीदी वो नहीं होता वो स्नेल, वो केमिकल में डाल के हमें हमारी क्लास को या फिर जिसके भी चैप्टर्स होते हैं ना, तो टीचर्स फिर हमें लैब ले जाके बताती है।
0: लैब में ये सब चीजें रखी होती है ना, केमिकल्स यूज होते हैं।
2: बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में,
0: राइट, बायोलॉजी में भी पढ़ते हो,
2: फिजिक्स में,
0: फिजिक्स में अलग तरह की पढ़ाई है, केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है। चलो किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग को साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है।
1: जब हम छोटे थे ना तब लैब के बाहर से जाते थे तो खिड़की में से हमें स्केलेटन दिखता था, तो हम वहीं से भाग जाते थे, वो देखो स्केलेटन ऐसे करके
2: हड्डी का ढांचा बोलते थे, अरे उसके अंदर तो भूत है, भागो भागो, सब लोग भाग जाते थे।
0: कौन डराता था, आप लोग डराते थे?
1: नहीं, हम खुद ही बोल देते थे और खुद ही भाग जाते,
0: खुद ही बोल के खुद ही भाग जाते थे।
2: स्केलेटन को मेरा भाई बोलता है वो देख हड्डी का ढांचा।
0: हाँ, तो लग रहा है मुझे साइंस के बारे में भी हमको एक एपिसोड में बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है जाने का, बहुत मजा आया बात करने में, और मुझे लग रहा है हमें डर लगता है तो भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, भाई सबको डर लगता है ना किसी ना किसी चीज़ से, तो इसमें कभी भी कोई ऐसा फील करने की बात नहीं आ रही है मैं तो बहुत ऐसी हूँ या मुझे तो बहुत डर लगता है, कोई बात नहीं, सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है। और आप डर भगाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, भगा नहीं भी पा रहे हो, तब भी इसका मतलब है आप बहुत ब्रेव हो। और डर कभी होता है ना तो वो धीरे धीरे जाता है, कभी कभी एकदम से नहीं भी जा पाता है, कोशिश करते रह सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: दोस्तों ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना करें।
1: उनके स्वास्थ्य और

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: हेलो, आप सुन रहे हैं खेले दुकान दुकान।
2: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात। छोटी बड़ी

0: आदाब इल्मो, तुमने तो साइकिल की घंटी को ही बेल बना दिया है। अरे मे भाभी, क्या सरप्राइज है।
1: हाँ तौफीक भैया, आज इल्मो आधा दिन तो आप ही के साथ बिताने वाला है।
2: हम चले राशन खरीदने।
0: अरे तुम जम के खरीदारी करो, इल्मो और शाहीन इतना बिजी रहेंगे कि उनके साथ अपना भी टाइम पास हो जाएगा। क्यों बिटिया?
3: हाँ इल्मो, हम खूब सारा खेलेंगे।
2: चलो तुम दोनों अपने खेलों का उद्घाटन करो, हम अभी आए।
4: ओके पापा, बाय मम्मी।
2: बाय इल्मो।
4: पहले इल्मो शाहीन की ड्राइंग बनाएगा।
3: एक मिनट इल्मो, पहले बैट्समैन वाली टोपी पहनकर पोज करती हूँ, फिर बनाना। अब रेडी।
0: वैसे तुम दोनों की कलाकारी किसी चाय की दुकान पर होती तो दिमाग की बत्ती और तेज होती। क्यों हो जाए दुकान दुकान जंगल में।
4: हाँ, इल्मो और शाहीन खेलेंगे दुकान दुकान।
3: हाँ जंगल में।
4: तो तौफीक चचा क्या लेंगे?
0: मैं हूँ शेरू शाबाज और मुझे चाहिए एक चाय और एक आमलेट।
4: डोइंग डोइंग, इल्मो और शाहीन खरगोश का स्पेशल गाजर वाला आमलेट और चाय का नाम अभी लीजिए।
3: क्रैक।
4: कुर कुर कुर कुर कुर कुर कुर कुर कुर।
0: ये पानी में दूध और चाय पत्ती
3: और चाय तैयार
4: और ये रहा ऑमलेट।
0: वाह भाई, करारे गाजर वाला ऑमलेट और चाय में भी अदरक। अब तो यही रोज का नाश्ता करना पड़ेगा। अब जरा ब्रेक हो जाए असली ऑमलेट वाली।
4: कोल कोल अंडे से नरम नरम ऑमलेट कैसे बनता है, इल्मो और शाहीन देखना चाहते हैं।
3: है ना अब्बा का ऑमलेट स्पेशल।
0: तो अब क्या करना है, तुम दोनों ग्राहक बनोगे कि हो जाए थोड़ी उछल कूद? हैं, ये कौन सी दुकान है भाई?
4: दुकान? ये तो रेलवे स्टेशन है चचा।
0: अच्छा, मतलब अब खेल दुकान से स्टेशन पहुंच गया। नया खेल नया नियम। जी मैडम, हमें पहाड़ वाली ट्रेन पकड़नी है।
4: टिकट टिकट टिकट टिकट दिखाएंगे भैया?
0: टिकट तो
3: अपा, ये लो टिकट, एल्मो और मैंने कलर पेंसिल से बनाया।
0: लो जी सर, हमारा टिकट।
4: शुक्रिया। अब पहाड़ी एक्सप्रेस चल पड़ी। चचा भी ट्रेन के डब्बे है ना, पीछे लगना पड़ेगा।
0: लो जी, अब डब्बे भी बन गए।
3: ट्रेन पहाड़ पर चलने वाली है।
0: और अब गुफा में चली। चले छैया छैया छैया छैया, चले छैया छैया।
4: और अब गुफा से निकली ये अगले स्टेशन पर।
2: और अगले स्टेशन में है पापा और मम्मी।
4: हेलो पापा। हेलो मम्मी, अब ट्रेन आगे भागेगी।
2: तौफीक भाई, लगता है आज तुम भी मालगाड़ी के डब्बे बन गए हो।
1: हमारा तो ये रोज का मामला है।
0: भाई खेल खेल में इन दोनों ने तो आज मुझे भी 500 मीटर की रेस दौड़ा दी होगी।
2: तुम्हारी भाभी और मैं तो रोज इल्मो का खेल देखकर हैरान रह जाते हैं।
1: हाँ तौफीक भाई, इनके खेल से ये तो पता चल जाता है कि वो हर चीज को ध्यान से देखकर अपने अनोखे ढंग से समझकर ही ये नए नए खेल बनाते रहते हैं।
0: अरे भाभी, दुकानदारी से लेकर ट्रेन का टिकट खरीदना, ये देखो कलर पेंसिल से टिकट भी बनाया, बल्ब जैसा रोशन है इनका दिमाग। किसी खेल में दुनियादारी तो किसी खेल में कसरत, हर तरह के एक्सपर्ट बन जाते हैं ये। कभी चाय वाले खरगोश बने तो कभी रेल के टीटी।
2: चलो इसी बहाने आज की कसरत भी पूरी हो गई। क्यों एल्मो, अब घर चलें?
4: पर घर जाने के लिए तो एरोप्लेन पकड़ना पड़ेगा।
2: चलते हैं तौफीक भाई।
5: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 5 बीज बीज बीज पृष्ठ 42। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आईं तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? पृष्ठ 43। करके देखो, याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेटकर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। तालिका बनाओ, जैसे क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ, कटोरी 3 हाँ। इसी तरह लिखो, क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? क्या बीजों में अंकुरण हुआ? बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? पृष्ठ 44। साबुत मसूर का दाना कहता है, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? चित्र बनाओ, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। लिखो बीज का नाम, किस दिन बोया उसकी तारीख लिखो। अब
जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो, जैसे तारीख, पौधे की लंबाई कितने सेंटीमीटर, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव आया। पौधे को धागे से नाप कर फिर स्केल से भी नाप लो। पृष्ठ 45। पता करो, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में क्या अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करो, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? पृष्ठ 46। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। पता करो, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकौड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। कितने सारे बीज तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, जैसे बीजों के रंग, उनके आकार, कि वो गोल हैं या चपटा, उनकी ऊपरी सतह, कि वो खुरदरी हैं या मुलायम। पृष्ठ 47। एक तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। तालिका इस प्रकार हो, बीज का नाम जैसे राजमा, उसका रंग जैसे राजमा का रंग भूरा होता है, फिर उस बीज का चित्र बनाओ, उसके बाद बीज की ऊपरी सतह लिखो, जैसे राजमा की ऊपरी सतह है मुलायम। सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? समूह बनाओ और लिखो। क, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ख, जो सब्जी के बीज हैं। ग, जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं। घ, जो हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हो। जो चपटे हैं। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए?
क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पृष्ठ 48। यहाँ कपास का एक चित्र दिया गया है। ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं? क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। कुछ बीज हवा में नहीं उड़ पाते। यह बीज जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है, है ना मुफ्त में सैर? इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। पृष्ठ 49। अंदाजा लगाओ कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज सुनी है? सोचो अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, कौन कहां से आए जी। बीज को बिखराने वाली सूची में

अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। अब ये हम सारे भारत में उगाई जाती है। पृष्ठ 50।

साथ टमाटर, आलू, मिर्ची, चाय।

0: भारत।
1: मैं हूँ जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप दुनिया के किसी भी रास्ते से गुजर जाइए, आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो अपनी मजबूरियों का वास्ता देकर आपसे आर्थिक मदद चाहते हैं। इनमें से कुछ तो वास्तव में अपनी मजबूरियों से मजबूर हैं, तो कुछ अपनी आदत से। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में तो इनके जैसे ही लगते हैं, पर उन्हें इनकी श्रेणी में रखना उनके साथ अन्याय होगा और हम उनके अपराधी। कॉलेज बंद होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक आवाज हमारे कानों में गूंजी,
1: भैया जूतों पर पॉलिश कर दूं क्या?
0: हमने देखा हमारे सामने लगभग 7-8 साल का लड़का खड़ा था, जिसके कंधे से एक फटा पुराना गंदा सा थैला लटका था। कमीज के एक दो बटन भी गायब थे और जो लगे भी थे उनका कमीज से कोई वास्ता नहीं था। कमीज और पैंट पर पड़ी सलवटें कपड़ों की वृद्धावस्था का प्रमाण दे रही थी। पैरों में जो चप्पलें थी उनकी शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा अंतर था और दोनों ही अपनी आखिरी सांस

पड़े रहते थे। जब मैंने जेब से हाथ बाहर निकाला तो हाथ में 10 रुपए का नोट था, शायद जेब के किसी कोने में रहा होगा। मैंने 10 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि हमें पॉलिश नहीं करानी है, तुम ये ले सकते हो। लेकिन उसके स्वाभिमान ने इसकी अनुमति नहीं दी और आंखों के इशारे से उसने इस प्रकार से पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन मैंने दोबारा जोर देकर कहा, तुम ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। इस बार उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर भारी पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से पैसे ले लिए, पर अब उसकी आंखों के पानी पर शर्म हावी हो रही थी, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान का कत्ल कर चुकी थी। शायद उसकी मजबूरी इतनी बड़ी न रही होती तो वो मुझसे कभी इस प्रकार से पैसे न लेता। शर्म इस हद तक थी कि उसके बाद वो पल भर भी वहां ठहर न सका। मेरे सभी दोस्त मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और मैं उसे। उसकी शर्म से भरी आंखों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पलट कर मुझे देख सके। वो 7-8 साल का लड़का जो शायद पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, पर मुझे समझा गया कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक व्यक्ति के जीवन में क्या अर्थ है और उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। शायद अब उससे कभी मुलाकात हो भी तो मैं उसे पहचान न सकूं, पर 2008 में हुई उससे वो पल भर की मुलाकात मुझे सारी उम्र याद रहेगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कुमार अखिलेश जी की लिखी लघु कथा वो पल भर की मुलाकात, जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वास्तविक में घटित हुई थी। वैसे भी कहानियां केवल कल्पनाएं मात्र नहीं होती, कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं का कुछ न कुछ इंस्पिरेशन, कुछ न कुछ प्रेरक तत्व उनमें जरूर शामिल होता ही है। और ये कहानी जो कि हमें बताती है कि जीवन मूल्य केवल कुछ घरानों तक ही सीमित नहीं रहते, कुछ निश्चित कुल या लोगों तक ही उनका अधिकार नहीं है। स्वाभिमान या आत्मसम्मान जैसे जीवन मूल्य ये तो हर आत्मा में समाहित होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश। कभी कभी इंसान को उससे समझौता करना पड़ जाता है। हां, यह भी होता है कि सच्चे लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनका जिक्र कहानी के शुरू में किया गया कि वो आदत से मजबूर होते हैं। पर हां, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी परखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किसी की आंखों में झांक लेना, खुद की सच्चाई पहले चाहिए और तब सामने वाले की सच्चाई भी समझ में आती है। शायद क्योंकि आंखों के पीछे आंखें खिड़कियां हैं ना आत्मा की, आंखों के पीछे आत्मा बसी होती है और आत्मा में ही वो सब गुण शक्तियां जीवन मूल्य सब समाहित रहते हैं और सबसे पहले आंखों से बाहर आते हैं। केवल मजे हुए एक्टर्स ही सच्चाई को छुपाने में कामयाब हो पाते हैं, और मजे हुए एक्टर्स केवल फिल्म या टीवी कलाकारों की बात नहीं है। ये आजकल दुनिया के किसी भी स्टेज पर किसी भी रोल में देखे और समझे जा सकते हैं। फिलहाल हम अगर अपने परखने की शक्ति को बढ़ाएंगे तो हमें शायद ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, और उस समय मदद का हाथ बढ़ाना, क्योंकि मदद या सहयोग ये भी एक जीवन मूल्य है, वो हमारी आपकी अच्छाई को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है ये लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके जीवन से रिलेटेड ऐसी कोई घटना हुई हो वो भी आप लिख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज पहली तारीख है भाई, पहली तारीख है, खुश है जमाना की पहली तारीख है। किशोरदा का ये गीत है, एक तारीख को याद आता होगा, और सुरेश जी भी कभी कभी इस गीत को गुनगुनाते हैं। तो आइए, आज पहली तारीख है और 1 अक्टूबर की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ में देखा जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी आज है। इसके साथ ही मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन, एनी बेसेंट, रामनाथ कोविंद, GMC बाल योगी, शिवाजी गणेशन, सूरज बान, एस सुब्रमण्यम अय्यर, के गोपालाचार्य, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही चंदन सिंह गढ़वाली, सुरेंद्र त्रिवेदी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, आज हम लोग कुछ खास लोग हैं, सचिन देव बर्मन है, मजरू सुल्तानपुरी है, सचिन देव बर्मन म्यूजिक के बादशाह है, मजरू सुल्तानपुरी राइटर है, बहुत ही अच्छे गीत लिखते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में, और विशेष लोगों का शिवाजी गणेशन जैसे लोगों के जन्मदिन है, तो उनकी कुछ बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। और आप भी अगर उनके बारे में जानते हैं तो अवश्य हमें बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आइए, कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सुंदर विचारों का जब आप जो है चिंतन करते हैं तो जीवन जो है बेहद खुशनुमा हो जाता है आपका। तो आइए, ऐसे ही खुशनुमा जीवन के लिए एक सुंदर विचार आपके नाम। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया में जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। आप सुने हैं रेडियो 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू डूंडई गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM,
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए अब बात करते हैं मजरू सुल्तानपुरी के बारे में। भारत के हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर शायर और गीतकार थे। इनका पूरा नाम असरारा उल हसन खान था। इनके लिखे हुए कामयाब और कलम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी। मजरू की कलम की शाही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को मजहब मोहब्बत के शब्द भागों से निकलकर दुनिया के दीगार शाही सफ़ेद पहलुओं में भी जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी प्रदान करने की पूरी कोशिश की जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज़्यादा अपने लंबे सीने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीतों की रचना की है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी गीत संगीत और जीवन कहानी अभी आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: मैं अकेला ही चला था जानब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

असरारुल हसन खान जो कि पेशे से एक हकीम थे, लोगों की नब्ज देखकर दवाई दिया करते थे, पर बन गए ये एक अजीम शायर, एक ऐसे गीतकार जिसने इतिहास रच दिया। इन्हें हम मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं।

जन्म 1 अक्टूबर सन 1913 में हुआ और नाम से ही साफ जाहिर होता है कि ये सुल्तानपुर के रहने वाले थे। हालांकि इनका जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था, जहां पर इनके वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। ये बात भी मशहूर रही कि इनके वालिद नहीं चाहते थे कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लिहाजा इन्हें एक मदरसे में दाखिला दिला दिया गया और यहाँ पर इन्होंने अरबी और फारसी जैसी भाषाओं में महारत हासिल की।

उसके बाद ये लखनऊ के तखमील उत्तिब कॉलेज में यूनानी दवाओं की ट्रेनिंग लेने लगे और बाद में एक हकीम बनकर ये सामने आए। इरादे साफ थे कि लोगों का इलाज किया जाएगा और ये हकीम साहब के नाम से मशहूर हो जाएंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में एक ऐसी करवट आएगी जो असरार उल हसन खान को मजरू सुल्तानपुरी नाम का एक अजीम शायर बना देगी।

एक किस्सा यह भी मशहूर है कि जब मजरू सुल्तानपुरी बतौर हकीम काम कर रहे थे, तब इन्हें एक तहसीलदार की बेटी से प्यार हो गया था, पर उस तहसीलदार को इस इश्क पर खासा एतराज था और इस हकीम को वो जगह छोड़नी पड़ी थी।

बतौर हकीम ये अपना काम सही से जमा नहीं पा रहे थे और साथ साथ चल रहा था इनका गजलों का शौक। और एक शाम सुल्तानपुर में एक मुशायरे में इन्होंने अपनी गजल पढ़ी। उस गजल का ऐसा असर हुआ कि सभी मजू सुल्तानपुरी के दीवाने हो गए और मान बैठे कि एक नया शायर आ गया है।

0: धीरे धीरे गजलों का शौक बढ़ने लगा और हर एक मुशायरे में मजरू सुल्तानपुरी अपनी गजलें पढ़ने लगे। यहाँ पर मशहूर मारूफ शायर जिगर मुरादाबादी का साथ मजरू साहब को मिला। जिगर मुरादाबादी ने इनकी हौसला अफजाई की। बात यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने सोचा क्यों ना बम्बई चला जाए।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान।
0: बात है सन 1945 की, जब मजरू साहब बम्बई पहुँच गए। यहाँ पर साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरा रखा गया, जहाँ पर इन्होंने अपने शेर पढ़े और सुनने वालों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। और इन्हीं सुनने वालों के बीच एक जबरदस्त शख्सियत बैठी हुई थी, फिल्म प्रोड्यूसर A.R. करदार, जिन्होंने जिगर मुरादाबादी से बात की और कहा, मैं मजरू से मिलना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये हमारी फिल्म के गाने लिखें। पर मजरू सुल्तानपुरी ने साफ इनकार कर दिया। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छी जगह नहीं माना जाता था और बड़े से बड़ा कलाकार इस इंडस्ट्री में कदम रखने से कतराता था।

0: जादूगर।
1: ऐसे में जिगर मुरादाबादी ने मजरू सुल्तानपुरी का मन बदल दिया और कहा कि देखो तुम फिल्मों के लिए गाने लिखो जिस तरह के गाने तुम लिखना चाहते हो, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम अपने परिवार की देखरेख भी ठीक से कर सकोगे और साथ साथ तुम्हारी शायरी चलती रहेगी। ये बात मजरू सुल्तानपुरी को समझ में आई।

0: रहेगा।
1: फिल्म प्रोड्यूसर ए आर करदार मजरू सुल्तानपुरी को मशहूर मारूफ संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर ले गए, जहां पर नौशाद साहब ने इनका एक जबरदस्त टेस्ट लिया, एक धुन इनके सामने रखी और कहा कि लिखिए मजरू मियां, क्या आपके मन में आता है। तब मजरू सुल्तानपुरी ने कलम उठाई और लिखा, जब उसने गेसु बिखराए बादल आए झूम के। नौशाद साहब को ये लाइन बहुत पसंद आई और उसके बाद फिल्म शाहजहां के लिए इन्हें साइन कर लिया गया। ये बात सन 1946 की है। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए और उस वक्त के बहुत ही जबरदस्त कलाकार केएल सहगल ये चाहते थे कि जब उनका जनाजा उठे तब इस फिल्म का गाना जब दिल ही टूट गया जरूर प्ले किया जाए।
2: जब दिल ही टूट गया।
1: मजरू सुल्तानपुरी ने जिन फिल्मों के लिए गाने लिखे उसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है, पर कुछ किस्से ऐसे बने जो बताते हैं कि मजरू साहब की शख्सियत कितनी जबरदस्त रही।

एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने राजनीतिक विचारों की वजह से मजरू सुल्तानपुरी मुश्किल में पड़ गए और इन्हें जेल जाना पड़ा। इनकी शायरी ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और कुछ ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से मजरू सुल्तानपुरी को जेल जाना पड़ा। इनसे कहा गया था कि आप माफी मांग लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा, पर मजरू सुल्तानपुरी टस से मस नहीं हुए।

0: ये किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर साहब जानते थे कि मजरू सुल्तानपुरी अगर जेल में रहे तो इनके परिवार की देखरेख में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में राज साहब मजरू सुल्तानपुरी के पास गए और कहा कि मुझे एक गाना चाहिए। मजरू साहब ने वो गाना लिखा और राज कपूर ने उन्हें 1000 रुपए दे दिए। मजरू सुल्तानपुरी इस बात से बेखबर थे कि उन्हें 1000 रुपए क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वो गाना किसी भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था। बहुत बरसों के बाद उसी गाने को तीसरी कसम फिल्म में यूज किया गया और वो गाना रहा दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तकरीबन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी खूब जमी, चाहे वो नौशाद साहब रहे या फिर एसडी बर्मन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आरडी बर्मन की तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है।
1: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
0: मजरू सुल्तानपुरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक एक से बढ़कर एक गाने लिखते गए। म्यूजिक डायरेक्टर्स का अंदाज बदलता गया, हीरो बदलते गए, पर मजरू साहब की कलम वक्त के साथ आगे ही बढ़ती रही।
2: ओ छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें।
0: सन 1993 में इस अजीम शायर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।

जहां एक तरफ मजरू सुल्तानपुरी ने शम्मी कपूर, राज कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए गाने लिखे, जहां मजरू साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का जबरदस्त दौर देखा, वहीं पर पीढ़ियां बदलती हुई नजर आईं और सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का दौर भी उन्होंने देखा।

आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने मजरू साहब ने ही लिखे। सलमान खान की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के गाने भी मजरू साहब के ही कलम से आए। शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना के गाने भी मजरू साहब के नाम ही पहुँचे। ये बात हैरान करती है कि कैसे इस शायर ने बदलते वक्त में कभी भी अपने उसूल नहीं छोड़े।

सन 2000 में 87 साल की उम्र में मजरू सुल्तानपुरी को निमोनिया का एक जबरदस्त दौरा पड़ा और 24 मई सन 2000 मजरू साहब ने आखिरी सांसें ली। पर यह दिग्गज कलाकार अपने गाने अपनी गजलें हमें दे गया सदियों तक गुनगुनाने के लिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मजरू सुल्तानपुरी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

तो चलिए ये थी कुछ कहानी मजरूह सुल्तानपुरी की जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत बातें और साथ ही साथ गीत, है ना। कितने खूबसूरत गीत इन्होंने लिखे, हर गीत में ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी डबल हो रही है ना। तो कभी मौका मिले तो इसी तरह के गीत आप सुनते रहें, ऐसी शुभ आशा के साथ अपनी खुशी को बढ़ाने का एक सुंदर मौका मजरूह सुल्तानपुरी के गीत सुनते जाएं और अपनी खुशी को बढ़ाते जाएं। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस आज है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्संस। ये बुजुर्गों का या वरिष्ठ नागरिक दिवस है, विश्व प्रौढ़ दिवस भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। आज का वृद्ध समाज अत्यधिक कुंठाग्रस्त है और सामान्यतः इस बात से हम सभी दुखी भी हैं और जीवन का विषाद अनुभव होने के बाद बावजूद कोई उनकी राय ना तो लेना चाहता है और ना ही उनकी राय को महत्व ही देता है। इस प्रकार अपने को समाज में एक तरह से निष्प्रयोज समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज सर्वाधिक दुखी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुख और संताप से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाकर हम बुजुर्गों को उनका सही स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। गोष्ठियां तथा सम्मेलन वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम अर्जेंटीना ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। तब से लेकर अब तक वृद्धों के संबंध में अनेक गोष्ठियां और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। 1999 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष के रूप में भी मनाया गया। इससे पूर्व 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्ध अवस्था को सुखी बनाए जैसा नारा दिया और सबके लिए स्वास्थ्य का अभिनय आरंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है और इस रूप में विश्व भर में इसका आयोजन भी किया जाता है। इन सब बातों से वृद्ध व्यक्तियों के प्रति लोगों में सम्मान और संवेदना के भाव जागे और उनके स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वृद्ध अवस्था की बीमारी के लिए अनेक औषधियां का आविष्कार किया गया और अनेक स्थानों पर अस्पतालों में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। लगभग सभी पश्चिमी देशों में आर्थिक समस्या से जूझते वृद्धों के लिए पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिसे उनका खर्च आराम से चल जाता है। वहाँ के बुजुर्गों के सामने अब सामान्यतः आर्थिक संकट नहीं है, उनके सामने स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य समस्या अकेलापन की है। वयस्क होने पर बच्चे अलग रहने लगते हैं और केवल विशेष अवसरों पर ही उन्हें मिलने बुलाते हैं। कभी कभी उनसे मिले महीने या वर्षों भी गुजर जाते हैं और इसके साथ में बीमारी के समय उन्हें सांत्वना देने वाला सामान्य उनका कोई भी अपना उनके पास नहीं होता। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, बात चल रही थी विशेष वृद्ध जनों का अवहेलना करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो एक पेड़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना ही अधिक झुका हुआ होता है, यानी वह उतना ही विनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है। यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है जिसे आज की तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि अनुभव का एक कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं। अनुभव के सहारे ही दुनिया भर के में बुजुर्ग लोगों ने अपनी अलग दुनिया बना रखी है। जिस घर को बनाने में एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, वृद्ध होने के बाद उसे उसी घर में एक तुच्छ वस्तु समझ लिया जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ यह व्यवहार देखकर लगता है जैसे हमारे संस्कार ही मर गए हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय के पीछे एक मुख्य वजह सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। जब जानते हैं कि आज हर इंसान समाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और दिखावे की आड़ में बुजुर्ग लोग उसे अपने सुंदरता पर एक काला दाग दिखाते हैं। बड़े घरों में और अमीर लोगों की पार्टी में हाथ में छड़ी लिए और किसी के सहारे चलने वाले बुजुर्ग को अधिक नहीं देखा जाता, क्योंकि वह इन बूढ़े लोगों को अपनी आलिशान पार्टी में शामिल करना शान के खिलाफ समझते हैं। यही रूढ़वादी सोच उस वर्ग के माध्यम वर्ग की तरफ चली आती है। आज के समाज में मध्यम वर्ग में भी वृद्धों के प्रति स्नेह की भावना कम होती जा रही है। वृद्ध होने के बाद इंसान को कई रोग भी हो जाते हैं, चलते फिरने में दिक्कत। और लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है कि जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा भी होना है, और इस सच से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी जब हम बूढ़े लोगों पर अत्याचार करते हैं तो हमें अपने मनुष्य कहलाने पर शर्म महसूस होती है। हमें समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य विरासत होते हैं। उन्होंने देश और समाज को बहुत कुछ दिया होता है, उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होता है। आज का युवा वर्ग राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभ उठा सकता है। अपने जीवन की इस अवस्था में उन्हें देखभाल और यह एहसास कराए जाने की जरूरत होती है कि वे हमारे लिए बहुत खास महत्व रखते हैं। यजुर्वेद का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी बुजुर्गों का सम्मान करने की राह दिखलाई है। यजुर्वेद का निम्न मंत्र संतान को अपने माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करने की शिक्षा देता है। यद्यपि पौष मंत्र पुत्र प्रभु देते ध्यानम, अर्थात जित माता पिता के अपने यथक प्रयासों से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब मेरे बड़े होने पर जब वे असक्त हो गए हैं तो जनक जाननी किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, इस हेतु मैं उसी की सेवा सत्कार से उन्हें संतुष्ट कर अनुशय कान के बार से मुक्ति कर रहा हूँ। मैं अपने बड़ों ने पाला, अब वो बच्चे हो गए, बुजुर्ग बच्चे हो गए, तो हमें उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें शायद हमें समझने में टाइम लगता है। और अब इसकी अगर बात करें तो समस्या तथा समाधान की बात, वृद्ध व्यक्तियों के सन्मुख उपस्थित समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, हमें अपने आप से प्रश्न करने की ज़रूरत है। हमें सर्वप्रथम तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंब बनाने पर ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में मुख्य समस्या उन लोगों की है जो ना तो किसी उत्पाद कार्य में लगे हैं और ना उन्हें कोई पेंशन मिलती है। इनमें कुछ लोग इतने शक्तिहीन और निर्बल हो चुके हैं कि वे कोई काम कर ही नहीं सकते। ऐसे बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से आवश्यक रूप से और सहज रूप से मिल सकने वाली पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, उनके लिए समाज को कम परिश्रम वाले हल्के फुल्के रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्धों के कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए जो उनमें जीवन के प्रति उत्साह उत्पन्न करें। उनके लिए उनकी रुचि के अनुसार विशेष प्रकार की योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं। स्वयं वृद्धजन को भी अपने तथा परिवार और समाज के हित के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ युवा परिजनों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें और उन्हें अपने ढंग से जीवन जीने दें। उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदैव हल्का सदा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना चाहिए। अपने को सदैव तनाव से दूर रखें और यथासंभव नित्य प्रति हल्का और नियमित व्यायाम करें और सुबह और शाम को नित्य घूमना उनके लिए विशेष उपयोगी है। और अपने को यथासंभव व्यस्त रखें और निराशा को कभी भी अपने पास ना फटकने दें। सदैव शांत संतुष्ट और संयमित जीवन बिताएं। समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य करने का सदैव प्रयत्न करें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए बात करते हैं, आज कॉफ़ी डे है। कई लोग जो है चाय के बजाय काफ़ी प्रेफर करते हैं, काफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुँचाने हेतु तो बहुत ही बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं। आमतौर पर कॉफ़ी का सेवन सभी लोगों को पसंद होता है। कॉफ़ी का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बताते हैं। सीमित मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने हर साल 2015 में इटाली के मिलान में पहला विश्व कॉफ़ी दिवस आयोजित किया था। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने 1 अक्टूबर से को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाने का फैसला किया था। ये दिन विश्व भर में कॉफ़ी किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु भी मनाया जाता है। इसमें मुख्य 10 बातें हैं जो खास इसको बनाते हैं। इंडोनेशिया के एक बकरी चरवाए कालदी ने विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी बीन्स की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार कॉफ़ी तेल के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक कारोबार किया जाने वाला उपयोगी वस्तु है। भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। भारत विश्व की कुल 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया तथा इथियोपिया द्वारा किया जाता है। भारत में कॉफ़ी से सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु है। भारत में उत्पादन की खान जाने वाली कॉफ़ी का 70 से 80% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। भारत के कॉफ़ी उत्पादन के शीर्ष खरीदार इटाली, रूस और जर्मनी है। भारत में रोबस्टा कॉफ़ी तथा अमेरिका कॉफ़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। साल 2017 और 18 के दौरान भारत ने 3.16 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन किया था और निर्यात 3.92 लाख टन किया। भारतीय कॉफ़ी विश्वभर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी मानी जाती है क्योंकि इसे भारत में छाया में उगाया जाता है। इसके बजाय विश्व भर के अन्य जगहों पर कॉफ़ी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है, तो ये अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की स्थापना 1963 में लंदन में हुई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व कॉफ़ी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की सदस्य सरकारें काफ़ी विश्व कॉफ़ी उत्पादन का 98% और विश्व उपभोक्ता का 67% प्रतिनिधित्व करती है। तो ये है विशेष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के बारे में कुछ बातें आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। सुनते रहो।

जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 कोमिला में हुआ। ये वो जगह है जो अब बांग्लादेश में है। एस डी बर्मन एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी माँ राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी और पिता नवाब विपचंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के राजा के बेटे थे।

0: कसम से कहे।
1: एसडी बर्मन ने अपना प्रशिक्षण खलीफा बादल खान से लिया, जो एक सारंगी प्लेयर थे। उस्ताद बादल खान, अलाउद्दीन खान और संगीताचार्य केसी डे से भी। सन 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन में बतौर रेडियो सिंगर ये काम किया करते थे, जहाँ एक तरफ रविंद्र संगीत और लोक संगीत का असर दादा बर्मन पे नजर आ रहा था, वहीं धीरे धीरे वो फिल्मों की तरफ भी बढ़ने लगे। सन 1944 में शशाधर मुखर्जी की गुजारिश पर ये फिल्मिस्तान स्टूडियो आए और फिल्म शिकारी के लिए इन्होंने संगीत दिया, जिसमें उस जमाने के सुपरस्टार अशोक कुमार काम कर रहे थे। एसडी बर्मन को शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिल रही थी और वो मुंबई छोड़ वापस कलकत्ता जाना चाहते थे। ऐसे में अशोक कुमार ने उन्हें रोका और कहा कि मेरी फिल्म मशाल का संगीत दो और उसके बाद तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। पर किस्मत ने बाजी पलटी, ये फिल्म हिट हुई और दादा बर्मन हमेशा के लिए मुंबई में रुक गए और फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे हम दादा बर्मन का युग कहते हैं। देवानंद साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी, नवकेतन प्रोडक्शंस का एक परमानेंट हिस्सा बन गए एसडी बर्मन।

0: देव साहब के लिए 9 to 11, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, तमाम फिल्मों में एस डी बर्मन का संगीत खूब चमका।
1: ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के ना।
0: देवानंद साहब के पक्के दोस्त गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में भी एस डी बर्मन ने ऐसा संगीत दिया जो सबकी जुबान पर चढ़ गया।

एसडी बर्मन की खासियत ये रही, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या फिर दर्द भरा या फिर किसी कॉमेडियन पर फिल्माया जाने वाला हो, वो सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते थे। यही वजह रही कि गुरुदत्त की फिल्म्स प्यासा और कागज के फूल के संगीत ने इन फिल्मों को और भी ऊंचाई दी।

0: बता दे तो।
1: ये बात भी मशहूर है कि लता मंगेशकर के साथ SD बर्मन की कहा सुनी हुई और कुछ बरसों तक इन्होंने साथ काम नहीं किया। ये वो वक्त भी था जब गीता दत्त अपने निजी जीवन की उथल पुथल में फंसे हुई थी और तब SD बर्मन के संगीत में आशा भोसले की आवाज भी खूब सुनाई देने लगी।

0: मन्ना क्या कहेगा।
1: दादा बर्मन ने रफी साहब और मन्ना डे की आवाजों का खूब इस्तेमाल किया, पर वो वक्त भी आया जब पहला सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाला था, और तब किशोर कुमार की आवाज को सुपरस्टार की आवाज बनाया गया। एसडी बर्मन और ऋषिकेश मुखर्जी की जोड़ी भी खूब जमी, चाहे वो फिल्म अभिमान रही हो, चुपके चुपके, या फिर दादा बर्मन की आखिरी फिल्म मिली।

ये किस्सा मशहूर है कि जब देवानंद ने एसडी बर्मन से कहा कि आप मेरी फिल्म हरे राम हरे कृष्ण का संगीत दें, तब दादा बर्मन ने साफ मना कर दिया और कहा अगर आपको वेस्टर्न संगीत चाहिए तो पंचम को ले लो। पंचम यानी कि

0: डी बर्मन और तब आर डी बर्मन फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के म्यूजिक डायरेक्टर बने।
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

0: मस्ताना।
1: एस डी बर्मन को इस बात का बहुत गर्व था कि उनका बेटा पंचम यानी कि आर डी बर्मन भी एक जबरदस्त संगीतकार बन गया है, और कई बार पंचम ने जो धुनें बचपन में बनाई थी उनका इस्तेमाल एस डी बर्मन ने अपनी फिल्मों में किया। दादा बर्मन ने अपने बेटे को ये बात साफ साफ सिखा दी थी कि जहाँ कहीं कुछ भी सुनो उसे रिकॉर्ड करो, यहाँ तक कि जो धुन तुम्हारे सपने में आए उसे भी रिकॉर्ड करो, और जितने ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम बजाना सीख सको वो सीखो। यही वजह रही कि आर डी बर्मन ने फिल्म संगीत का रूप बदल के रख दिया था।

शायद ये बात जानकर और भी हैरानी हो कि महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम एसडी बर्मन के नाम पर ही रखा गया है। सचिन के पिता दादा बर्मन के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही सचिन रख दिया।

दादा बर्मन की शादी मीरा बर्मन से हुई और ये एक लव मैरिज थी, जिस वजह से इनके परिवार के लोग नाखुश भी थे और यही वजह रही कि एसडी बर्मन पूरी तरह से संगीत में आ सके। भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीतकार सचिन देव बर्मन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: तो ये थी कहानी एसडी बर्मन साहब की, और सुंदर गीतों को सुनकर लग रहा था ना कि भाई जीवन में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, सचिन देव बर्मन थे ही ऐसे खूबसूरत संगीतकार जिसमें जो है भारत की शास्त्रीय संगीत की एक झलक हमेशा आपको मिलती रहती है, जो मन को तरोताजा करती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।
1: दिस इज आदित्य राज कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में। भारत के 14वें महामहिम राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2017 को अपने से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद देश के राष्ट्रपति पद का कारोबार ग्रहण किया। उन्हें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस केहर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और वे एनडीए सरकार द्वारा 19 जून 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार घोषित किए गए थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जिम्मेदारी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। और पेशे से वकील गोविंद भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख रहे हैं और वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो रामनाथ कोविंद का जन्म आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका संबंध कोरी या कोली जाति से है जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत भी आता है। उनके पिता का नाम मैकूलाल तथा माता का नाम कलावती थी। रामनाथ कोविंद 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वे पैरक गांव में अपना पैतृक मकान बरतशाला के रूप में दान कर चुके हैं। उनके बड़े भाई पैरनाल व स्वर्गीय शिव बालक राम हैं। जून 1975 में आपातकाल के बाद पार्टी की सरकार बनाने पर रामनाथ कोविंद वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे और पार्टी की सरकार में उच्चतम न्यायालय के जूनियर काउंसलर के पद पर कार्य करते रहे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव बने थे। इसके बाद भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आया और 1991 में रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे और 1994 में वे उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और फिर वर्ष 2000 में पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविंद लगातार 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 2 बार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा उत्तर प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। तो आइए इनके बारे में, देश के प्रति राष्ट्रपति का जो सम्मान है, अमित शाह ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार बनाया था तब उन्होंने कहा था कि रामनाथ कोविंद दलित समाज से उठकर आए हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें संविधान का अच्छा ज्ञान भी है, इसलिए वे एक अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे। आगे भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के निर्वाचित का परिणाम घोषित हुआ जिस पर रामनाथ कोविंद ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमारी को लगभग 3,34,000 वोटों से अंतर से हराया। कोविंद को 6,50,065 वोट हासिल हुए। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चात 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद जी ने शपथ ग्रहण किया और रामनाथ कोविंद हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए समर्पित संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आजीवन संरक्षक हैं। तो ये थी कुछ खास बातें रामनाथ कोविंद जी के बारे में आपके लिए। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार, कहते हैं सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पीड़ा हो जाती है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मस्त रहो।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन।

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: हेलो व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग दिस एनसीईआरटी'स लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन ऑफ सहयोग। As you all know that our Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan under the initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For psychosocial support and mental well-being of viewers, students who are connected with us across the country. मैं हूं सृजन राजपूत और आप सभी का स्वागत है आज के सहयोग सत्र में। इस सत्र को साइन लैंग्वेज में बता रही हैं मिस शिखा। शिखा, आपका भी धन्यवाद करते हैं। इस सहयोग सत्र में आज हम बात करेंगे ब्रेन रोट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर। इस सत्र को प्रसारित किया जा रहा है पीएम ए विद्या चैनल 6 से 12 तक और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी पीएम विद्या क्लास 6 to 12 यूट्यूब चैनल्स पर। आज के सहयोग सत्र में बात करेंगे ब्रेन रोट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर। इस सत्र में यदि आप भी अपने प्रश्नों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और आपका भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर जुड़े मनोदर्पण काउंसलर्स के माध्यम से। नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, ये है 844-844-0632। साथ ही आप हमें हमारे IVRS नंबर के जरिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर इस 8800-440-559। अपनी बात कहने के लिए या अपने सुझाव भेजने के लिए लिखें हमारी सहयोग की मेल आईडी sahyog.ncert@cert.nic.in पर। हमारे व्यूअर्स जो इस सत्र को हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के जरिए देख रहे हैं वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम है कि आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाया जाए। स्वागत करते हैं डॉक्टर जोया मृणालिनी का, असिस्टेंट प्रोफेसर RIE NCERT भोपाल से। मैम नमस्कार, स्वागत है।
2: थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्कार।
1: मैम, इस सत्र में हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर है मिस निधि मालविया। मैम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार।
3: नमस्कार एंड थैंक यू
1: सो मच मैम। इस सत्र में चलिए हम अब अपने विषय को जानते हैं। सो मैम, जानना चाहेंगे निधि मालविया मैम, आप प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं और शाब्दिक अर्थों में अगर हम देखें तो ब्रेन रोट को आज हम समझने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन रोट?
3: पहले मैं आज आपसे पहले कुछ सवाल लेना चाहूंगी, पहले उन सवालों के जवाब, फिर हम अपने टॉपिक ब्रेन रोट पे लेंगे। ब्रेन रॉट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स, बट मैं ब्रेन रॉट के बारे में बात करूंगी तो उस टॉपिक पे बाद में आते हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि जब हम फोन उठाते हैं अपना और सोचते हैं कि बस हम एक नोटिफिकेशन आया है उसको चेक कर लेते हैं, उस नोटिफिकेशन में जो भी कंटेंट है उसको देख लेते हैं और फिर हम फोन रख देंगे, बट ऐसा होता है कि आप एक रील देखना स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरी रील देखना स्टार्ट करते हैं, देन ऐसे आप एंड अप 30-40 मिनट्स लेटर यू रियलाइज दैट कि आपने बहुत सारा टाइम निकाल दिया है रील्स देखते हुए। तो ऐसा क्या आप लोगों के साथ भी होता है?
1: जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि किसी ज़रूरी काम के लिए फ़ोन उठाते हैं और फिर अननेसेसरी की चीज़ों में लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता है इस टाइम में हमने एक घंटा या फिर 40-50 मिनट्स बस यूं ही चले जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम।
3: जी मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, जब आपने फ़ोन उठाया, आपने रील्स देखना स्टार्ट किया, जो आजकल शॉर्ट वीडियो काफ़ी पॉपुलर, जब आपने वो देखना स्टार्ट किया, जब आप उसको रखते हैं, फिर बच्चों से मेरा ये सवाल है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई काफी डिफिकल्ट हो गई है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी काफी होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है इनफैक्ट कभी कभी?
1: बिल्कुल होता है
3: जी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन आने पे ये सोचा होगा कि मैं एक नोटिफिकेशन का जवाब देकर मैं रख देता हूँ फोन, बट आप एक ऐप से दूसरे ऐप की तरफ स्विच करते हैं, फिर दूसरे ऐप से तीसरे ऐप की तरफ स्विच कर जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। क्या ये भी आपने कभी रियलाइज किया है?
1: एब्सोल्युटली राइट मैम, ये सभी बातें बिल्कुल ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, हमेशा ही लगभग हो जाता है।
3: जी, तो आज की जो टर्म है ब्रेन रॉट, ये इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस का पॉपुलर टर्म है. ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हम कर रहे हैं, इन्हीं का एक पॉपुलर टर्म है जिसको ब्रेन रॉट कहते हैं. अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, सो ब्रेन रॉट इज एन इनफॉर्मल टर्म टू डिस्क्राइब द परसीव्ड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ लो क्वालिटी रिपीटेटिव एंड हाईली स्टिमुलेटिंग डिजिटल कंटेंट. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्रेन रॉट, जहाँ पे कुछ ऐसे इफेक्ट्स हमारे दिमाग पर आ रहे हैं जो कि आपको आपके फोकस को इफेक्ट करते हैं, आपके अटेंशन को इफेक्ट करते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, या फिर आपकी एवरीडे लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रेन रॉट से रिलेटेड है. इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं ये चीज भी कहना चाहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ब्रेन लिटरल टर्म में रॉट हो रहा है. यहाँ पे ये कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव लो क्वालिटी कंटेंट की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से इसको ब्रेन रॉट कहा जाता है. एंड ब्रेन रॉट जो टर्म है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 1854 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी. 1854 में तो आप सब जानते हैं कि ना कोई फोन्स थे, ना ही किसी तरीके के इंटरनेट और ये सारे माध्यम हमारे पास मौजूद थे,
1: जी
3: बट फिर भी ये टर्म यूज हुई थी तब. तो तब ये यूज हुई थी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसकी डिक्लाइन हो रहा है, वो एक सिर्फ सतही लेवल पे चीजों को देख रहा है, वो डीप थिंकिंग के लिए नहीं जा रहा. ये तब यूज होता था. बट ये टर्म फिर से रिसर्फेस हुई 2000 अर्ली 2000s में, जब से इंटरनेट हमारी लाइफ में आया. तो इन सारे चीजों के बाद ये जो टर्म है ये काफी यूटिलाइज होने लग गई. बट रिसेंटली 2023 एंड 2024 में ये 230% बढ़कर यूटिलाइजेशन इसका हुआ, वो भी जेंसीज और जेन अल्फा के द्वारा.
1: ठीक
3: एंड
1: है
3: ये जो टर्म है इसको हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी अपने डिक्शनरी में इसको जगह दी है 2025 में, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रहा है 2024 में. तो ये
1: जी
3: जो सारी चीजें हैं ये ब्रेन रॉट से रिलेटेड
1: बिल्कुल
3: है.
1: जी,
3: जी
1: जैसे हम कुछ
3: मैम यहाँ पे
1: एग्जांपल्स
3: मैं
1: देख रहे हैं मैम, इसके एंडलेस स्क्रॉलिंग, रिपीटिव शॉर्ट वीडियोस और रील्स वगैरह जो हम विदाउट पर्पस देखते रहते हैं, इन्हें समझना
3: जी
1: चाहेंगे।
3: जी मैं उसी पे आ रही थी कि जब हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम ये करते क्यों हैं. यहाँ पे दो चीजें हम ये देखेंगे कि पहली चीज कि आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम में, लाइक 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में, एक लिमिटेड डोपामिन किकिंग कंटेंट अवेलेबल है, जिससे आपके जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत छोटे टाइम में आपको एंटरटेन आपका ब्रेन हो पा रहा है, वो इजियर एंटरटेनमेंट उसके लिए. तो वो जब एक रील देखता है तो उसको, हमारे दिमाग को ये फील होता है कि अब मुझे दूसरी रील देखनी है, क्या नया आएगा, कैसा, कौन सा ऐसा कंटेंट आएगा जो नया होगा, किस तरीके के नए वीडियोस आएंगे जो फुलफिलिंग करेंगे. तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम पैसिवली करते चले जाते हैं. जब हम पैसिवली करते चले जाते हैं तो इसी के लिए एक पॉपुलर टर्म जो है दैट इज ब्रेन रॉट.
1: जी बिल्कुल, तो हमने समझ लिया है कि ब्रेन रोट होता क्या है। हम बात कर रहे हैं आज के सहयोग सत्र में ब्रेन रोट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर। आगे चलते हैं डॉक्टर जोया, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे व्हाई डज ब्रेन रोट हैपेंस, क्यों होता है ब्रेन रोट, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट।
2: थैंक यू. जैसा कि निधि मैम ने बताया कि ये जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है और हर समय जो हमारा फोन पे एक नोटिफिकेशन ऑन और हर टाइम उसे स्क्रोल और हर टाइम हम अपने दिमाग को वहाँ पे बिल्कुल बिजी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक ब्रेन रॉट के का काम कर रहा है. ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये मेडिकल टर्म नहीं है, इसको विद द टाइम अगेन इसके डेफिनेशन को चेंज की गई है. तो अगर फैक्टर की बात करें तो वी कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
1: यस
2: तो फैक्टर्स में सबसे पहला जो बात हुई वो उसी को मैं रिपीट करूंगी, जैसे इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, बार बार किसी भी कंटेंट को आप बैठे हुए हैं और यू आर कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग, चाहे वो इंस्टाग्राम के रील्स हो, यूट्यूब के जो शॉर्ट वीडियोस हैं, आप कंटिन्यूअसली अगर उसको स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो वो एक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है जो कि ब्रेन रॉट में कॉज कर रहा है. सेकेंड अगर हम आते हैं तो जैसे जो भी आप स्क्रोल करते हैं, जो भी कंटेंट आप स्क्रोल करते हैं, तो वो जो डिजिटल सिस्टम है वो ये कैच कर लेता है कि इस इंसान का प्रेफरेंस क्या है. आपने कोई गेमिंग ऐप आप कोई गेमिंग को लेके, क्रिकेट को लेके, या कोई सेलिब्रिटी कंटेंट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, लोग देखते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपके फीड में वही सारे कंटेंट रिलेटेड चीजें देते रहता है, और आप उसको विदाउट टाइम का ध्यान रखे, अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखे, आप स्क्रोलिंग करते रहते हैं. ये एक सेकेंड रीजन है जो कि कॉज करता है आपका आपका कंटिन्यूस स्क्रोलिंग और कॉज टू ब्रेन रॉट. थर्ड फैक्टर देखते हैं ऑफकोर्स कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तभी हमारे फोन से पिंग की आवाज आई और हम वापस से फिर देखने लग जाते हैं कि अच्छा किसी ने हमारे पोस्ट को लाइक किया, किसी ने हमें मैसेज किया. और वो अगर हम बस देखने के लिए करते हैं, बट वो हमारा कितना टाइम कंज्यूम करता है वो हमें भी अंदाजा नहीं रहता. एंड देन कम्स आवर वेरिएबल रिवॉर्ड. मतलब भले हम कंटेंट देख रहे हैं और उसमें से हमें बहुत सारे वीडियोस इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहे हैं, बट येट वी आर स्क्रोलिंग और कुछ एक इंटरेस्टिंग मिल गया. मतलब अगर हम 5 कंटेंट देख रहे हैं उसमें एक कंटेंट इंटरेस्टिंग लग गया और फिर भी हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो एक इंटरेस्टिंग लग गया फिर उसके बाद उससे रिलेटेड देखते रहते, तो ये एक तरीका ट्रैप है जो हमें समझने की जरूरत है. ऑफकोर्स इट्स नॉट ओनली कि आप स्क्रोल कर रहे हैं क्योंकि डिजिटली हमारे पास बहुत सारे रीजन भी हैं. जैसे अगर हम कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं, हम अकेले हैं, या हम परेशान हैं, या हम स्ट्रेस्ड हैं पढ़ाई को लेके या एग्जाम को लेके, तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा देख लेते हैं कंटेंट. बट वो देख लेना इज समथिंग कि वो कब हमारा 5 मिनट का ब्रेक 40 मिनट्स ले लेता है वो हमें भी अंदाजा नहीं रहता. तो एक बोर्डम स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कॉज करता है इन चीजों को. और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका कहीं ना कहीं वैल्यूएबल अटेंशन ले रहा है. सी वैल्यूएबल अटेंशन मतलब आप सोचिए कि कितना वैल्यूएबल है कि कुछ एप्स और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप पैसा कमा रहे हैं इससे. तो आप इट्स नॉट कि डिजिटल एक्सेस करना और डिजिटल हेल्दी हैबिट जो हम बाद भी देखेंगे कि वो डिजिटली सब कुछ गलत ही है, बट नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन योर सर्फिंग एंड नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन वेन टू स्टॉप इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक. टेलीविजन में जब हम सीरियल्स देखते थे तो उसका भी एक नेचुरल स्टॉपिंग है, बट हम जब स्क्रोलिंग करने लगते हैं तो हमारा वो नेचुरल स्टॉपिंग खत्म हो जाता है. तो ये खुद का जो कंट्रोल हम लूज कर गए ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्रेन रॉट को कॉज कर रहा है. जी
1: जी हमने समझा कि ये क्यों होता है, और अब चलते हैं अगले कुछ बात को लेकर, फैक्टर्स पर भी बात करना चाहेंगे मैम. लेकिन निधि मैम, यहाँ मेरा अगला प्रश्न आपसे है. व्हाट आर सम ऑफ इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन आर थिंकिंग, अटेंशन, लर्निंग एंड वेलबींग? क्या कुछ हो सकता है हमारी थिंकिंग पर ब्रेन रोट का प्रभाव, और हमारी अटेंशन, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को भी क्या ये अफेक्ट करता है?
3: हाँ जी, तो ये सारे जो 6 फैक्टर्स हैं मैं इन पे बात करूंगी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे इन सारे 6 फैक्टर्स पे मैं बात करूंगी जो कि पॉसिबल इफेक्ट्स हैं ब्रेन रॉट के, जिनकी वजह से हमारी थिंकिंग, हमारा अटेंशन, हमारी लर्निंग और हमारी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग दोनों ही इफेक्ट होती है. तो मैं यहाँ पे एक चीज और ये कहना चाहूंगी कि ये जितने भी मैं पॉसिबल इफेक्ट्स कह रही हूँ ये सबके लिए सेम एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है. कुछ लोगों पे ये ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और कुछ लोगों पे ये कम इफेक्ट डालते हैं. तो ये सबका पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अलग होता है और सबकी कैचिंग पावर के अकॉर्डिंग भी अलग होते हैं, और कोई कितना इसमें कितना अपना टाइम कंजप्शन कर रहा है ये उसके भी बेसिस पे होता है. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम थिंकिंग की अगर बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी एक होती है, एक होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो ये जो एक क्रिएटिविटी होती है ये सारी इन सारी चीजों की ब्रेन रॉट की वजह से काफी इफेक्ट होती है. अब मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, विच इज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी. आप सब जानते हैं कि जब हम कोई एक काम करते रहते हैं और सडनली हमें हम फोकस्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर, सपोज एक स्क्रीन पे फोकस्ड हैं, और अगर वहां उस स्क्रीन से हटके कोई और आवाज आती है, स्पेशली आज की डेट में नोटिफिकेशन आया, तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ब्रेन रॉट का, जिसमें डिस्ट्रैक्ट इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो काफी कम हो गया है. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो 2000 अर्ली 2000s में जब ये इंटरनेट हमारी लाइफ में आया था, तब तब जो अटेंशन स्पेन एक सिंगल स्क्रीन को देखने का हुआ करता था वो हुआ करता था 2.5 मिनट्स, बट ये घट के आज की डेट में 2026 की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 47 सेकेंड्स रह गया। इट मीन्स कि जो हमारा अटेंशन स्पेन है हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे टास्क पे फोकस करने की हमारी एबिलिटी सिर्फ 47 सेकेंड्स की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रह गई है। तो डिस्ट्रैक्ट हम बहुत जल्दी होते हैं, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है जो कि हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑलवेज यू नो दैट डिलेइंग समथिंग, इट मीन्स टालना, टालम टोल करना। आप सोचेंगे कि आज मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं कल कर लूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों कर लूंगा। अब इसके पीछे ब्रेन रॉट कैसे काम करता है, जब हम सोचते हैं कि हमें स्टडी करनी है बट अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो मैं ये सोचूंगी कि 10 मिनट का टाइम है, या आप लोग ये सोचेंगे कि 10 मिनट का टाइम है तो चलो थोड़ी देर के लिए हम फोन देख लेते हैं अपना और फिर हम थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे। अब फोन देखते देखते आपको ये नहीं पता चला कि वो 10 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए या कब 1 घंटे में बदल गए, आपका वो जो पूरा टाइम था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे थे उसके लिए तो वो तो चला गया। अब आप क्या करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आज नहीं करूंगा, डिले कर देता हूँ, मैं कल कर लूंगा ये काम। तो जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरीके से बढ़ता है। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है स्लीप डिस्ट्रप्शन। जब हम स्लीप डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे जो इश्यू है, आप बेड टाइम आपका 10:30 है सपोज, आपने आप रात में सोने चले गए हैं बट आपने सोचा कि अब तो 10:30 हुआ है, मैं 10-15 मिनट रील देख लूंगा, तो ये जो रील देखने वाला कल्चर आया है उसकी वजह से सोचते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए सोने से पहले, तो हम क्या करेंगे, अपना फोन लेंगे और रील्स देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो रील आपको कंटिन्यूअसली इंगेज रख रहा है, आपको डोपामिन किक दे रहा है, डोपामिन इफेक्ट दे रहा है, दूसरा आपकी बॉडी में मेलाटोनिन जो है जो कि जिसकी वजह से नींद थोड़ी बेटर हो पाती है, वो हार्मोन कम जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से जो स्लीप है वो काफी डिस्ट्रप्ट होने लगती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आई स्ट्रेन, इनएक्टिविटी एंड पुअर पोस्चर। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि हम रील्स जनरली जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, तो फोन पे जितने भी हमारी चीजें हैं हमारे फोन आंखों के बहुत नजदीक होता है, तो आंखों पे काफी स्ट्रेन आता है, ड्राई आईज होने लगती है, समटाइम्स हेडेक्स भी होने लगते हैं या हमारी आईसाइट में प्रॉब्लम आने लगता है। और हम ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोन देख रहे हैं तो हम इनएक्टिव हैं, हम सिर्फ बैठे हुए ही सारी चीजें देख रहे हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी का पार्ट है वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इस वजह से हमारा जो फिजिकल वेलबींग है वो भी अफेक्ट हो रहा है। देन पुअर पोस्चर, आप सब जानते हैं कि जब हम फोन देखते हैं तो हमारी जो गर्दन है वो उस तरीके से कुछ झुक जाती है, तो जब हमारी गर्दन नीचे होती है तो आपके जो सर्वाइकल इश्यूज हैं या आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो नेक से कनेक्टेड है पूरा सिस्टम, उस पर भी इफेक्ट आने लगता है। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि क्या भी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आपने फोन देखा 1 घंटे फोन देखने के बाद भी आपके अंदर वो कंटेंटमेंट नहीं आया, आपको वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आई कि आपने इतनी देर फोन देखा, वो उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है कि जैसे जब हमारा पॉस्चर जो होता है जब हम सर झुकाकर बैठते हैं या बातें करते हैं, तो आपने ये रिलेट किया होगा कि ये जो हमारा पोस्चर है सर झुकाने वाला, ये तब होता है जब हम डिफीट में होते हैं या हम किसी ने हमें डांट दिया होता है तो, या हम कोई गलती किए होते हैं, तो इसी वजह से ये जो है ये हमारे पूरे एक सिस्टम पे निगेटिव इफेक्ट डालता है, तो ये भी एक ब्रेन रॉट का ही पॉसिबल इफेक्ट है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं, देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंगल सिंपल बिना कुछ किए साइलेंस में बैठ ही नहीं पाते, आपको जस्ट ऐसा लगता है कि बस मैं अपना फोन उठा लूँ, मेरे फोन में कुछ नोटिफिकेशन नहीं भी आया तब भी आप चाहेंगे कि आप अपना फोन उठा लें, तो ये जो होता है दिस इज द सिम्टम ऑफ रेस्टलेसनेस। यहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि बस मुझे अपना फोन देखना है। एंड लास्ट इज आइसोलेशन। तो जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम रियल से तो कनेक्टेड हैं बट हम रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर्स से, अपने आसपास वालों से कनेक्शन जो है वो थोड़ा कम कर दे रहे हैं, हमें लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ऑनलाइन तो हमारे फ्रेंड्स हैं, बट हम फिजिकल स्पेस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते। अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, फैमिली में चार लोग बैठे हुए हैं डिनर के टाइम पे, बट वो सारे फिजिकली प्रेजेंट है बट दे आर नॉट प्रेजेंट मेंटली, दे आर ऑन देयर फोन, वो सब अपना अपना किसी और ऐप पर हैं जहां पे उनकी अपनी एक अलग दुनिया है. तो इस तरीके से धीरे धीरे धीरे धीरे आइसोलेशन बढ़ता जाता है. तो ये जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं ब्रेन रॉट के, ये मैंने डिस्कस किए. और इसके बाद हेल्दी डिजिटल हैबिट्स के बारे में जानना आपसे बात.
1: बिल्कुल, तो ब्रेन रोट को हमने समझा क्या इसकी डेफिनेशन है, इसके फैक्टर्स और इसके इफेक्ट्स पर बात कर ली है. अब चलते हैं प्रिवेंशन पर, कैसे बचा जा सकता है, हेल्दी डिजिटल हैबिट्स क्या हो सकती हैं. सो डॉक्टर जया मृणालिनी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे व्हाट हेल्दी डिजिटल हैबिट्स कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस ब्रेन रोट.
2: जी या तो कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी सभी जो भी बच्चे सुन रहे हैं और जितने भी टीचर्स सुन रहे हैं, कि देखिए ये जो डिजिटल एरा है और ये जो रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी के वजह से, हमें इसका माइंडफुल यूज अगर हम करते हैं तो इट कैन कॉज वंडर. लेकिन अगर हम इसको माइंडलेस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए तो डिस्ट्रक्शन का भी कॉज हो सकता है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वो डिजिटल हेल्दी हैबिट्स अपनाएं और तब हम इसका यूसेज करें. तो क्या हो सकता है? तो ऑफ कोर्स सबसे पहले कि जब भी आप यूज कर रहे हैं अपना फोन और टेक्नोलॉजी पे जो भी आप सर्व कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इट शुड बी इंटेंशनल, यानी ऑब्जेक्टिव, क्यों आप किसी चीज को खोल रहे हैं. तो वेन टू वाई यू आर ओपनिंग दिस एंड वेन टू स्टॉप, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए. सो इट शुड बी इंटेंशनल एंड नॉट की जस्ट, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस, वी ऑल नो दैट. हम सभी अपने काम को पूरा करने में काफी अपना टाइम लगाते हैं, तो टाइम हमारा जाता है. तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूसेज करें और ना कि जस्ट माइंडलेसली इसको यूज करें. सो चूज एक्टिव यूजर, इट मीन्स कि वी हैव टू, अगेन व्हाट आई सेड, कि ये टेक्नोलॉजी का यूज हमें लर्निंग के लिए करना चाहिए, जो क्रिएटिविटी इन्हेंस करे, हमारे स्किल्स को इन्हेंस करे. तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज इन रीजन से करना चाहिए, ये हमारे पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि माइंडलेस यूज, कि एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, रिपीटेडली अपने नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं. तो इसको ध्यान में हमें रखने की जरूरत है. देन सेट बाउंड्रीज. ऑफ कोर्स जैसा मैम ने बताया कि हम सोने से पहले सोचते हैं कि चलो अब हम देखते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मील्स जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप ये डिसिप्लिन अपने माइंड को आप डिसिप्लिन रखिए कि नहीं, इस टाइम पे मैं नहीं यूज करूंगा या करूंगी अपना फोन. तो ये हमारा एक बाउंड्री सेट करना इज रियली इम्पॉर्टेंट सबसे. और एज मैम सेड कि नोटिफिकेशन, कि जब भी नोटिफिकेशन आया हमें वो एक है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम कुछ मिस तो नहीं कर जा रहे हैं, हम हमारा हमारा क्या, हम कुछ ऐसा होगा कि हम अनकूल हो गए अपने फ्रेंड सर्कल में. तो इन वजह से हम एकदम करेक्ट, हम बिल्कुल इनसेसेंट वे में बिल्कुल अपना नोटिफिकेशन देखते रहते हैं कि किसने लाइक किया, किसने अभी हमें मैसेज किया. तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के, यू शुड स्टॉप इट, जो इम्पोर्टेंट है उनको रखते हुए, जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसे हमें स्टॉप करके रखना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दैट हेल्दी ब्रेक्स आर रियली इम्पोर्टेंट. आपका एक्सरसाइज, आपकी आउटडोर गेम बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ यू कनेक्ट विद पीपल ऑफलाइन, जैसे कि मैम ने कहा अभी कि मील्स के दौरान जब आप फ्रेंड से भी बात करते हैं तो अपने फोन को साइड रखें. सिमिलरली दो और पॉइंट है इन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अगर हम बाकी दो पॉइंट देखें तो यस, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुरंत सोने से पहले हमें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखना चाहिए जिससे कि हमारा जिससे कि हमारे स्लीप डिस्ट्रप्शन हो, हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़े. तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव. यू हैव टू काइंड ऑफ गिव स्पेस, मतलब ये नहीं होगी अब मैंने, ठीक है मैं नहीं यूज करूंगा या करूंगी, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. आप बंद करोगे तो वो और आपके लिए एक तरीके का प्रॉब्लम कॉज होगा, कि आप अगर बिल्कुल ड्रास्टिकली आपने बंद कर दिया, फिर आपको टाइम स्पेंड करने के लिए आपको लगा कि मैं क्या करूं क्या करूं. तो यू हैव टू रिप्लेस इट विद हेल्दी हैबिट्स, लाइक यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज, योर आउटडोर गेम, दैट एंड ऑफकोर्स दैट इंटरेक्शन पार्ट. चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ यू अडॉप्ट डिजिटल हैबिट टू अवॉइड ब्रेन रॉट. सो यस, फाइनली मैं इसे तीन हेडिंग में बोलूंगी. यू जस्ट नीड टू पॉज योर अर्ज, प्लान द पर्पस एंड टाइम. ऑफकोर्स यू हैव टू प्लान इट एंड देन यूज इट. एंड यस, प्रोसीड इंटेंशनली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टॉप व्हेन इट इज डन.
1: थैंक यू सो मच मैम. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप समझें कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है. ब्रेन रोट पर आज हम बात कर रहे हैं और हेल्दी डिजिटल हैबिट्स आप हम सभी को अपनाने की ज़रूरत है. हमें इस बात को समझना होगा. हमारे आज के सहयोग सत्र के पैनलिस्ट रहे डॉक्टर जया मृणालिनी, असिस्टेंट

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस, लेकिन अपने आप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: मैं हूँ आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूँ वर्षा सिंह।
1: और आज हम शब्दों के शिल्पकार में परिचित कराने जा रहे हैं प्रख्यात हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन वृतांत से। हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं में सादगी भी है, संवेदना भी और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी झलकती है। एक ऐसे रचनाकार जिनकी लेखनी ने शब्दों को, जीवन और विचारों को नई दिशा दी।
2: उनका जीवन केवल एक कवि का जीवन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे संवेदनशील मनुष्य की कहानी है जिसने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया, मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और सरल भाषा में गहरी बात कहने की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, उनके जीवन की इस प्रेरक यात्रा को विस्तार से जानने से पहले आइए सबसे पहले उनके व्यक्तित्व, उनकी साहित्यिक सोच और हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान की एक छोटी सी झलक पर नजर डालते हैं।
1: श्रोताओं, मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ी, कुछ ऐसी बातें जो सुनकर आप मुस्कुराएंगे, कुछ सुनकर चौंकेंगे और कुछ सुनकर शायद सोच में पड़ जाएंगे।
2: वो एक ऐसे कवि थे जो खुद अपनी कविता के सबसे बड़े आलोचक थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, मिश्र जी, आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं है। यही था उनका स्वभाव, न अहंकार न घमंड, बस एक अटूट जिज्ञासा कि अभी और बेहतर लिखना है।
1: उन्होंने जेल में बैठकर कविताएं लिखी और वो कविताएं आज भी हिंदी साहित्य की अमर रचनाएं मानी जाती हैं। 1942 में जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वो कलम और कागज साथ ले गए। जब जेलर ने पूछा ये क्या है, तो मिश्र जी ने कहा, यही मेरा हथियार है और आप इसे छीन नहीं सकते। सलाखें शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन शब्दों को नहीं।
2: भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के उन विरले कवियों में से एक हैं, जिनकी कविता सरलता में गहराई और सहजता में असाधारण सौंदर्य समेटे हुए है। आपका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से ग्राम टिगरिया में हुआ था। ये गांव नर्मदा नदी के तट के निकट स्थित था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता ने उनकी काव्य चेतना को बचपन से ही सींचा।
1: उनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था। वे एक सुशिक्षित, धर्मनिष्ठ और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में वेद, पुराण, रामायण और महाभारत का नियमित पाठ होता था। माता का नाम श्रीमती देवकीबाई था, जो अत्यंत ममतामयी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। माँ की लोरियां और पिता के श्लोक, यही भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक काव्य शिक्षा थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में आपका निवास था। वातावरण अत्यंत प्राकृतिक और ग्रामीण था। हरे भरे खेत, माँ नर्मदा का कल कल करता जल, वन उपवन की हरियाली और ग्रामीण जनजीवन की सादगी, इन सब ने बालक भवानी प्रसाद के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनकी परवर्ती कविताओं में प्रकृति का इतना जीवंत और आत्मीय चित्रण मिलता है।
2: बचपन से ही उनमें जिज्ञासा और संवेदनशीलता की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने आसपास के लोगों की पीड़ा, खुशी और संघर्ष को बहुत गहराई से महसूस करते थे। गांव के किसान, मजदूर और सामान्य जन, इन सभी के प्रति उनके मन में स्वाभाविक करुणा थी, जो आगे चलकर उनकी कविताओं की आत्मा बनी। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद में हुई। वहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और गणित में प्रारंभिक दक्षता प्राप्त की। संस्कृत के प्रति उनका विशेष अनुराग था, जो उनके घरेलू संस्कारों का ही विस्तार था।
1: श्रोताओं, उच्च शिक्षा के लिए वो जबलपुर गए, जो समय मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र था। जबलपुर में उन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण की। यहाँ उनका परिचय तत्कालीन साहित्यिक और राजनीतिक विचारधाराओं से हुआ। गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन पूरे देश में तेज हो चुका था और युवा वर्ग उससे गहराई से प्रभावित हो रहा था। जबलपुर में ही शिक्षा के दौरान उन्होंने काव्य लेखन आरंभ किया। उनकी कविताएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं और उनकी प्रतिभा की चर्चा साहित्यिक मंडलियों में होने लगी। इसी दौर में उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का गहन अध्ययन किया और गांधीवाद उनके जीवन दर्शन का अभिन्न अंग बन गया।
2: भवानी प्रसाद मिश्र केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो समस्त देश एक विद्रोह की लपटों में जल उठा। युवा भवानी प्रसाद मिश्र ने भी इस आंदोलन में अपना सर्वस्व झोंक दिया। उन्होंने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया, जनसभाएं आयोजित की, पर्चे बांटे, लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1942 से 1945 तक पूरे 3 वर्षों के लिए उन्हें कारागार में बंद रखा।
1: जेल का जीवन कठोर था, परंतु उनकी कविता की ज्वाला वहाँ और भी प्रज्वलित हुई। सलाखों के पीछे बंद होकर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जेल की दीवारों ने उनकी कविता को एक नई गहराई, नई पीड़ा और नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताएं इसी कारावास काल की उपज हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी वे गांधीवादी आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने गांधी स्मारक निधि के माध्यम से सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में सहयोग दिया। राष्ट्र की आजादी उनके लिए केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक और आत्मिक मुक्ति की यात्रा थी।
2: आइए अब आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी के साहित्यिक जीवन और काव्य यात्रा की ओर ले चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक जीवन अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा। उनकी काव्य यात्रा लगभग 5 दशकों तक फैली हुई है। वे हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। सन 1951 में अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित हुईं, जिसने उन्हें हिंदी जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। दूसरा सप्तक में प्रकाशित अपनी कविताओं के साथ भवानी प्रसाद मिश्र ने अपना काव्य सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि कविता को जन जन की भाषा में होना चाहिए। कठिन और दुरूह शब्दावली कविता को सामान्य पाठक से दूर कर देती है। उनका मानना था कि जो भाषा हम रोज बोलते हैं वही कविता की भाषा होनी चाहिए।
1: उनकी काव्य साधना में कोई कृत्रिमता नहीं थी। वे कविता लिखते नहीं थे, कविता उनके भीतर से स्वयं फूटती थी जैसे झरने का जल पहाड़ से। प्रकृति, मानव जीवन, राष्ट्र प्रेम, गांधीवादी दर्शन और आध्यात्मिक चेतना, ये सभी तत्व उनकी कविताओं में इस तरह घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं। उनकी प्रसिद्ध उक्ति उनके पूरे काव्य दर्शन को समेट लेती है। उन्होंने कहा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये उनका काव्य मंत्र था और उन्होंने इसे जीवन भर निभाया।
2: भवानी प्रसाद मिश्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषागत सहजता है। उन्होंने हमेशा उस भाषा में लिखा जो आम आदमी समझे, महसूस करे और उसमें अपना जीवन देखे। उनकी कविताओं में ना तो अनावश्यक अलंकारों का बोझ है और ना ही दुरूह शब्दावली का आतंक। फिर भी उनकी भाषा में एक जादू है जो पाठक को भीतर तक छू लेती है। मिश्र जी की कविताओं में प्रकृति कोई बाहरी सजावट नहीं बल्कि उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। नर्मदा के तट पर बचपन बिताने के कारण नदी, पहाड़, वन, आकाश और ऋतुओं का चित्रण उनकी कविताओं में बेहद जीवंत और हृदय स्पर्शी है। वे प्रकृति को एक मित्र की तरह देखते हैं जिससे संवाद किया जा सके।
1: उनकी कविताओं में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा के मूल्य गहराई संकेत हैं। वे गांधी जी को केवल एक राजनेता नहीं एक आध्यात्मिक पुरुष मानते थे। उनकी कविताएं गांधीवादी जीवन पद्धति का काव्यात्मक रूपांतरण है। गीत फरोश जैसी कविताओं में उनका सामाजिक व्यंग्य अपने चरम पर है। वे समाज की विसंगतियों, पूंजीवाद की क्रूरता और कलाकार की विवशता को बड़ी ही बेबाकी से उजागर करते हैं। उनका व्यंग्य कभी कटु नहीं होता, बल्कि उसमें एक मानवीय करुणा सदा विद्यमान रहती है।
2: परिपक्व अवस्था में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं अधिकाधिक आध्यात्मिक होती गईं। त्रिकाल संध्या और इंदना मम जैसी रचनाओं में जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, समर्पण और विसर्जन के गहन प्रश्नों से वे टकराते हैं। ये आध्यात्मिकता किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि उनके जीवन अनुभव से उपजी। आइए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं और उनके महत्व के बारे में। गीत फरोश, जो साल 1956 में आया, ये उनका सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला काव्य संग्रह है। इसकी शीर्षक कविता गीत फरोश हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं में स्थान रखती है। इस कविता में एक कवि अपने गीत बाजार में बेचने को मजबूर है। ये एक गहरा व्यंग है उस समाज को, जो कला और संवेदना को बाजार की वस्तु बना देता है। इस संग्रह की कविताएं सामाजिक जागरूकता, राष्ट्र प्रेम और मानवीय करुणा से भरपूर हैं।
1: और अब जानते हैं चकित है दुख, जो कि 1963 में आई। इस संग्रह में वेदना और पीड़ा का एक नया आयाम उभरता है। दुख को चकित कहना, ये मिश्र जी की काव्य दृष्टि की अनूठी मिसाल है। यहाँ दुख केवल आहत नहीं करता, बल्कि विस्मित भी करता है जीवन की जटिलता से, मानव स्वभाव की विरोधाभासी प्रकृति से। और अब बात करते हैं 1973 में आई बुनी हुई रस्सी की। ये संग्रह उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने वाली रचना है। इसमें उनकी काव्य परिपक्वता अपने उच्चतम बिंदु पर है। बुनी हुई रस्सी एक रूपक है, जीवन यात्रा का, संघर्ष का, लेकिन साथ ही आशा और सृजन का भी। इस संग्रह की कविताएं गांधीवादी जीवन दर्शन, प्रकृति प्रेम और आत्म अन्वेषण का अद्भुत समन्वय है।
2: खुशबू के शिलालेख, जो 1975 में आया, इस संग्रह में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। खुशबू के शिलालेख शीर्षक ही अपने आप में एक काव्यात्मक रूपक है। खुशबू जो हवा में घुलती है, वो शिलालेखों पर अंकित हो जाती है। ये उनकी काव्य दृष्टि का सुंदर प्रतीक है। त्रिकाल संध्या, जो साल 1989 में आई, ये संग्रह उनकी आध्यात्मिक काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकाल संध्या भूत, वर्तमान और भविष्य की संध्या, एक ऐसे कवि की रचना है जो समय की गहराई में उतरकर जीवन के रहस्य को समझना चाहता है।
1: और अब बात करते हैं 1983 में आए उनके संग्रह इदम नमम की। इस संग्रह का शीर्षक संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है ये मेरा नहीं। ये पूर्ण समर्पण और विसर्जन की भावना का काव्य है। इसमें एक कवि अपनी रचनाओं, अपने अनुभवों और अपने अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देता है। और इससे पहले उन्होंने दूसरा सप्तक का संपादन किया, जिसमें द्वितीय तार सप्तक और प्रयोगवाद की बात थी। इसके साथ ही सन 1951 में अज्ञेय के संपादन में, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं संकलित थीं, ये संग्रह हिंदी कविता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने नई कविता आंदोलन को और गति दी, जिसका नाम था द्वितीय तार सप्तक और प्रयोगवाद।
2: दूसरे सप्तक के अन्य कवियों में भारत भूषण अग्रवाल, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती शामिल थे। ये सभी अपने अपने तरीके से हिंदी कविता को नई दिशा दे रहे थे। जहां इस सप्तक के अनेक कवि जटिल बौद्धिकता और प्रतीकवाद की ओर बढ़ रहे थे, वहीं मिश्र जी ने सहज भाषा की राह चुनी। ये उनकी विशिष्टता थी। उनकी इस सहज भाषा की शर्त ने नई कविता को जनसामान्य से जोड़ने का काम किया।
1: श्रोताओं, अब तक हमने उनके साहित्यिक जीवन की झलक देखी, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व की

0: पहचान सिर्फ उसके लेखन से ही नहीं होती बल्कि उसके सामाजिक योगदान से भी होती है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं उनके जीवन के उस पहलू की ओर जहां उन्होंने समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भवानी प्रसाद मिश्र ने आकाशवाणी से अपना जुड़ाव बनाया। वे दिल्ली आकाशवाणी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। रेडियो के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य, काव्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया।
1: आकाशवाणी में रहते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का निर्माण और संचालन किया। उन्होंने नए कवियों और लेखकों को मंच दिया और हिंदी साहित्य को आम श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका ये योगदान हिंदी के जन प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त वे गांधी स्मारक निधि से भी संबद्ध रहे। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के संरक्षण, प्रकाशन और प्रसार में सहयोग दिया। गांव में जाकर ग्रामीणों के बीच काम करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना, ये सब उनकी गांधीवादी प्रतिबद्धता का हिस्सा था।
0: आइए और अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की। वो केवल महान कवि ही नहीं थे बल्कि उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और संवेदनशील था। भवानी प्रसाद मिश्र का व्यक्तित्व उनकी कविता जितना ही सरल, उज्जवल और निश्चल था। बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान पाने के बाद भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। वे जीवन भर एक सामान्य नागरिक की तरह रहे, बिना किसी आडंबर और दिखावे के। उनके सहयोगी, शिष्य और साहित्यिक मित्र सभी एक मत से उनकी विनम्रता और सहजता की प्रशंसा करते थे। किसी भी मंच पर, किसी भी सभा में वे उसी सादगी से उपस्थित होते थे जैसे किसी गांव की चौपाल पर। उनका पहनावा, उनके बोलने का ढंग, उनकी जीवन शैली, सब कुछ गांधीवादी सादगी की छाप लिए हुए होता था।
1: उनमें हास्य बोध भी अद्भुत था। गंभीर से गंभीर बात को वे हल्के फुल्के अंदाज में कह देते थे और श्रोताओं का मन मोह लेते थे। कवि सम्मेलनों में जब वे मंच पर आते थे तो उनकी सहजता और आत्मीयता से सारा माहौल गर्म जोश हो उठता था। वे युवा कवियों के प्रति अत्यंत उदार और प्रोत्साहक थे। नई पीढ़ी के कवियों को वे सदा प्रेम, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते थे। उनका मानना था कि साहित्य की परंपरा तभी जीवित रह सकती है जब नई पीढ़ी उसे अपने ढंग से आगे ले जाए।
0: श्रोताओं, अब तक हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं को जाना, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन को सही अर्थों में समझना है तो उनके गांधीवादी विचारों को समझना बेहद आवश्यक है। भवानी प्रसाद मिश्र और गांधीवाद का संबंध केवल वैचारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। महात्मा गांधी उनके लिए केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, एक जीवन दर्शन के प्रतीक थे। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत उनकी कविताओं में इस तरह घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं। उन्होंने गांधी जी की हत्या यानी 1948 के बाद जो कविताएं लिखी उनमें एक असाधारण पीड़ा और शोक का भाव है। गांधी जी की मृत्यु उनके लिए केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी बल्कि एक युग की, एक सपने की मृत्यु थी।
1: गांधीवादी जीवन पद्धति को उन्होंने अपने निजी जीवन में भी उतारा। वे अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते थे, सादा जीवन और उच्च विचार को अपना आदर्श मानते थे और समाज सेवा को अपना धर्म। उनकी ये जीवन शैली उनकी कविताओं को प्रामाणिकता प्रदान करती है। आइए अब आपको लिए चलते हैं उनके साहित्य के उस कोमल और सरल पक्ष की ओर जहां वे बच्चों के लिए लिखते हैं और गद्य के माध्यम से भी अपनी गहरी बात सहजता से कह जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता के अलावा बाल साहित्य में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने बच्चों के लिए सरल, रोचक और शिक्षाप्रद कविताएं लिखी। उनके बाल काव्य में प्रकृति, जीव जंतु, देश प्रेम और नैतिक मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति है।
0: श्रोताओं, गद्य लेखन में उन्होंने संस्मरण और निबंध लिखे। उनके संस्मरण अत्यंत पठनीय हैं क्योंकि उनमें उनके जीवन के वास्तविक अनुभव, स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां और साहित्यिक मित्रों के चित्र बड़े ही आत्मीय तरीके से उकेरे गए हैं। अब तक हमने उनके साहित्य, व्यक्तित्व और विचारों की विभिन्न झलकियां देखी, लेकिन किसी भी साहित्यकार की साधना को समाज द्वारा मिला सम्मान भी उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए अब जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।
1: भवानी प्रसाद मिश्र को उनके जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनकी रचनाओं को साहित्यिक जगत में जो स्वीकृति और प्रशंसा मिली, वो उनकी काव्य प्रतिभा की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में बुनी हुई रस्सी संग्रह के लिए, ये हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भवभूति अलंकरण उज्जैनी द्वारा प्रदत्त विशेष साहित्यिक सम्मान, द्वितीय तार सप्तक में स्थान, हिंदी के प्रयोगवादी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में मान्यता, अनेक विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मान पत्र और अभिनंदन।
0: श्रोताओं, भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के उन प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी सादगीपूर्ण और स्वाभाविक भाषा के माध्यम से आम जनजीवन को साहित्य से जोड़ा। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता में सहजता के शिखर के रूप में जाने जाते हैं। उनका योगदान बहुआयामी है और हिंदी साहित्य पर उनका प्रभाव अमिट है। उन्होंने सिद्ध किया कि महान कविता के लिए कठिन भाषा, जटिल प्रतीक या बौद्धिक दुरूहता आवश्यक नहीं, सहज बोलचाल की भाषा में भी गहन भावों की अभिव्यक्ति संभव है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है।
1: उन्होंने गांधीवादी काव्यधारा को हिंदी में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी कविताएं इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता और उच्च काव्य कला साथ साथ चल सकती हैं। उनकी कविताएं आज भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं, कवि सम्मेलनों में सुनाई जाती हैं और साहित्य प्रेमियों के हृदय में बसी हैं। उनकी गीत फरोश जैसी कविताएं इतने वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही हृदय स्पर्शी लगती हैं।
0: हर महान रचनाकार की जीवन यात्रा एक दिन विराम लेती है, लेकिन उसके विचार, उसकी रचनाएं और उसकी छाप समय के साथ और भी गहरी होती चली जाती है। आइए अब जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन के अंतिम पड़ाव और उनकी अमर विरासत के बारे में। फरवरी 1985 को भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए। उनके निधन से हिंदी साहित्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई। देश भर के साहित्यकारों, पाठकों और उनके प्रशंसकों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। परंतु एक सच्चे कवि की मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु होती है। उनकी रचनाएं, उनके गीत, उनकी कविताएं, उनके विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने उनके जीवन काल में थे। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, ये सब अमर रचनाएं हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी।
1: उनकी विरासत केवल उनकी पुस्तकों तक सीमित नहीं, उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी, सहजता की दिशा, जन जुड़ाव की दिशा। उनके द्वारा स्थापित ये परंपरा आज भी हिंदी काव्य में प्रवाहित है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे नक्षत्र थे जो अपनी सरलता में असाधारण थे। उन्होंने अपने जीवन में जो जिया वही लिखा और यही उनकी कविता को प्रामाणिक, जीवंत और कालजयी बनाता है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की सलाखों के पीछे भी कविता नहीं छोड़ी, एक गांधीवादी जिसने जीवन भर सत्य और अहिंसा को अपना आदर्श माना, एक कवि जिसने सहज भाषा में गहन जीवन सत्यों को व्यक्त किया, यही भवानी प्रसाद मिश्र की पहचान है।
0: मित्रों, उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मीय मित्र हमसे बात कर रहा हो, बिना किसी कृत्रिमता के, बिना किसी आडंबर के, सीधे दिल से दिल तक। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उनकी अमरता का रहस्य है। तो श्रोताओं, ये थी जीवन यात्रा भवानी प्रसाद मिश्र की, एक ऐसे कवि की जिनकी रचनाओं में सादगी है, विचारों में गहराई है और जीवन में सत्य का साहस है। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि अपने गांधीवादी दृष्टिकोण से समाज को एक नई दिशा भी दी। उनकी कविताएं आज भी हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चाई, सरलता और संवेदनशीलता के साथ भी महानता हासिल की जा सकती है। इसी संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में। फिर किसी और शब्द शिल्पी की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे अपने अगले अंक में। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
1: और साथ दिया मैंने यानी वर्षा सिंह ने।
0: तो आपसे फिलहाल लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बर्तन गिरने की आवाज से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रसम करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूं कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा पता नहीं, मम्मी जी डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए, हे भगवान प्लीज। उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का हवा उसे बुरी तरह डरा रहा था, और दादी ने कहा भी था, ससुराल है जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे मां पापा को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वो भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वो बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदी न सिंदूर आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी, और जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आ गई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी वो उसके चेहरे से उसकी चाल से साफ झलक रहा था। लगभग भागती हुई सी वो रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते देखकर सासू मां ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, आई एम सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। सासू मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूरी? सासू मां ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी तो हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना कराऊंगी।

तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान के साथ सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके रोंधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मां।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा रस्म। ये तो पढ़ते पढ़ते मेरा भी गला रूंध गया था। सोचिए इतना कठिन नहीं है प्यार लुटाना, सरल होना, मगर कुछ रिश्तों में ये अपनापन, ये आत्मीयता मिसिंग हो ही हो। ऐसा एक हमें अनएक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में हमें प्यार मिल जाए, अपनापन मिल जाए। पर इतना कठिन भी नहीं है। वो टीवी पर सालों पहले एक सीरियल आया करता था, सास भी कभी बहू थी। वो शायद इसलिए था कि आप उस दौर से गुजरे हो, उस वक्त आपको क्या चाहिए होगा या क्या चाहिए था। उक्ति भी है कि हमें दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद हो, मगर फिर भी भारतीय समाज की नींव कहलाने वाली नारी शक्ति इन्हीं संबंधों में कहीं ना कहीं पता नहीं, मैं वाक्य को पूरा भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नारी शक्ति मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए सम्माननीय है। और भारत में तो कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी जब शक्ति का रूप धारण कर लेती है, अपना समर्थ रूप धारण कर लेती है, तब ये देश भारत बन जाता है। हाँ, और भारत में तो कहते हैं कि भाषा की जो जनक है वो भी नारी शक्ति है, क्योंकि नारी शक्ति ने जिस भाषा को जन्म दिया उस भाषा में कोई गाली नहीं है। कुछ तो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है, हमारा देश कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा है जिसके चलते नारी की अवहेलना हुई है, नारी ने नारी की अवहेलना की है। उस इतिहास को कभी खंगालिएगा, बहुत रोचक है, आश्चर्यजनक है कि किस तरह से गहरे षड्यंत्र के चलते हमारे देश में जो नारी सदा सम्माननीय रही, उनके अस्तित्व को नकारा गया, उनकी अवहेलना की गई। यूं ही नहीं हुआ है, एक षड्यंत्र के चलते हुआ है। कभी मौका लगा तो जरूर चर्चा करूंगा। वैसे इंटरनेट की दुनिया इतनी व्यापक है और अब तो सरल है, सभी की पहुंच में है। कभी खंगालिएगा इतिहास को, आप जरूर पहुंचेंगे उस छोर तक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो जानने और समझने के लिए। फिलहाल रस्म ये लघु कथा प्रेरित करती है कि इस तरह के संबंध बने, इस तरह की आत्मीयता, इस तरह का अपनापन बढ़े, ऐसे रिश्तों में जो रिश्ते बदनाम हो चुके हैं। ऐसी शुभ भावना के साथ अभी इजाजत लूंगा। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर नई कहानी के साथ फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

मैं ढूंढई गांव से हूँ, आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय मालव, दोनों विद्यालय की सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर, बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज दे रही है, जिसका चलते आज बच्चों का जो प्रतिभा है आज इस कार्यक्रम का माध्यम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर रेडियो मधुबन के द्वारा बच्चों को हुनर को, बच्चों का टैलेंट को आज प्रस्तुत करेंगे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, सहयोग देने के लिए संस्था का संस्था प्रधान मैम को भी धन्यवाद देते हैं, सभी स्टाफ को और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा सर जी उपस्थित है, देख रहे बच्चों का कार्यक्रम और बच्चों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दो बच्चों को सिलेक्शन किए। तो सर को स्वागत करते, सर अपना परिचय देंगे, सर अपना परिचय इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम।
1: मेरा नाम सुरेश कुमार है।
0: जी सर, सुरेश सर,
1: स्थानीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं।
0: और बच्चों का नामांकन मैंने देखा, बालिका का नामांकन बहुत अच्छा है, इसका राज क्या है?
1: यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में बालिकाओं को ज्यादा पढ़ने के लिए भेजते हैं। बालक भी वैसे तो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बालिकाओं की संख्या और भी ज्यादा है।
0: सर, मालव का आसपास जो गांव है उसका जो सोर्स इनकम खेतीबाड़ी ना व्यापार ना, कहाँ ज्यादा नौकरी करते हैं?
1: खेतीबाड़ी करते हैं और पास में अल्ट्राटेक प्लांट है, वहाँ पे
0: अल्ट्राटेक
1: मजदूरी के लिए जाते हैं और पिनवाड़ा में भी छुट्टी मजदूरी करते हैं।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय रेडियो माध्यम शाखा आज मालव ग्राम पंचायत में आया और बच्चों का प्रस्तुतिकरण बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा। सर, आपका विद्यार्थी जीवन में जब आप पढ़ाई करते थे, आज तो टीचर बने, सीनियर टीचर बन चुके, लेकिन बच्चों का समय में आपका बचपन का याद में दिलाता हूँ, बचपन में आप किस चीज पर फोकस करते थे?
1: बचपन में ज्यादातर खेलने पे ही ध्यान होता था, उस समय पढ़ाई का वो इतना रुझान नहीं था ग्रामीण क्षेत्र में।
0: जी सर,
1: फिर भी बाकी पढ़ाई का ज्यादा वो था नहीं उस समय, फिर भी हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। और
0: उस समय भी छात्रावास था सर?
1: छात्रावास नहीं थे, बहुत कम थे उस समय।
0: आज तो बहुत पंचायत में छात्रावास है।
1: उस समय मेरे तो 96 में 12वीं मैंने कर ली थी।
0: जी जी, 96 में।
1: तो उस समय छात्रावास नहीं थे, एक पिनवाड़ा छात्रावास था, लेकिन वो मेरी पढ़ाई ठंडी बेरी में हुई, फिर पास में ही काम है आमली में, फिर 9th से 12th तक पिनवाड़ा मेरा।
0: जी जी, ये शायद बॉर्डर है पाली और
1: बॉर्डर
0: पिनवाड़ा में,
1: बॉर्डर
0: है, क्योंकि आप ठंडी बेरी है और आवली का बात कर रहे हैं, तो ठंडी बेरी से दो है, आमली तो पिनवाड़ा में,
1: आमली तो पिनवाड़ा में, आमलिया पाली,
0: तो इसलिए मैंने
1: ठंडी बेरी में भी, ठंडी बेरी एक सिरोही जिले में और एक पाली जिले में।
0: जी, क्योंकि इसलिए मुझे याद है, क्योंकि हम अपरोड से सभी जगह में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गांव वाले हमें उलाना न दे जो हमें, हमारा पास कोई आया नहीं, इसलिए आज ढूंढ ढूंढ कर आपका पास आए, बहुत अच्छा है, उमंग उत्साह दिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दो छात्र है तो उनका भी गीत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं, हमारा बच्चे सच्चे होते हैं और विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का साथ, जैसे सर ने बोला, पढ़ाई का साथ साथ खेलकूद में इच्छा रखते थे, लेकिन बच्चे पढ़ाई का साथ साथ गीत गाने में, कविता बोलने में भी होशियार है। उनको आज मंच मिल रहा है तो अपना परिचय देंगे, बहुत खुशी लग रहा है। तो एक छात्रा उपस्थित है, अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल कौन सा ढानी से आते वो भी बताएंगे। बताओ।
3: मेरा नाम चोनिया कुमार, मैं मालव गाँव में रहती हूँ। मेरी फली का नाम है फली वाली फली।
2: वाह, क्या दमदम आवाज है, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, ऐसे होना चाहिए। और पिंडोटा में जैसे हमें भूला का नाम सुनते हैं, कितना खून में जज्वा है, जैसे राजस्थान का मिट्टी में भी राणा प्रताप का खून जैसे लगा हुआ है, तो लगाव है। और ये सोनिया सुगना सुरेश तो भरमार, हर विद्यालय में मिलेगा ये सब नाम, ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा। तो हम आज सोनिया इस कार्यक्रम को सजाएंगे, कोई प्रस्तुति सुनाएगी सोनिया
3: जी।
2: और आपका घर में कौन कौन है?
3: मम्मी पापा,
2: मम्मी
3: भाई बहन,
2: भाई बहन,
3: दादी दादा,
2: दादा दादी। सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
3: मम्मी।
2: आई क्यों अच्छा लगते हैं? बाप क्यों अच्छा नहीं लगते?
3: बाप तो मर जाएगा तब भी छोड़ के जाएगा, माँ कभी नहीं जाएंगे।
2: क्या बात, क्या बात, माँ कभी भी नहीं छोड़ सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ माँ होता है, इसलिए माँ का दर्जा अधिक है। बाप तो देते कमाई कर, लेकिन प्यार ममता स्नेह पापा का पास बस का बात नहीं, माँ का बस का बात है। बहुत अच्छा बात बताया सोनिया। तो एक प्रस्तुति करेंगे गीत
3: जी।
2: और तुम्हारा साथ को देने के लिए कोई है
3: जी?
2: अच्छा, उनको भी दीजिए। तुम्हारा नाम बताओ?
4: मेरा नाम हस्की कुमारी,
2: मालव गांव के हैं। और तुम्हारा दोस्त नाम बताओ?
4: मेरा दोस्त रिंकू कुमारी।
2: रिंकू कौन सा क्लास के?
4: नाइन्थ
2: क्लास रिंकू। रिंकू के पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है, वो क्या आपको देता है? रिंकू क्यों दोस्त बना है? रिंकू आपको जो चीज बोलेंगे रुक जाता है, अभी रुकने के लिए बोले भाई रुको मैं तुम्हारा साथ जाऊंगा, तब भी रुक जाती है ना। हाँ, इसलिए सहयोग देता है रिंकू तुमको, हर काम में सहयोग
4: देती है,
2: देती है। और तुमको कभी डर लगता है, अकेला जाने में डर लगता है? रिंकू का बिना डर लगता है?
4: नहीं
2: नहीं डर, रिंकू जाएंगे तब भी आप डरेंगे नहीं ना, अकेला जा सकती है। अच्छा, रिंकू रहेगा तो और सांस मिलेगा, लेकिन सांस होना चाहिए। रिंकू तुम्हारा दोस्त है, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा दोस्ती है, तो रिंकू और उसकी, वाह दोनों का बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न सुनेंगे।

श्री राम के पिता दशरथ थे, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे। श्री राम कहो श्री कृष्ण कहो इन दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम की माता यशोदा थी, श्री कृष्ण की माता वासुदेव थी। श्री राम कहो श्री कृष्ण कहो इन

0: श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, श्री राम को श्री कृष्ण को इन दोनों का मतलब एक ही।
1: श्री राम लड़े थे लंका में, श्री कृष्ण लड़े थे मथुरा में। श्री राम को श्री कृष्ण को इन दोनों का मतलब एक ही है।
2: एक है और एक के है ना, श्री राम कहे चाहे कृष्ण कहे चाहे हनुमान कहे चाहे भगवान कहे चाहे अल्लाह कहे चाहे खुदा कहे, लेकिन सबका मालिक एक है। अब हम सब एक के है, हम सब एक है ना, आत्मा एक और एक के है परमात्मा कहे। तो श्री राम कहे चाहे हनुमान कहे यीशु कहे जिसको आप भगवान मानते है, लेकिन वो तो सबका मालिक है, एक है। बहुत अच्छा संदेश है, भक्ति में हृदय का तार परमात्मा तक पहुंच रहा है। और बच्चिया इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब जोड़ते हैं तो खुशी लगता है। तो सोनिया तुमको खुशी लगा
1: जी?
2: कितना खुशी? बहुत खुशी, वाह रे वाह। और उसका खुशी का राज वो पूरा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। और तुम्हारा दोस्त कौन है?
1: नीतू कुमारी।
2: नीतू कुमार कौन सा क्लास?
1: 9।
2: तुम बड़े होकर क्या बनेंगे सोनिया? डॉक्टर, इंजीनियर, मैडम, पायलट?
1: डॉक्टर।
2: डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है?
1: मनुष्य का सुई लगाना,
2: इलाज। सुई लगाते तो मनुष्य को सुई लगा देंगे तो मनुष्य बेस हो जाएगा। जो बीमारी है जिसका इलाज चाहिए उसको इलाज करते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं। डॉक्टर का काम क्या है? ऑपरेशन करते हैं। सुई लगाना कब होता है? जिसको सुई आवश्यकता है उसको सुई देते हैं, नहीं तो सबको सुई लगा देंगे तो मनुष्य को क्या होगा? मर जाएंगे। हाँ, तो इसलिए सुई लगाना, डॉक्टर सोच समझकर अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए अच्छा पढ़ाई करना चाहिए। घर में कोई डॉक्टर है तुम्हारा?
1: नहीं।
2: घर में कोई
1: परिवार? नौकरी में।
2: नौकरी में क्या नौकरी करता है?
1: वो स्कूल में जाता है।
2: स्कूल में जाते तो पढ़ाई?
1: चपरासी।
2: चपरासी
1: जी।
2: चलो स्कूल में पढ़ाई करते बहुत अच्छा है। और तुम तो डॉक्टर बनेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा जोर से, है ना? तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक गीत बहुत अच्छा लगा, और एक गीत सुनाएंगे, आदिवासी गीत। आदिवासी गीत सुनाएंगे? चलिए सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाए और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज तो बच्चे बिना खाए पिए भी तो लेट हुआ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज रेडियो मौका दे रहा है तो मौका का फायदा लेंगे। और सोनिया नाम जो सुनते हर विद्यालय में सोनिया तो नाम है ही है, और ऐसे टैलेंट बच्चे होते हैं सोनिया, इसलिए जो भी सुन रहे सोनिया सुगना सुरेश ये नाम देते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा यूनिक होते हैं। चलिए सुनते हैं सोनिया से और एक प्रस्तुति। ओके रेडी।

बूढ़ी लाड़ी होए पीटोली मायर मोरे, बूढ़ी लाड़ी होए।

0: तो पेली पिलकवाला रे, आदिवासी जंगल रखवाला रे, आ तुम मदन पेली पिलकवाला रे, आदिवासी जंगल रखवाला रे, आली कनिन जंगल मार में हम आदिवासी फिर समुंड वाला रे।
1: क्या बात, बिरसा मुंडा आदिवासी जो आदिवासी से जो
2: आते हैं आदि सुर से, सर भी शायद आप भी आदिवासी।
1: अरे वाह सर आदिवासी है, खुशी है
2: सर भी हमारा आदिवासी से बिलंग करते, किन्तु आदिवासी मैंने शुरू से जो बसवास करते हैं उसको आदिवासी करते हैं शुरू से सर, आदि
3: आदि काल से निवास करने।
2: तो आदिवासी नाम में इतना मिठास, इतना शुद्धता, और देखने में हमको भी उनसे बात करने अच्छा लगता है। आदिवासी का परिभाषा, आदिवासी का क्या लखा है, उस आदिवासी किसका साथ जोड़ते हैं?
3: आदिवासी आदि काल से जो निवास करते हैं इस विश्व में या भारत भूमि में, जो आदि काल से निवास करते हैं वो आदिवासी कहलाते हैं। ये इनका संबंध जल जंगल और जमीन से है और प्रकृति से है। जोहार इनका जो अभिवादन है, जो जोहार का मतलब होता है जो प्रकृति है उसको हम नमन करते हैं और प्रकृति के साथ ही प्रकृति के अनुरूप रहने का प्रयास करते हैं और प्रकृति को बचाने का हमारा प्रयास रहता है और इसी के साथ मिल करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
2: सही बात, इसलिए आदिवासी का एक ही स्लोगन होता है, एक ही नारा होता है, हमारा गांव में हम सरपंच, हम सरकार, हमारा गांव में हम सरकार, है ना सर? आपका स्लोगन कोई भी आदिवासी लोग देखते ना, झुंड में जाते हैं, नारा लगाते हैं, हमारा गांव में हम सरकार, दिल्ली में सरकार, जयपुर में सरकार, लेकिन गांव में
3: गांव की सरकार,
2: गांव की सरकार। ये आपका बहुत
3: राज जो इसी के हिसाब से चल रहा है,
2: क्योंकि जल जमीन जंगल और
3: स्थानीय जो नियम कायदे हैं वो स्थानीय पंचायत के हिसाब से चल रहे हैं, इसी ध्येय को लेकर के हमारा वो रहता है कि हम
2: सरकार। सरकार भी डरता है सर आपको देखकर, ये सरकार सबसे बड़ा सरकार है, क्योंकि आपको देखकर वो लोग सरकार बना है। ऐसे शुरू से आप लोग का संगठन एकता और बचाव के लिए जंगल को बचाते हैं,
3: जंगल को,
2: जल को बचाते हैं, और जमीन को कोई लेने के लिए आएगा तो आपको उसको भगाएंगे। जैसे भूला में सर, भूला का एक कहानी होगा ना, बिरसा मुंडा जैसे
3: लिलू रिबडली,
2: हाँ उसका बारे में जानते हैं ना, उसका गीत भी बना
3: है, गीत भी बना हुआ है, ज्यादा जानकारी नहीं है फिर भी
2: है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमें जाते जाते अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जा रहे हैं, लास्ट में एक अंतिम प्रस्तुति होगी, है ना सोनिया? एक अच्छा गीत सुना देना, देशभक्ति हो चाहे आपका होली में दिवाली में जो गाते हैं कोई भी त्योहार में, एक गीत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये अंतिम प्रस्तुति होगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: चलिए सोनिया सोनिया सोनिया, बार बार सोनिया का नाम आ रहा है क्योंकि सोनिया जैसे चांद, जैसे आकाश में सभी तारे होते हैं लेकिन आलोक नहीं दे पाते, एक चांद पूरा रोशनी देता है। तो हमारा इस विद्यालय के होबनार हमारा अंतिम प्रस्तुति करेगी।

आए तू ए दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो बाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। माई तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, बाता मांगे मेरी तेरिया। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तू ए दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो बाज लगाए तो तिरंगा।

0: कोई ना कोई।
1: ताली बजाओ सोनिया के लिए, जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली, सोनिया खुद भी ताली बजाओ।
2: ताली का साथ स्वागत के बोले बहुत सारे बच्चे, लेकिन सिलेक्टेड बच्चे और स्वइच्छा से खुद प्रस्तुति देने के लिए सोनिया आगे बढ़कर आया, इसलिए हमें बहुत खुशी है। रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था का संस्था प्रधान मैम को भी धन्यवाद और हमारा सर को भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सोनिया कैसे लगा?
3: अच्छा।
2: कैसे लगा?
3: अच्छा।
2: सर आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर?
4: कार्यक्रम आपने विद्यालय में कार्यक्रम किया, ये बहुत ही अच्छा रहा। आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विद्यालय में आए और बच्चों को जागरूक किया और इस रेडियो FM के बारे में जानकारी दी और उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने का आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको विशेष रूप से पुनः धन्यवाद देता हूँ।
2: धन्यवाद।
4: जय हिंद,
2: जय हिंद, जय भारत, जय जंगल, जय जुहार। जुहार को भी जुहार है, नमस्ते को भी नमस्ते। हम समझते हैं नमस्ते का मालिक मालूम होता है, तो बहुत खुशी लगा। ग्रामांचल में आए हैं इतना दूरस्थ जगह में, मालव हम तो ढूंढते ढूंढते कितना दिन से सोच रहा था मालव कब जाएंगे कैसे जाएंगे, और ये तो आबू रोड से हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आज मौका मिला दूरस्थ जगह पहला बार आए, फिर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और इसका श्रेय तो माता पिता परिवार और विद्यालय परिवार को जाता है। सभी को नाम का साथ, मैम का नाम का साथ, सर का नाम का साथ, सभी बच्चों का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। अच्छा, सभी को आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: कभी हम

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी से पूछते हैं, बच्चों से, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, शायद कोई ऐसा होता होगा, बड़े होके मुझे सन्यास बनना है, या फिर मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसे देश के लिए मैं सेवा करूं, या फिर मैं ऐसा जीवन जीऊं जो सारे विश्व के लिए मेरा जीवन का कोई मकसद हो। लेकिन जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और हम कई बातें ऐसे सीखते हैं, फिर अनायास ही हमारा लक्ष्य जीवन का कब बदल जाता है हमें भी पता नहीं चलता। जिस दिन उस लक्ष्य को हम समझ जाते हैं और उस मंजिल पे पहुँचने के लिए जो यात्रा होती है वो कभी सुकून वाला होता है तो कभी बहुत सारी रियलाइजेशंस की बातें होती हैं, कठिनाइयों से भी गुजरता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, आज की जो हमारे मेहमान हैं या आज की हमारे जो योगी हैं, उनका जीवन कैसा रहा और वो ऐसा योगी जीवन जीने के लिए क्यों चुना, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है राजयोगी आदरणीय शरद भाई जी। आप मूलतः कटक उड़ीसा से हैं और वर्तमान समय में आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटक से राजस्थान की यात्रा और एक बाल्यकाल में अध्यात्म को चुन करके एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए जो निर्णय लिया है, ये सफर कैसा रहा और इस सफर में आपने क्या सीखा है, आइए जानते हैं। उसके लिए हम स्वागत करते हैं आदरणीय शरद भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप वर्तमान समय में तो शांतिवन ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस परिवार में रहा, क्या माहौल रहा आपके बचपन का और आपके परिवार का, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: हम एक्चुअली एक गांव के रहने वाले हैं और जिस माहौल में हम पले बढ़े, बड़े हुए, माहौल उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे आज समाज में हर जगह शिक्षा की बातें हैं, कला प्रदर्शन की बातें हैं, वो नहीं थी। फिर भी माताजी पिताजी की जो तत्वावधान, जो पालना थी, वो पालना हमको बहुत आकर्षक माने जाते, क्योंकि हम घर और स्कूल के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।
0: ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं?
1: ये हमारा जन्म स्थान जो ब्रह्मपुरा गांव है
0: जी,
1: वहाँ की बातें कर रहे हैं।
0: ब्रह्मपुरा कटक डिस्ट्रिक्ट में।
1: हाँ जी, हाँ, कटक डिस्ट्रिक्ट। तो उस माहौल में हम सिर्फ इतना जानते थे, स्कूल और हमारा घर, उसके सिवाय हम दुनिया के बारे में कुछ इतना नहीं जानते थे।
0: ये कौन से सन की बात रही होगी? जो
1: ये जो है 89, माना बाबा का ज्ञान प्राप्त होने का पहले की बात,
0: 89 से पहले की बात।
1: तो पिताजी जितना पढ़े हुए थे, घर की अवस्था जितना थी, खाने पीने का घर का हो जाता था, बाकी इनकम और एजुकेशन का जो बातें थी, हमारे लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि हम टेंथ तक चप्पल भी पाँव में नहीं पहना था। जब हमारा टेंथ का एग्जाम हुआ, घर से हम 25 किलोमीटर दूर किसी हाई स्कूल में हमारा एग्जाम हुआ, तब हमने एक चप्पल पहनने का मार्जिन हमको मिला था। उसके बाद हम ये जो बात है 84 की बात, टेंथ हम जब कह दिया, फिर 85 में हमारा कॉलेज हुआ। तो कॉलेज में हमारा जो पास तो नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा ज्यादा कमजोर था, इंग्लिश, उसके कारण हमको फेल होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम देके पास किया।
0: आप कितने भाई बहन थे?
1: हम भाई तीन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ।
0: कोई बहन नहीं?
1: बहन नहीं, तो इसीलिए बाबा ने इतना सारी बहन दिया है। तो फिर उस समय जब हम एग्जाम दिया था प्लस टू का, उस समय बाबा का परिचय मिला। भुवनेश्वर से भाई बहने सब आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी लगाए थे उसको हमने जाके देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक चित्र था जो चार स्तंभ का चित्र है, तो उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य सुधर्ण
0: राज्यों की आधार।
1: हाँ, तो उसमें ये लगा कि चारों स्तंभ को अगर हमारा जीवन में हम मजबूत करें, उनको उन्होंने जो समझाया था, तो आप एक देवता बन जाए। हमारा बुद्धि में ये आया, देवता बनने की बात तो अलग है, कम से कम एक अच्छा इंसान बन जाए, ये हमारा बुद्धि में। तो फिर रात्रि का उनका प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको आना पड़े। फिर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र साप्ताहिक का कोर्स हुआ।
0: तो उस कोर्स में आप अकेले गए थे?
1: नहीं, वहाँ उस कोर्स में हम 150 करीब भाई बहन गए थे। उसमें
0: आपकी परिवार से आप अकेले थे?
1: हमारा परिवार से हम अकेले थे। तो उसमें से 75 लोग क्लास किया, शुरू किया। लेकिन कठिनाई ये थी उस समय कि खान पान के ऊपर जो उनका सिस्टम था कि राजयोग अभ्यास करने के बाद प्याज लहसुन ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया था, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो। ये नहीं सोचो कि हम मच्छी वगैरह सब खाते हैं वो कैसे होगा क्या, उसके बारे में आप सोचो नहीं। आप सोचो कैसे करके हम दोनों टाइम में राजयोग अभ्यास करें। राजयोग अभ्यास करते करते करते आपको अच्छा फीलिंग्स होगा और उस फीलिंग्स के आधार पर ये सारे चीजें आपसे दूर हो जाएंगे, संग दोष और ये खान पान। क्योंकि हमारा उस समय पान सिगरेट मद जो शराबी वगैरह ये हमारा अभ्यास में नहीं था, क्योंकि घर की थोड़ा पिताजी की स्ट्रिक्ट, चाय तक पिया नहीं था हमने और आज तक हम चाय नहीं पीते।
0: अच्छा
1: जी। क्योंकि एक बार पिताजी के पास हम गया था चाय पीने के लिए, कुछ मेहमान आए हुए थे तो कटोरी लेके चला गया। पिताजी हमको मुरमुरा थोड़ा थमा दिया, चाय की बात जब आया, तुम जब इनकम करेगा तब चाय पिएगा।
0: अच्छा।
1: तब से आज तक हमने चाय पिया नहीं। तो ये हमारा बुद्धि में था नहीं कि हमने ज्ञान में चलेंगे, बाकी इच्छा था, सत्संग करना जीवन में अच्छा है। तो ये चीज हमको बहुत आकर्षित किया, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे चलता है आज ही चलने दो और धीरे धीरे धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाए। तो फिर हम बोला ठीक है, हम क्यों इतना मेहनत कर, जब वो अपने आप छोड़ के जाएंगे हमें कोई मेहनत करना जरूरी नहीं। लेकिन तब
0: मतलब
1: से
0: हमारी कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
1: अब हाँ, हमारा कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
0: तो फिर परिवार में पता था कि आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं?
1: परिवार में पता यहाँ तक था दीदी कि पिताजी को लोगों ने ये बता दिया कि इस संस्था में जो जाता है वो मैरिज नहीं करता है।
0: अच्छा।
1: तो ये पिताजी को जब पता चला और पहला दिन कोर्स में हमने घर पे बता दिया कि आज से मच्छी वगैरह जो होता है मैं नहीं खाऊंगा। सेकेंड दिन का कोर्स में जब आया फिर माताजी को बोल दिया कि ये प्याज लहसुन मेरे लिए नहीं करने, अलग से कुछ भून लेना मैं खा लूं। तो उस समय पिताजी को माताजी ने बोले ये क्या दो चार दिन से बोलता है मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उनको ये बोले ये ओम शांति कुछ सत्संग हो रहा है, गाँव के कुछ लोग जा रहे हैं, ये वहाँ जाता है सुनने में आया, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर उनका नेचुरल जैसे चलता था ऐसे चलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये
0: जाने वाले
1: और इस लाइन में पक्का हो जाएंगे। लेकिन माताजी का एक था आशीर्वाद कि वो चाहती थी मेरा कोई एक संतान अगर इस मार्ग में जा रहा है तो ये हमारा भाग्य की बात है। जो लौकिक में सुना करते हैं कि अगर अपना लड़का या अपना परिवार में कोई साधु संन्यासी बनता है तो ये पूर्व भाग्य की ही बात है। ये जो विश्वास था घर पे गांव पे भी आज तक है
0: जी।
1: हर कोई घर से या परिवार से साधु संन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। गांव में जो 75 लोग आ रहे थे रेगुलर क्लास करने के लिए, जो भाई निमित था उनका ट्रांसफर हो गया। फिशरी डिपार्टमेंट का अच्छा एक भाई मैंने गांव का था, ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे जो दायित्व लेकर के कर रहे थे तो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन हमने जो 5-6 महीना रेगुलर क्लास किया था तुरंत जो बंद हुआ हमको बहुत कष्ट हुआ, उतना कष्ट हुआ कि इसके लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं है। फिर गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था तुलसीपुर, तो वहां फिर जाने के लिए हम सोच, तब हमारे पास सिर्फ साइकिल था, कॉलेज वाला साइकिल।
0: मतलब जब 89 में आपको इस राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला उस समय आपकी क्या उम्र रही?
1: 23।
0: अच्छा।
1: 12वीं में था, उसके बाद जो एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद हमने बाबा का परिचय प्राप्त, मतलब ये है 89 की। तो फिर जो साइकिल था उसको लेकर के हम गाँव से रोज 8 किलोमीटर दूर जो गीता पाठशाला हमारे था, रात को भोजन करने के बाद फिर हम चले जाते थे, रात को वहाँ रुकना, फिर अमृत वेला वहाँ करके मुरली क्लास करके फिर गांव में आना। ये सिलसिला हमारा 89 से लेकर 91 तक चला। फिर 91 में मधुबन से एक न्यूज गया कि 91 का जो ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास में जो होता है योग तपस्या, 91 में जो तपस्या मास चला, तो यहाँ से मैसेज गया था कि दादियों ने जो बाबा के साथ 14 साल तपस्या किया था, अगर इस महीने में हम लोगों वो तपस्या करते हैं तो 14 साल का जो बाबा का बच्चों को जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति जो होगा आपको वो मिलेगा। तो पिताजी को बोल के फिर हमने उसी गीता पाठशाला में एक महीने तक वहाँ रहा था और योग भक्ति का प्रैक्टिस हमने वहाँ किया था, तुलसीपुर गांव। फिर पिताजी से जब हमने छुट्टी लिया, पिताजी बोले कि तुमने यहाँ गांव में क्लास करता था, सत्संग करता था, अभी यहाँ से फिर दूर 8 किलोमीटर दूर कौन इतना सत्संग से क्या प्राप्ति होता है जो तुम वहाँ जाते हो, और फिर अभी बोलते हो कि वहाँ मुझे एक महीना रहना है, फिर आगे का क्या। मैंने बोला आगे का क्या तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आपका छुट्टी हो तो एक महीना जाके थोड़ा योग तपस्या अभ्यास करेंगे, फिर आगे का जब होगा तो आपको बताऊंगा।
0: पढ़ाई की प्रेशर नहीं थी, अभी तो 12वीं किया है, अभी आप ये सब कर
1: तो
0: रहे हो।
1: बुद्धि में यही था कि बहने भाई लोग जो सफेद ड्रेस में गांव गांव गली गली में सेवा कर रहे, मैंने उसमें ये आकर्षण था मैं जाकर लोगों को सत्संग सुनाऊंगा, ये बुद्धि में था। फिर ये लोगों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद संसार विनाश हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: मैंने 2000 उनका टारगेट था कि जो अपना गांव में से बोलते हैं ना, अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग जो कुछ भविष्य ज्ञानताकारी जो जानकारी वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से बुद्धि में था कि 2000 अगर विनाश हो जाएगा, कुछ पुण्य कर ले तो काम आएगा, इसी हिसाब से हम चल पड़े। तो पिताजी बोले ठीक है, फिर हमने वहाँ एक महीना जनवरी मास का पूरा कंप्लीट किया था। तो उस समय में भुवनेश्वर में दादी प्रकाशवाणी को आना था जनवरी 26 को, तो सभी ने बोले हमारा भट्टी चल रहा है और भट्टी को कैसे ब्रेक करके हम चले, लेकिन हमारा बुद्धि में था कि दादी बड़े मुश्किल से राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए दादी का दर्शन हम कर ले। तो उस गीता पाठशाला से 4-5 भाई हम फिर आए थे भुवनेश्वर दादी से मिलने, तो वहाँ के आकर्षण और बहुत था कि देखो दादियों ने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ, जब यज्ञ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम हुआ फिर ये चीज और गहरा होता गया। फिर वहाँ से आकर फिर जैसे योग भट्टी चालू था ऐसे किया, बाकी वहाँ से एक नया चीज हमको आभास हुआ, हमारे गांव से एक भाई जिसका फैमिली टोटल आके भुवनेश्वर में रह रहे हैं और टोटल फैमिली उनका ज्ञान में चल रहे, तो उस भाई के साथ जब हमारा परिचय हुआ और वो योग कैसे करते है, अनुभव कैसे होना है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे होना चाहिए और कुमार जीवन और लौकिक जीवन में क्या अंतर है, वो डिटेल से उन्होंने बताया कि हम नए नए थे और उन्होंने जितना भी बताया हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ये सारा पूछने के बाद क्वेश्चन किया कि आप ज्ञान में क्यों चला, क्या कारण है जो आप ज्ञान में चलते हो। फिर मेरे को एक शक लगा क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ज्ञान में चलो, जब नहीं चलते थे तब बोले कि ज्ञान में चलो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर जब
0: ये किसने बोला ज्ञान में चलो,
1: जो भाई जो गांव का था जिन्होंने भुवनेश्वर में पिताजी के साथ रहा करते थे, टोटल फैमिली उनका था भुवनेश्वर में, उनका पिताजी भुवनेश्वर में कहीं नौकरी करते थे, तो ये भाई बहन सब ज्ञान में चलते थे। और वो भाई जब ये पूछे मिले भाई साहब आप लोग तो बोलते हो ज्ञान में चलो, फिर ज्ञान में चलने के बाद बोलते हो ज्ञान में क्यों चला, इसका क्या
0: अर्थ है।
1: अर्थ है
0: जी,
1: नहीं फिर भी कुछ तो मन में आया होगा तो आपने ज्ञान में चला। मैंने इतने उनको थोड़ा रुक के बोला कि देखो सभी बोलते हैं क्या मैंने दुनिया 2000 को विनाश हो जाएगा, तो विनाश होने के पहले कुछ पुण्य कर दे ताकि कुछ काम में आएगा। फिर उन्होंने पलट के फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो अगर 2000 को विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान छोड़ दोगे, तो हमारे मन में एक धक्का आया, अगर ज्ञान इतना दिन चलने के बाद छोड़ देंगे कैसे। तो उन्होंने बोले आपका उत्तर ही बोलता है कि 2000 तक चलेंगे, उसके बाद गारंटी कुछ नहीं, तो ये तो फिर आपको ज्ञान में चलने नहीं देगा। उनका कहना था कि ज्ञान माने 2000 को विनाश नहीं होगा तो ज्ञान छोड़ दोगे, इसी हिसाब से हमने बोला कि नहीं। फिर हमने बोला कि नहीं, अब जब इतना दिन चल पड़े हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे ना, ये पूरा निश्चय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा ऐसे कहा कि तुम्हारा
0: ज्ञान की तर्क वितर्क की बातें की।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी।
1: तो फिर उन्होंने बताया कि आपका बुद्धि में ये रहना चाहिए और आज से रखो कि विनाश कब होगा उसका कोई मूल ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है, जब विनाश होगा होगा, तो मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है,
0: परमात्मा का हाथ नहीं
1: छोड़ना है, तो ये बुद्धि में रखो तो आपका विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ठीक है,
0: लेकिन समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया आपने?
1: फिर समर्पित की बात जब आई, वो भाई की ये जो बात हुआ, फिर उनसे थोड़ा दोस्ती जैसा हो गया एकदम नजदीक, और ये फीलिंग हुआ कि हमारा एरिया का भाई है, तो उनसे फिर नजदीक होकर के ज्ञान की कुछ बातें हुआ, फिर माउंट आबू की बातें हुई, फिर हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते ये सारी बातें, क्योंकि सेंटर की इच्छा नहीं थी और हेडक्वार्टर में रहने का अगर चांस मिलता है तो आगे बढ़े। और उस समय हमारे एरिया का एक भाई था जो दिल्ली में रहा करते, तब हम उसको देखा नहीं था। तो ये बुद्धि में आया, जब वो भाई दिल्ली में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर भाई जी से उसी समय बात कर लिया कि मेरा इच्छा है माउंट आबू में जाके परमानेंट सेवा कर। फिर वो भाई ने अच्छा नोट किया था, क्योंकि हम जब यहाँ घर से जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर स्नान करके अमूर्ति वेला करना, फिर मुरली पढ़ना। और दीदी आज तक हमने जब से ज्ञान में चले, जो बीच में जो बंद हुआ था वो भाई के कारण, उसके अलावा हमारा आज तक यज्ञ में जब से है मुरली एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। ताने क्यों, मुरली के समय में हमारा सारे काम बंद करके हम सीधा चले जाते मुरली क्लास में, यही हमारे पास एक ही ताकत है। बाकी तो परिवार संगठन भाई बहन की आशीर्वाद ऐसे हम अभी तक चल रहे।
0: तो समर्पित का संकल्प कैसे आया और मधुबन कैसे पहुंचे?
1: फिर वो जो भाई से हमने मिला था, वो भाई को हमने बोला कि घर पे हम 3 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और घर का जो जमीन है लोग की खेती बाड़ी, वो साल के लिए हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा
0: जिम्मेवारी
1: नहीं है। तो ये भरोसे से भाई से हमने बात किया। वो भाई ने हमको भरोसा दिलाया कि ठीक है हम दादी से बात करते। फिर दादी से बात करके उन्होंने मैसेज दिया, दादी ने उनको बोला था कि भाई वो कहीं गांव का रहता है, ज्ञान योग कैसे करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, संगठन में कैसे चलेगा, किसका संस्कार कैसे, ये संस्कार मिला के चल पाएगा नहीं पाएगा वो मैं नहीं जानता, जब तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे भरोसे ऊपर मैं राजी होता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो भाई को बुलाओ ओम निवास, ये वो मेरे सामने ज्ञान योग करेगा, संगठन में रहेगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये कैसे ज्ञान में चल सक या नहीं चल सक। फिर एक भाई के पास मैं रहा, उन्होंने सेटिंग किया, 1 महीना दादी के सामने ज्ञान योग सेवा जो मिलता था सेंटर का वो सेवा करने के बाद, उस समय शांतिवन का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो महेंद्र भाई आज है नहीं, तो उन्होंने दादी को मैसेज दिया कि हमको 2 भाई चाहिए। वो भी उसमें हमारी नाम नहीं था, जो भाई दिल्ली गया था वो भाई, वो जिसको चुनेगा दूसरा भाई। तो वो भाई ने भेजा मेरे को गांव कि वो भाई को बुला के लाना कि वो माउंट आबू आए। तो वो भाई को जब हमने मिला और उन्होंने लौकिक में बाबा का प्रचार प्रसार, बाबा का सेवा करूंगा, इस हिसाब से मैं अभी मधुबन नहीं आ सकता, ये दादी को आप बताना। फिर उस समय हमारे पास जितना बुद्धि था उसी हिसाब से उनको समझाया कि भाई मधुबन जैसा स्थान नहीं मिलता है, अगर ऑफर मिलता है, और आप तो दिल्ली में कुछ दिन रहा फिर वहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन उनका एक जिद्दी था कि लोकल में हमारा बाबा का सेवा करें, ये तो उनका विचार था। फिर हमने चुपचाप आ गए, लेकिन ये ठान के आए कि अब वो भाई नहीं जा रहा है, उसके साथ जो दूसरा भाई जाना था वो भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर पक्का है। तो उस हिसाब से हमने दादी को मैसेज दिया, और वो मैसेज देने के बाद फिर हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, टिकट दादी करवाई, फिर ड्रेस भी कुछ नहीं था, ड्रेस भी बनवाए, टिकट भी बनवाए, हमको गाड़ी में छोड़े। तो इसी हिसाब से हमने मई 25 मेरा जन्मदिन था, मई 25 को ट्रेन में बैठा वहां से, और यहाँ 27 को पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद हमको सेवा मिली कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन के, और इतना धूप होता था उस समय
0: शांतिवन का कंस्ट्रक्शन
1: महेंद्र भाई के अंडर में, बड़े मधुकर जो आज कारपेंटर में है, रमेश भाई कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ हमको सेवा मिला।
0: मगर आप तो सिर्फ 12वीं पढ़े थे।
1: जी जी जी, कंस्ट्रक्शन का इतना कोई कुछ ज्ञान नहीं, बाकी सेवा करे जो सेवा के मिलेगा वो करेंगे, उसी हिसाब से हमको वहाँ यहाँ
0: जी
1: शांतिवन में सेवा मिला, और सेवा में लग गए। और इस तरीके से शांतिवन पहुँचना आसान हुआ, और वहाँ 96 तक हम जो सेवा किया कंस्ट्रक्शन में, तो बुद्धि में उस समय ये आया था, हम नहीं जानते थे कि प्याड ऑफिस में एक फाइट बनता है, ये होता है वो होता है, हमारा बुद्धि में नहीं था। हमारा बुद्धि में ये था कि हम समर्पित हो गए, बाकी ये जो फाइल बनाना ये चीज हमको
0: नहीं पता।
1: तो फिर जब ये पता चला कि इसे फाइल बनता है और वह रजिस्ट्री वगैरह बनता है, फिर हमने ये डिसीजन कर लिया जब तक हमारा फाइल नहीं बनता तब तक हमको घर जाना नहीं है।
0: अच्छा,
1: 91 से लेकर के 96 तक हम घर नहीं गए थे, 96 के बाद हमारा जो यहाँ के हिसाब से जो फाइल बनना था बनना, हमारा नंबर आया, उसके बाद हम घर गए।
0: अच्छा, बीच में आप जो बोल रहे थे कि संन्यास मतलब ऐसे भिखारी वाला संन्यास नहीं बनना है, तो वो बात कहाँ से आई?
1: क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल में, जितने साधु संत महात्मा हमने देखा है गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव में आके लोगों को भिक्षा दे ही करके जो मांगते थे,
0: भिक्षा लेते,
1: हाँ, ये हमको कष्ट होता था, क्योंकि जो भी हमने जिन जिन को देखा है एजुकेटेड पर्सन देखा है, लेकिन ऐसे मांगते हैं, कई लोग बोलते थे उनको कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप मांग के क्यों खाते हो, सन्यासी बन गया ठीक है, लेकिन मांग के खाना ये कौन सी सन्यासी की, और जब लोगों से मांग के खाते हो तो सन्यासी किसी बात की रहा, पिताजी माताजी को छोड़ा यहाँ आकर के मांग के खाते हो, ये चीज हमको बड़ा अकड़ता था कि ये सन्यासी हमको फिर पसंद नहीं।
0: तो जब आपको समर्पित होने का ख्याल आया, लेकिन आपको ये क्लैरिटी थी कि आपको सन्यास बनना मतलब भिखारी वाली सन्यास नहीं बनना है, भिक्षा लेने वाली सन्यास नहीं बनना है, तो आपको उस समय क्लैरिटी थी कि मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित होऊंगा तो मेरा एक रॉयल लाइफ होगा और मुझे इस तरीके से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं।
1: तो बुद्धि में ये था, जो बहने भुवनेश्वर से आए हुए थे वो लोगों जो खाना खाते थे और भुवनेश्वर सेंटर में रहते थे वो कहीं नहीं जाते थे, बाबा का भंडारी से जो मिलता था, जैसे पालना मिलती थी उसी हिसाब से वो चलते थे, भाई जब वो चल रहे हम क्यों नहीं चल सकते, ये बुद्धि में पक्का था, क्योंकि ज्ञान को समझाना और खुद समझना, लोगों तक उस बात को प्रैक्टिकल रखते थे वो लोग, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उनके पास उत्तर नहीं था, तो हमने उस चीज से ज्यादा प्रभावित हुए। पर लोगों ने जो पूछा था कोर्स करने के समय, हर चीज के ऊपर उनका क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन,
0: उनके पास जवाब थी,
1: उनका पास वो जवाब। दूसरा आकर्षण था, जब हमारा गांव में कोर्स चला उसमें इंजीनियर प्रोफेसर ये सब थे, किंतु लौकिक में हमने नहीं देखा था जो साधु संत महात्मा और जो लोग सत्संग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग कभी सत्संग करते हुए हमने नहीं देखा, सत्संग कराने के लिए भी ऐसे एजुकेटेड पर्सन नहीं देखा था, वो चीज थोड़ा हमको और आकर्षित किया कि इस ज्ञान में जरूर कुछ है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर थे, होम डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, एक बड़ा इंजीनियर भाई था जो हमको कोर्स कराया था, तो हमने देखा मतलब इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ये पढ़ाई पढ़ते हैं, और जब इतने पढ़े लिखे लोगों इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जरूर इसमें कुछ अंधविश्वास की बात नहीं होगा, तब वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं, गांव वाले भी इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते जितना क्वेश्चन वो लोग, ऐसे गांव में था कोर्स के समय सभी लोगों ने हर चीज को माना, लेकिन सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष है उस चीज को कोई नहीं माना। फिर जो कोर्स करने वाले भाई थे हम उनसे डायरेक्ट पूछा, मतलब भाई साहब एक बात पूछो, कोई बात नहीं पूछ, फिर हमने पूछा था उनको कि ये लोग सभी बात को मानते हैं, आत्मा को माना, परमात्मा को माना, सृष्टि चक्र में जब सृष्टि चक्र की समय सीमा 5000 वर्ष कहा गया वो नहीं माना। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो हम 10 किलोमीटर रास्ता जब तय करते तो उस रास्ते में जब हम 90% सिग्नल देते कि ये चीज है, लास्ट सिग्नल को अगर कोई मानता नहीं है और हम कहते हैं कि लास्ट सिग्नल यही होगा, अगर वो नहीं मानते 90% चीज को उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर ये जरूर 100% सत्य है, अगर वो लोग नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बाबा जाने और हो जाए। फिर हमारा बुद्धि में ये हो गया कि ये लोग कुछ बोले या ना बोले इसमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात, जब 6 महीने वो लोग ज्ञान में रेगुलर सुने और उसके बाद सिर्फ खान पान के कारण चले गए, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मंदिर ये नहीं करना है, फिर मैंने बोला ये लोगों का निश्चय नहीं है।
0: जब आप समर्पित होने के लिए आए और ये सारी बातें, तब तक फिर आपके परिवार मान गई थी आपकी इस तरह,
1: परिवार वाले माने थे कुछ, बाकी कुछ नहीं माने थे, क्योंकि उनको जब बोला गया पब्लिक से कि संस्था में जो जाते हैं मैरिज नहीं करते, और घर पे घर का बड़ा होने के कारण साहस से कोई पूछ नहीं पाते थे। फिर एक दिन हमारा बुआ जो होगा तो उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात हम सुन रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कोई बात नहीं, अगर वहाँ मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है फिर वहाँ वो सत्संग करने हम जाएंगे, तो उनको ये जवाब हमने दिया था। तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और घर पे उसमें भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। अच्छा, जो बंदे को हम लाएंगे घर पे उसका खाना पीना रहना ये सारी सिस्टम करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, इनकम सोर्स कुछ होगा, उसके बाद सोचेंगे कि मैरिज करना है नहीं। फिर उनके बुद्धि में क्या है, नहीं नहीं हमारा लड़का ठीक समझा है, अभी पढ़ता है, नौकरी या चाकरी जो भी बिजनेस करेगा उसके बाद मकान उसके लिए बना के फिर मैरिज कर, मतलब फिर उन्होंने ये छुट्टी दिया, बेटा तुम जिस रास्ते में जाते हो वो रेगुलर जाओ,
0: फिर खान पान का भी छूट मिल गया।
1: हाँ, फिर क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारा लड़का ज्ञान ठीक समझाए,
0: ठीक समझाए,
1: क्योंकि नौकरी करेगा
0: फिर भले वो फॉलो नहीं करते हैं, वो सेंटर नहीं जाते, लेकिन आपको छुट्टी मिल गई।
1: छुट्टी मिल गई,
0: बहुत अच्छा। सो भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं संस्था में?
1: संस्था में यहाँ जितने भाई बहन हम लोग रहते हैं, दुनिया के हिसाब से हम लोगों सभी अपने अपने जो सेवा स्थान मिला है, जैसे हमको पीने का पानी का सेवा मिला है, वहाँ हम सेवा दे रहे। उसके साथ जब पब्लिक में कभी सेवा का चांस मिलता है वो करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सेवा में हमको 10-12 घंटा से ज्यादा समय हो जाता है।
0: मतलब इतने बड़ी कैंपस में जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है,
1: उस सेवा में हम अपना समय
0: जगह जगह पे उस समय पे उपलब्ध रहे। वाटर मशीन चलाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग वाटर करो, और मशीन का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप संभालते हैं
1: जी।
0: बहुत अच्छा है भाई जी। आपको जीवन में कब ये महसूस हुआ कि इसे जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? वो क्या पल था, क्या मोड़ था वो?
1: ये तो हमने इतना नहीं सोचा, बाकी ये सोचा कि जैसे कोर्स के समय जो भाई बोला था, ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाएगा आप एक देवता बन जाओगे, तो हमारा लक्ष्य वहाँ था कि हम देवता बनने की बात छोड़ो, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये हमारा बुद्धि में था। तो ये था जब हम कोर्स करने के पहले जो मैसेज था कि अच्छा इंसान बन जाएंगे समाज के अंदर। आज समाज में ये देखा जाता है कि लोगों कितना एजुकेशन लिया हुआ हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन चरित्र नाम का चीज उनके पास नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैरेक्टर इज गुड लिखा जाता है, लेकिन आज के समय अगर उनको पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है, तो उसका जवाब नहीं दे सके। और उसका जवाब सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन है वो लोग उसका जवाब दे सके। तो ये चीज ज्यादा हमको प्रभावित
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आप अपने अमूल्य समय लेकर के आए, और हम सभी को आपकी जीवन के उन चंद पलों से अनुभव कराया कि बाल्यकाल में हमारे मन में जो चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा बनाती हैं। भले उस समय हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बने, क्या बने, लेकिन मूलभूत जो हमारी संवेदनशीलता या भावनाएं जो होती है वो हमारी जीवन की दिशा बनाती है
1: जी। थैंक यू,
0: धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों, ये था आज के इस योगी की कहानी, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जीवन के उन पलों को या फिर हर एक के जीवन के कुछ नया दृश्यों को आप सुनते हैं, और ये प्रेरणा लेने की हम कोशिश करते रहते हैं कि क्यों हमें इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन या हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान होता है। दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सबने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई सा, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई सा, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई सा?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं, नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसी कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए? कोई जमाई साहब को तो देखो, अब तक आए नहीं। हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप। मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया, आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा, आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा, आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है, वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: मासा मैं देखकर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति।
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह, लाओ लाओ, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी, आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
1: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति गेट खोलो।
6: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे गेट खोलो ना।
10: जाइए गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
9: अरे गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
8: शांति गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ, किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही तो ऐसे ही
8: है। अरे कोई देखो, बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे कौन?
13: पुलिस।
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
14: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
4: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता। ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात, मेरी परेशानी, मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी गम्मा दोस्तों।
15: घरोनेर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। अगर उम्मीद जिंदा है तो खोई हुई शांति, प्रेम, विश्वास इन सबको वापस ला सकते हैं। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, पुदीना कौन सी बीमारी ठीक करता है, कैसे हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है, जरूर जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज आप सभी को सिखाने वाली हूँ मैं कॉर्न पाक, मकई का हलवा। ठीक है भाई, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो कैसे भूल सकते हैं, मीठा सिखाएंगे आपको जरूर। और आज की पहेली भी बहुत सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो खोई हुई शांति, प्रेम, विश्वास, इन सबको वापस ला सकते हैं, इसलिए कभी उम्मीद नहीं खोना है। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक बच्चा होता है, उसने 4 कैंडल्स जलाए। चारों के नाम, एक का नाम था शांति, एक का प्रेम, तीसरे का विश्वास और चौथे का उम्मीद। चारों कैंडल जलाए तो जिसका नाम शांति था, जिस कैंडल का, उसने सोचा कि कहाँ शांति है, आजकल तो चारों तरफ अशांति अशांति है, न मेरे अंदर शांति है, न इस बाहरी दुनिया में शांति है, फालतू की उम्मीद लगा करके क्यों जीना है, चलो बुझ जाते हैं। तो शांति नाम का कैंडल बुझ गया। इधर विश्वास ने देखा कि शांति तो गई, आजकल विश्वास भी कहाँ रहा, कब कौन किसको धोखा देगा, कब कौन किसके साथ विश्वासघात करेगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसी दुनिया में रह करके भी क्या करना है, चलो अपन भी यहां से चलते हैं। और विश्वास नाम का कैंडल भी बुझ जाता है। अब प्रेम को भी लगता है कि कहाँ है प्रेम, सब स्वार्थी हो चले हैं, पहले एक दूसरे के लिए जीते थे, अब तो स्वयं के लिए जीते और स्वयं के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का अहित कर देते हैं। क्या करना है भला ऐसी दुनिया में रह करके, चलो यहाँ से चलते हैं हम भी। तो प्रेम नाम का कैंडल भी बुझ जाता है। जितने में वो बच्चा आ जाता है, बच्चा सोचता है कि ये क्या, मैंने तो चारों ही कैंडल जलाए थे अच्छी तरह और ये 3 कैंडल बुझ गए है, ये एक ही कैंडल रहा है। तो उम्मीद नाम के कैंडल ने सोचा कि क्यों बुझे, अरे भाई वो कहते ना कि नकारात्मकता के माहौल में ही सकारात्मकता को लाना है, नेगेटिव माहौल में ही पॉजिटिव माहौल बनाना है, और एक उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। अच्छा सोचेंगे, हम सभी को प्रेम देंगे, हम विश्वास करेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे, तो हो सकता है कि ये सब कुछ वापस आ जाए। तो उम्मीद नाम का जो कैंडल है उसने बच्चे से बोला, बच्चा दुखी हो जाता है कि 4 कैंडल जलाए उसके बावजूद भी 3 बुझ गए हैं, क्या मतलब रहा कैंडल जलाने का। जितने उम्मीद नाम के कैंडल ने कहा कि आप उदास मत होइए, आप मेरे सहारे इन 3 को जीवित कर सकते हैं, जला सकते हैं। बच्चा बड़ा खुश हो गया और उसने वापस 3 ही कैंडल को उम्मीद नाम के कैंडल से जला दिया और 3 ही जल उठे, तो 4 ही जगमगाने लगे। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह क्या बात है, रोशनी बहुत अच्छी हो गई, खुश हो गया। वो बाहरी रोशनी ढूंढ रहा था, लेकिन ये 3 ही समझ गए, कौन कौन, शांति, प्रेम और विश्वास, 3 ही समझ गए कि नहीं नहीं हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए थी। उम्मीद नाम के कैंडल को दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम 3 तो हार गए थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, तो आपकी हिम्मत को देख करके हम 3 भी आपका साथ जरूर देंगे, और 3 जगमगाने लगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अगर उम्मीद जिंदा है तो क्या होगा, प्रेम, खोया हुआ प्रेम, विश्वास, शांति, ये भी लौट आएंगे, और उम्मीद ही खत्म हो गई तो बस फिर तो चारों तरफ अंधकार होना ही है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी उम्मीद नहीं खोनी है। कोई भी हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उम्मीद बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए सुनते हैं फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ना आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसा कि गीत सुना है वैसे ही आपको घरेलू उपाय देने जा रही हूँ। जी हाँ, पुदीना ये कौन सी बीमारी ठीक करता है जानेंगे आप। तो देखिए, त्वचा की गर्मी है तो हरा पुदीना पीस करके चेहरे पर आधा घंटे तक लगा कर रहने दीजिए, त्वचा की गर्मी शांत हो जाएगी। ठीक है, कितनी बार हम धूप में चल करके आते हैं त्वचा जलती है, ऐसी स्थिति में हरा पुदीना पीसिए, इसकी पेस्ट बनाइए और चेहरे पर आधा घंटे तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद बस फिर नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं, गर्मी शांत हो जाएगी। अगर पित्ती उछलती है, ठीक है, पित्ती उछलती है, जल्दी जल्दी निकलती है, तो 15 ग्राम पुदीना को 25 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ताजा पानी में उबाल करके रोगी को पिला दीजिए, पित्ती निकलना बंद हो जाएगी। पित्ती किसको कहते हैं पता है? नाभि को। ठीक है, यदि पित्ती जल्दी जल्दी निकलती हो तो 15 ग्राम पुदीना को 25 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ताजा पानी में उबाल करके रोगी को पिला दीजिए, पित्ती निकलना बंद हो जाएगी। खून जम रहा हो, चोट लग गई, चोट लगने पर खून जम जाता है पता है ना, तो वहां पर पुदीने का आप अर्क पीजिएगा। खून जम गया हो चोट की वजह से तो पुदीना का अर्क पीने से खून जहां भी जमा होगा वो ठीक हो जाएगा। हरे पुदीने को पीस करके चटनी की भांति बना लीजिए, उसे रात्रि में सोते समय चेहरे पर लेप करिए, इससे चेहरे की फुंसियां मुहासे दूर होकर के चेहरा खिल उठेगा। हरे पुदीने को पीस करके इसकी चटनी की तरह बना दीजिए, मतलब इसका पेस्ट बना दीजिए, फिर उसको रात में सोते समय चेहरे पर लेप करिएगा तो चेहरे की फुंसिया है, मुहासे है, झाइया है, ये सब ठीक हो जाएगा और चेहरा खिल उठेगा। और बहुत सुंदर उपाय है, हिचकी आती हो, पेट में कीड़े हो, वमन होते हो, दस्ते लगती हो, भोजन के प्रति अरुचि हो गई हो, तो सभी में पुदीने का रस बहुत ही फायदा करता है। थोड़ा सा आप पुदीना का रस पी सकते हैं। तो कौन कौन सी तकलीफ कही मैंने? हिचकी आती हो, पेट में कीड़े हो, वमन की शिकायत हो, वोमिटिंग की, पतले पतले दस्त लगते हो, भोजन के प्रति अरुचि हो गई हो, तो इन सभी बीमारियों में पुदीने का रस बहुत ही फायदेमंद है, आप पुदीने का रस पी सकते हैं। और लास्ट उपाय है, बिच्छू ने काटा हो तो दंशित स्थान पर पुदीने का लेप करिएगा, साथ ही पुदीना जल में पीस कर पीजिएगा भी, इससे जहर उतर जाएगा। मान लीजिए बिच्छू ने काट दिया है, ठीक है, अब भाई बारिश के मौसम में या खेती बाड़ी में काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है अक्सर, तो दंशित स्थान पर क्या करेंगे, पुदीने की पेस्ट बना करके उसका लेप करिएगा और साथ ही पुदीना को पानी में पीस करके पीजिएगा, तो जहर जल्दी उतर जाएगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, न मैं त्योहार हूँ न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो यह आज की पहेली है, फिर से दोहरा रही हूँ, न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी देखे एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। तो बहुत ही सुंदर विषय आप सभी के समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते हैं उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो बहुत ही सुंदर पहेली भी आपके समक्ष रख चुकी हूँ, विषय भी आपके समक्ष रख चुकी हूँ। अब आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, पहेली का जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो।

आजकल क्या है सुरेश भाई, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। दूसरों के बंगलों को देखते, गाड़ी को देखते तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरे पास कब होगा, तो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं।

जी जी जिसकी जरूरत नहीं है क्यों लाने की फालतू की। जी जी जी जी

जी जी जी बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी बात को बहुत सुंदर तरीके से रखी। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, प्रैक्टिकल विषय है और आजकल हो रहा है। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। क्या कहेंगे आप, बहुत ही सुंदर विषय है और प्रैक्टिकल विषय है। तो आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब आप चाहे तो रेडियो से जुड़कर कह दीजिएगा, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। नमस्ते सुभाष भाई, नमस्ते। हाँ जी,

नहीं नहीं, आपको धन्यवाद, आपने कहा तो एक नई रेसिपी सभी को सीखने को मिली, चने की दाल के वड़े।

अच्छा, आज की पहेली का जवाब देंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने भी बहुत ही सुंदर बात कही है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, वह भी पूरे लगन से। जैसे सूरज भी एकदम कहाँ उग जाता है, वह भी तो धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। तो क्या कहेंगे आप? और आज के पहली भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद, सभी श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो ये बहुत ही सुंदर आज का पहेली भी है, तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं। क्या बात है, अभी श्राद्ध के दिनों में व्यस्त हो गए, फिर नवरात्रि में क्या होगा? मुझे तो नवरात्रि की चिंता होने लगी है कि भाई नवरात्रि में तो फिर आप गरबा कर करके ही थक जाएंगे, फिर सुबह उठने का ठिकाना नहीं। अभी श्राद्ध में तो जुड़ ही जाइए, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा श्राद्ध होता है तो हम खाना बाहर बनवाते हैं, हलवाई बनाता है, लेकिन छोटा श्राद्ध तो हम घर पर ही करते हैं और उसमें ज़्यादा तो महिलाएँ बनाती हैं। तो देखते हैं कौन जवाब देते हैं, कौन जुड़ते हैं। बाकी बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए, जो हम ये चकाचौंध देखते हैं दुनिया की, बाहरी चकाचौंध, ठीक है, तो एकदम नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। किसी के पास बहुत ही सुंदर बंगला है, गाड़ी भी है, अरे भाई उसके पास तो क्या नहीं है ये बताइए, सब कुछ है। और आखिर हमारे ऐसे कैसे किस्मत है कि हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं है, फोर व्हीलर तो छोड़ो, टू व्हीलर भी नहीं है, अरे ये भी कोई जीवन है क्या, है ना? ऐसे लोग हीन भावना भर लेते हैं, अरे भाई उसकी मेहनत देखो कि वो मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि कभी कभी एक पीढ़ी मेहनत करती है, उसका सुख दूसरी पीढ़ी भोगती है, और कभी कभी तो देखिए खुद को ही मेहनत करना पड़ता है और खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे एक बात याद आ रही है, सच्ची बात है, कि एक बच्चा है तो बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया, माँ ने स्ट्रगल करके चार बच्चे चारों की पालना की। देखिए माँ क्या है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो पिता का भी प्यार दे देती है और माँ की ममता भी लुटा देती है, बाहर कुछ भी करके दो पैसे कमाई भी कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है। और पिता भी कम नहीं है, लेकिन पिता क्या कमा के ला के रख सकते हैं, लेकिन घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक के लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए। तो माँ ने चारों ही बच्चों की अच्छी पालना की, मतलब संस्कार अच्छे दिए और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया बच्चों को, क्योंकि एक तीसरी में था, एक तो अभी चलना सीख रहा था, एक पांचवी में था और एक पहली क्लास में। तो इस तरह चार बच्चे थे और पति का देहांत हो गया, कोई घर में खास कुछ है नहीं, और घर भी सास ससुर की नज़र में था कि ये जो एक रूम रसोई में रहते उसको भी यहाँ से निकालो। तो आए दिन झगड़ा करते थे, लेकिन वो बहन हिम्मत करके भले ससुर के हाथ की मार खाई, सास ने धक्का भी दिया, काफ़ी कुछ सहा, लेकिन फिर भी वो उसी घर में डटी रही कि भाई अपना घर होता है, पति ने बनवाया है, मैं नहीं निकलूंगी। सास ससुर का घर अलग अलग रहते, फिर भी उसके बावजूद झगड़ा करने आते थे, लेकिन बहन हिम्मत रखती तो मोहल्ले वाले भी साथ देते, और ऐसे करके वो टिक गई। फिर लोगों के घर का झाड़ू पोछा किया, फिर किसी के पापड़ बनाना, पापड़ी बनाना, किसके क्या करना, मतलब कोई भी काम नहीं छोड़ती थी। कोई कहते हमारे गेहूं साफ करने आओगी तो हाँ आ जाऊंगी ना, और इस तरह लोगों के घरों में काम कर करके तो पैसा कमाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया, सरकारी स्कूल में पढ़ाया और बड़ी क्लास में, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में जो आजकल बच्चे को नहीं पढ़ाते वो कोई सरकारी स्कूल क्या गलत है क्या, पढ़ाना ही चाहिए। स्कूलों में हम पढ़ाएंगे तो बाकी ये अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए फीस भरते, क्यों भरने की। तो संस्कार भी अच्छे दिए, पढ़ने में बच्चे बहुत होशियार थे, उनको सिर्फ माँ यही कहती कि तुमको पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है, बाकी सारा छोड़ दो। मैं कर लूँगी, और वो कर लेती थी लगभग काम, बच्चों को चारों ही बच्चे काबिल निकले।
दो बेटियां और दो बेटे, चारों ही गवर्नमेंट जॉब में। और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ से काम छुड़वा ही देते हैं, माँ को भी मना कर दिया और गांव में एक अच्छा सा मकान बना दिया कि भाई कभी भी अपने गांव के जो धरोहर है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, जहां हम बड़े हुए, जहां से हमें शिक्षा संस्कार मिले, पालना मिली, सब कुछ मिला, तो उस गांव को कैसे भूले। इसलिए चारों बच्चों ने मिलकर के बहुत सुंदर वहां पर मकान बना दिया कि कभी कभी आएंगे और छुट्टियों के दिन यहाँ बिताएंगे। और बच्चे शहर में, चारों अलग अलग शहर में, अब माँ को बुलाते हैं, माँ कभी एक बच्चे के पास, फिर दूसरे, फिर कभी बेटी के पास, कभी किसके पास, थोड़े थोड़े दिन घूम करके वापस गांव में आ जाती थी। बच्चे डांटते थे कि आप गांव में क्या करते हो, हमारे साथ ही रहो, लेकिन माँ को तो जो मिला गांव से मिला है ना, मतलब गांव भी ऐसा कोई बिल्कुल गांव नहीं, कस्बा समझ सकते हैं आप, कस्बा में रहते थे तो कस्बा में तो काम मिल ही जाता है। तो फिर माँ ने काम तो खैर बच्चों ने छुड़वा ही दिया, लेकिन फिर भी वहाँ ही उनका मन लगता था, तो बोले कि आप सभी आओ त्यौहार करने यहाँ पर, मैं आऊँगी बीच बीच में आपके पास। तो इस तरह उनका चल रहा है। तो अब ये थोड़े ना हम कहेंगे कि अरे उनके पास ये हो गया वो हो गया, गांव वाले जो कस्बे वाले कहते हैं कि इन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया हमें पता है, इसलिए बच्चों के पास जो भी है होना ही चाहिए। अब कस्बे में जब उनका बंगला देखते हैं तो लोग आते हैं जो बाहर शहरों में रहते, वो आते तो कहते हो अच्छा फलानी चाची के बंगला बन गया, क्या बात है, वो रूम रसोई कहाँ गई। अरे वो रूम रसोई तो अब उन्होंने अपने सास ससुर को सौंप दी कि बहुत झगड़ा किया ना, ले लो हमें नहीं चाहिए, बच्चे अब काबिल है, हमें जो चाहिए हम अपनी मेहनत से ही कमा रहे और हो जाएगा, आप ले लो। सास ससुर भी बड़े शर्मिंदा हुए कि देखो कितने तकलीफ उठाई, उसके बावजूद भी मेहनत करके ऊपर आ गई है, बच्चे भी काबिल निकले हैं, लेकिन उस समय किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। लेकिन कोई एकदम तो नहीं हुआ ना कि भाई साल भर में ही हो गया उनके पास, उन्होंने माताजी ने कम से कम 12-13 साल स्ट्रगल में लगाया, तब फर्स्ट बच्चा फिर जॉब को लगा, फिर सेकंड लगा, तब तक माताजी करते रहे। जब दोनों बच्चे अच्छी तरह जॉब करने लगे तो फिर बहन से छुड़वा दिया कि नहीं बहन, मतलब माँ से छुड़वा दिया कि आपको अब नहीं करना है, लेकिन माँ रहती गांव में थी। फिर जब दोनों बेटियां भी जॉब को लग गई तो फिर चारों बच्चों ने सोच लिया कि अब मम्मी को यार रहने नहीं देना है, लेकिन हाँ अच्छा सा मकान जरूर बनाना है कि हम भी सभी आकर के साथ में रह सके। तो अच्छा सा बंगला बना दिया, एक गाड़ी वहां पर छोड़ दी कि कभी भी आए तो हम आसपास के एरिया में घूमेंगे तो गाड़ी भी चाहिए। फिर लोग आते देखते अरे भाई क्या बात है, पर फिर सब यही कहते कि इसने मेहनत कम की क्या, इसके मेहनत का फल है कि बच्चे इस काबिल हुए है। तो आप किसी का भी स्ट्रगल के पीछे वो हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि अरे भाई उसके पास तो बहुत बड़ा बंगला है, ये है वो है, ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, तो हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में देख रहे हैं ना आप कितना साइबर क्राइम हो रहे हैं, आए दिन उनके पैसे उड़ गए, उनके पैसे उड़ गए, ये हो गया वो हो गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो लेकर के भाग गया। हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है और मेहनत से आगे बढ़ना है, ठीक है, मेहनत का फल कोई नहीं रोक सकता देने से। चलिए इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। बहुत ही सुंदर विषय है। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है। क्या कहेंगे आप, आज की पहले भी सुंदर है। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद, सभी श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। बहुत ही सुंदर पहेली है, अपने आप में ये स्पष्ट है, इसलिए आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की और जवाब देने की। विषय बहुत ही सुंदर है कि जो कुछ भी मिल रहा है इस दुनिया में एकदम से नहीं मिलता है लोगों को, ठीक है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई, आपको और सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस दीदी अच्छे हैं, काम काज भी चल रहा है, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे विषय पर बात भी आप और दोस्त कर रहे हैं
0: जी,
1: तो बिल्कुल सही बात है दीदी। तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या है, सोच। जो ही जो जैसा सोचेगा ना वैसा ही बन जाएगा और वैसा ही काम करेगा। कोई हिंसा का सोच रखता है तो हिंसा का भी करते करेगा, कोई अच्छी सोच तो अच्छा काम करेगा। किसी के मन में मेहनत लगन से ईमानदार से पैसा कमा कर बड़ा होने की जो सोच रखता है तो वो कोई शॉर्टकट की रास्ते। तो मैं यही कहूंगा कि सोच बहुत अच्छी और बड़ी रखनी चाहिए, ईमानदार सोच। तो एक थोड़ी सी एक बात थी, कहानी के जरिए मैं बताऊंगा कि एक इंसान जंगल में जा रहा था तो थका, तो एक पेड़ के नीचे बैठा, तो वो पेड़ चमत्कारी था। सोचा कि कहीं से पानी मिल जाता तो अच्छा होगा। मन में सोचा तो सचमुच पानी मिल गया उस पेड़ ने दे दिया। तो खाना भी मिल जाता तो अच्छा, तो खाना भी मिल गया। तो आराम करने का खटिया भी मिल गया। जैसा सोता था वैसा होता रहा गया। और फिर तो उसने वो सोचा कि कहीं भूत आ गया तो क्या करेगी। तो सचमुच उनके सामने भूत आ गया। अरे ये तो मारकर खा जाएगा तो क्या करेगी। तो सचमुच मारकर खा गया। तो तो वही बात कहूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। मेहनत का जो मेहनत पसीने की कमाई जो हम खाते हैं तो बड़ी भगवान भी प्रसन्न होते हैं और बड़ी अच्छी हमें लगती है। अपने ही मेहनत से कमाई के किसी को हम दान पुण्य किसी की सेवा करेंगे तो हमें कितना अंदर से आनंद आएगा ना दीदी, तो वो बात अलग ही रहती है। तो एक तो ये बात है दीदी
0: जी।
1: मैं यही कहूंगा कि कोई शॉर्टकट रास्ता, कई लोग ऐसे हैं ना दीदी, अभी आपको दोहरा रही थी कि कोई फ्रॉड के चक्कर में ये वो
0: जी।
1: तो सावधानी के साथ

0: अच्छी सोच रखी दीदी
1: जी
0: जी जी दीदी
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी कहानी के माध्यम से समझाया है कि कैसे मतलब शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी। ऐसा ही हो रहा है अभी समाज में, तो खादड़ी कौन कब किस पर किसके साथ धोखा देगा कुछ भी नहीं कह सकते। हेलो,
2: हाँ नमस्कार, फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी फिरोज भाई नमस्ते, कैसे हो?
2: बस एकदम अच्छे हैं
1: जी।
2: आज तो बहन जी पांचवा अपराध है ना बहन जी?
1: हाँ जी।
2: हाँ तो पांचवा अपराध में भी देखो, अपने जो घर वाले जो रहते हैं, जो देहांत हो गए उनकी आत्मा को शांति के लिए, जो घर वाले जो ये कोई जो खीर बनाते हैं या तो मिष्ठान बनाते हैं या तो चावल बनाते हैं, उसका भोग लगा के फिर बाद में
1: ये तो श्राद्ध की बातें नहीं, आज का विषय है इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, परिश्रम करना पड़ता है, वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठ करके संसार को प्रकाशित करता है, क्या कहेंगे आप?
2: वो तो है, लेकिन उसमें भी वक्त चाहिए, वक्त से पहले किसी को ज्यादा और कम नहीं मिलता इसमें। हाँ किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि उसका देख के अपने को भाई अपने को भी एक दिन मालिक देगा, चलो अपने ये काम करते रहो, इसमें एक दिन तो सफलता अपने को भी मिलेगी
1: जी।
2: जी
1: और आज का आज की पहेली भी आपको सुना रही हूँ। हाँ जी, आज की पहेली है, न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। ठीक है, तो देखते हैं सही है गलत है, आप सुनिएगा कार्यक्रम, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि फोन नहीं लगता है, बहुत व्यस्त चलता है, देखिए अभी तो समय है तो आप फोन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का विषय है कि भाई इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिलता है, सूर्य को भी हम देखते हैं ना कैसे वो धीरे धीरे धीरे धीरे उदय होते होते होते खिलते खिलते खिलते खिलते फिर एकदम धूप देता है, एकदम आते ही तो प्रकाश नहीं फैला देता है ना, समय लगता है, हर चीज़ का एक समय होता है, समय के अनुसार ही मिलेगा। फिर हम गलत काम करने लग गए, गलत काम करके हम ज़्यादा कमाने लगे, वो तो फिर ठीक है, उसका परिणाम भी फिर अच्छा नहीं आएगा, है ना। जो मेहनत के दम पर कमाता है उसको पूछे कितना सुगुन मिलता है, जैसे हमारे श्रोता बंधु बता रहे हैं, सुरेश भाई भी बता रहे थे कि जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है सचमुच उसका दान पुण्य करते बड़ा अच्छा लगता है। तो सही है, किसी ने पकड़ा दिए और हमने किसी को दे दिया उसमें क्या है, लेकिन जब मेहनत से हमने कुछ किया है और फिर हमने दो पैसा किसी के ऊपर लगाया है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने भी कुछ तो अच्छा किया, पुण्य का काम। तो वो कहते ना कि भाई एकदम किसी को कुछ नहीं मिलता है, जिसके हम ये बाहरी चकाचौंध देखते हैं कि बंगला भी है इनके तो, बड़ी कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ अच्छी बात है, प्रेरणा लीजिए कि हाँ भाई वो कर सकते तो हम क्यों नहीं, चलो हम भी मेहनत करें, प्रेरणा लेनी चाहिए। ईर्ष्यावश अगर आप गलत काम के चक्कर में पड़ जाएंगे तब तो बहुत ही गलत होगा। देखो यहाँ पर मुझे सच्ची घटना याद आ रही, दो दोस्त होते हैं ठीक है, तो एक साधारण और एक बहुत पैसे वाला। अब पैसे वाला है क्योंकि उसके दादाजी ने बहुत मेहनत की थी, मेहनत करके कारोबार शुरू किया था, उस कारोबार को उसके पिता ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ाया। तो कहते हैं ना कि भाई जब मेहनत करते पूरे तो कारोबार बढ़ता जाता है, फलता फूलता है, तो ऐसे ही उनका कारोबार पहले छोटी सी दुकान थी उससे उसके शोरूम बना दिया, और पिताजी चाचा जी सब बैठते थे और संयुक्त परिवार था, बंगला बहुत ही बड़ा बना दिया, गाड़ी भी है, सब कुछ भी है। और जब भाई पिता पैसे वाला है तो वो तो जो बच्चा भी तो उन्हीं का कहलाएगा, तो पैसे वाला ही है, तो जो साधारण है उसके मन में धीरे धीरे हीन भावना आने लगी वो बार बार उसको कहता, अरे तेरे तो क्या कमी है, कभी कुछ उपकार कर लिया कर, तेरे पास क्या कमी है। वो समझ जाता है कि ये हीन भावना का शिकार होता जा रहा है। उसने कितनी बार उसकी हेल्प की, ठीक है, कितनी बार मदद की, धीरे धीरे कॉलेज भी आए, कॉलेज में भी वो उसका खर्चा करता था, चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के सामने इसको नीचे नहीं देखना पड़े, इसलिए वो उसकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि था तो वो भी स्टूडेंट, और स्टूडेंट को भला कितना भी घर में पैसा हो, लेकिन माता पिता सोच समझ करके ही पैसे देते हैं ना, कि कहीं ये गलत राह पर न चला जाए। इसलिए उसको भी एक पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन सीमित मात्रा में, फिर भी वो शेयरिंग करके चलता था कि चलो मेरे दोस्त को बुरा नहीं लगे और मेरे दोस्त को ऐसा नहीं लगे कि मेरे पास नहीं है, तो वो कोई भी चीज़ खाने की खरीदता तो भी दो चीज़ खरीदता, दोस्त को भी खिलाता, खुद भी खाता। कहीं पर मान लीजिए एक आध पिक्चर देखने चले गए, क्योंकि कॉलेजन बच्चे है, रोकने से रुकते तो है नहीं, तो भी दोस्त को लेके जाता, फिर भी वो दोस्त कभी संतुष्ट नहीं होता, तुम्हारे पास ये है वो है, अब तो भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, फिर तो बच्चों में थोड़ा सा ये आने लगते ना, सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है उनकी, बोलता है कि अरे कितनी मदद कर ली, कितना मैं इसका ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये अपने आप में हीन भावना भर रहा है, तो अब ये जाने। उसको उसने कई बार समझाया कि देखो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी माँ मेहनत कर रही है, तो तुम भी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन वो हीन भावना इतनी रखता था कि न तो वो पढ़ने में होशियार, न ही वो माँ के जो मेहनत है उसको महसूस कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। और दोस्त के साथ भी ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो दोस्त कंटाल करके फिर पीछा छुड़ा दिया कि भाई ऐसी दोस्ती नहीं करनी है, इतना साथ निभाया उसके बावजूद भी ये तो बिल्कुल ही बदलने को तैयार नहीं है। और दोस्त को तो फिर आगे पिता ने बाहर शहर में भेज दिया कि नहीं अब इस कॉलेज से निकलो और दूसरे शहर में जाना है आपको, तो दूसरी जगह भेज दिया। शुरू शुरू में फोन पर बातें होती रहती थी, फिर बाद में नहीं, धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हो गया। अब इधर वो साधारण जो दोस्त थे, सोचा कि अरे वो अपने आप को क्या समझता है, फोन भी नहीं उठाता, ये भी नहीं करता है, अब मैं बताता हूँ कि पैसे वाला किसे कहते हैं। और एक दिन उसने किसी के घर में चोरी कर ली, चोरी की तो पकड़ा नहीं गया, तो उसको तो अच्छा लगा कि अरे वाह, चोरी में उसने मतलब कितने 55-56 हज़ार रुपये चुरा लिए किसी के, कुछ सोने के दागिने भी थे। और फिर वो लेकर के दूसरे शहर में चला गया, क्योंकि अब यहाँ पर तो माँ पूछेगी कि इतना कहाँ से आया, इसलिए माँ को बताया कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, कॉलेज तो हो गया है और हो जाएगा, एग्जाम देने आ जाऊँगा, लेकिन मैं बाहर जा कर के कुछ काम ढूंढता हूँ। बोला ठीक है, माँ को क्या पता, और जो पैसे चुराए उससे कमरा किराया लिया, खुद के लिए टू व्हीलर खरीद ली, बाइक खरीद ली, और इधर उधर घूमना, और धीरे धीरे वो कहते हैं कि जैसा आप चाहोगे ना वैसा आपको मिल जाएगा, तो उसका संग भी खराब मिला, धीरे धीरे धीरे धीरे उसका संग बिगड़ता गया, चोरियाँ चकोरे और बड़े बड़े अपराध करने लगा, और एक दिन पकड़ा भी गया, थाने में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तब माँ को सूचना मिली कि बेटा ऐसा काम कर रहा है, माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकती है माँ, कुछ भी नहीं, उसने तो मेहनत करके बच्चे की पालना की, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है, तो उसने सोचा कि शॉर्टकट अपनाऊं, तो शॉर्टकट के चक्कर में पूरा ही गया जेल में। कोई कोई बच जाते हैं, शातिर माइंड के होते हैं वो, तो क्या सोचिए, अपने आप में सोचिए कि क्या अच्छा कर रहे हैं, ये काम अच्छा तो नहीं है ना, पाप का पैसा पाप में ही जाने वाला है, उसके कभी भी घर में अच्छा नहीं होता है, एक चीज जाएगी दूसरी चीज आएगी, एक नेगेटिविटी खत्म हुई दूसरी नेगेटिविटी आ जाएगी, इसलिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, मेहनत से आगे बढ़ना है, और मेहनत करते करते आप आगे बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं, और आइए आज की पहेली की तरफ। आज की पहेली है, ना मैं त्योहार ना मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल, पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल, तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, और यहीं पर अब फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में, आज आपको वो सिखा देते हैं कॉर्न पाक, मतलब आपको मकई का हलवा सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, कल जैसे महाराष्ट्रियन रेसिपी आप सभी ने सीखी, सुभाष भाई का कहना था, आज कंचन भाई मंडाली से आपकी फरमाइश है कि आप हमें मकई का हलवा सिखाइए, जिसमें गुजराती में कहते हैं डोडा पाक सिखाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, सिखा देंगे। तो डोडा पाक के लिए देखिए, सभी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपको सिखा रही हूँ, हलवा सिखा रही हूँ। ठीक है, खीर नहीं, खीर भी सिखा देंगे आपको, आज हलवा सीख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, मकई लीजिएगा एकदम सॉफ्ट वाले। अभी तो देखिए देसी मकई जो खेतों में है, तो वो वाले मकई लेने हैं आपको, सॉफ्ट वाले जिसके दाने एकदम सॉफ्ट हो। कैसे एकदम छोटे छोटे से दाने, मोती जैसे छोटे छोटे से दाने और एकदम सॉफ्ट वाले, वो मकई लेनी है। ठीक है, और फिर आप ले लीजिए घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। तो ये हो गए सामग्री। क्या क्या लिया, मकई सॉफ्ट वाली, शक्कर, घी और ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे, जो मकई लिए है उसके छिलके ऊपर से निकाल दीजिए और अंदर से जो सॉफ्ट दाने मकई निकलती है ना, उसका आप कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस इतना भी मत कर लीजिए कि अंदर का कचरा चला जाए, मकई ही छिल जाए साथ में, नहीं। ठीक है, वो दाने ही गिरने चाहिए। और फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं कहीं कचरा चला जाएगा, तो आप दाने उंगली से निकाल दीजिए, उंगली से निकाल करके मिक्सर में पीस लीजिए। ठीक है, तो आप पीस भी सकते हैं, और मतलब पीसेंगे कैसा, अध कचरा, एकदम बारीक नहीं। और अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो भी वो तो खैर अध कचरा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये किस किस निकाल दिया, सारा किस एक में इकट्ठा हो गया। अब इसमें देखिए, ये जो हम सॉफ्ट वाले मकई इसलिए लेते हैं कि मकई के दाने के भी ऊपर वो छाल होती ना, तो पक जाते हैं दाने, तो वो छाल अटकता है, वो अच्छा नहीं लगता। फिर हलवा है, खीर है, ऐसे बनाओगे उसमें वो छिलके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सॉफ्ट वाले मकई लेते हैं ताकि इसमें वो छिलके नहीं आए। अब कद्दूकस कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर और गैस चालू कर दीजिए, घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो इसमें ये जो किसकिस आपने डाला ना, कद्दूकस किया है, ये सारा आप घी में डाल दीजिए और धीमी मध्यम आंच पर इसको सेकिएगा। ठीक है, और सेकने के बाद जब आपको लगे कि ये खुशबू दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप सेकेंगे तो वैसे वैसे सफ़ेद जो है वो दाने धीरे धीरे हल्के हल्के बादामी में बदल जाएंगे। ठीक है, बादामी कलर के हो जाएंगे, और तब आप समझ लीजिए हल्के से बादामी हो जाए तो कि हाँ हमारा यह सिक गया है। एक तरफ आप गर्म पानी रख दीजिए, फिर आवश्यकता के अनुसार ये गर्म पानी इसमें डालिए कढ़ाई में। ठीक है, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल दीजिए कतरन करके, और जब ये गाढ़ा हो जाए मिश्रण, पानी ख़त्म हो जाए, फिर आप शक्कर डाल दीजिए। फिर शक्कर एक रस हो जाए, इसका भी पानी उड़ जाए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। लास्ट में इलायची पाउडर बुरका देना है। तो ये बन गया मकई पाक, जिसको कॉर्न पाक कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट रेसिपी है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट वाले मकई लेना है, भले आप कद्दूकस करिए, भले दाने निकाल करके मिक्सर में पीसिएगा, अत कचरा, बहुत ही बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। ठीक है, और फिर आप गैस चालू करिए, कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में घी डालिए, और घी गर्म हो जाए तो ये आप कद्दूकस किए हुए मकई डाल दीजिएगा और धीमी आंच पर इसको सेकिएगा। जब सिक जाए तो एक तरफ गर्म पानी रखिएगा, तो वो गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार इसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट डाल देना है, और फिर थोड़ा सा आपको गर्म होने देना है, तो ये पानी उड़ जाएगा, क्योंकि भाई हलवा बना रहे हैं तो हलवा में तो पानी उड़ ही जाता है। पानी उड़ जाए उसके बाद आप शक्कर डाल दीजिए, शक्कर का पानी भी एक रस हो करके उड़ जाए, बस फिर गैस बंद कर दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए। ये आपके बन गया
मकई का हलवा, जिसको गुजराती में कहते हैं डोडा पाक। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाई है, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा। ठीक है, और फिर से एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो आपको रेसिपी में जो मकई का हलवा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर थी। न मैं त्योहार न मैं उत्सव, फिर भी आता हूँ हर साल। पूर्वजों को करते याद सभी, श्रद्धा से करते उनका ख्याल। तर्पण पिंडदान से जुड़ा मेरा नाम, बताइए मैं कौन सा शुभ काम। तो आज खुशी की बात यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सभी का जवाब सही है, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी अब नाम सुनाना चाहूंगी सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई धानेराव से, संगीता जी कपासन से, शोभा जी कपासन से, अलका जी चित्तौड़गढ़ से, दीपा जी उदयपुर से और फिरोज भाई पालनपुर से। एपी वो कहाँ से नहीं पता, उनका मैसेज आया है। तो सभी का जवाब सही है, बहुत बहुत आभार। श्राद्ध, आज के पहेली का जवाब है श्राद्ध पक्ष। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई चोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई धानेराव से और फिरोज भाई। तो आपके लिए पुनः ढेर सारी ताली। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। यदि आप दूसरों की कमजोरियां अपने में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो शीघ्र ही वे आपका अंग बन जाएगी। अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। जिस भज

आना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना आना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कि

0: दाता को बुलाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए।
4: कोई सुझाव हो तो बताओ।
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सके।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहाँ जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाद, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था। लिहाजा

0: सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
0: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
0: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
2: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
3: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
2: करतार सिंह की अपनी दलील थी लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
3: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
4: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
2: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
3: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
2: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
3: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
5: कौन करेगा हमारी मदद?
3: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
5: ठीक है, देखता हूँ।
2: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए। लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
6: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
7: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
6: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
7: ओह यू फूलिश, चलो देखता हूँ।
2: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
7: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
8: जी जनाब।
9: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
8: सर जी, ये देखिए इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
7: औजार, चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
2: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
10: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
3: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
4: Then I must announce the judgment.
10: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
2: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी, लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
0: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
0: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहाँ तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
2: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहाँ अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल

0: रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालव दोनों विद्यालय की सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर, बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज दे रही है, जिसका चलते आज बच्चों का जो प्रतिभा है आज इस कार्यक्रम का माध्यम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर रेडियो मधुबन के द्वारा बच्चों को हुनर को, बच्चों का टैलेंट को आज प्रस्तुत करेंगे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, सहयोग देने के लिए संस्था का संस्था प्रधान मैम को भी धन्यवाद देते हैं, सभी स्टाफ को और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा सर जी उपस्थित है, देख रहे बच्चों का कार्यक्रम और बच्चों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दो बच्चों को सिलेक्शन किए। तो सर को स्वागत करते, सर अपना परिचय देंगे, सर अपना परिचय इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम।
1: मेरा नाम सुरेश कुमार है।
0: जी सर, सुरेश सर
1: स्थानीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं।
0: और बच्चों का नामांकन मैंने देखा, बालिका का नामांकन बहुत अच्छा है, इसका राज क्या है?
1: यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में बालिकाओं को ज्यादा पढ़ने के लिए भेजते हैं। बालक भी वैसे तो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बालिकाओं की संख्या और भी ज्यादा है।
0: सर, मालव का आसपास जो गांव है उसका जो सोर्स इनकम खेतीबाड़ी ना व्यापार ना कहाँ ज्यादा नौकरी करते हैं?
1: खेतीबाड़ी करते हैं और पास में अल्ट्राटेक प्लांट है, वहाँ पे
0: अल्ट्राटेक
1: मजदूरी के लिए जाते हैं और पिनवाड़ा में भी छुट्टी मजदूरी करते हैं।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय रेडियो मधुबन शाखा आज मालव ग्राम पंचायत में आया और बच्चों का प्रस्तुतिकरण बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा। सर, आपका विद्यार्थी जीवन में जब आप पढ़ाई करते थे, आज तो टीचर बने, सीनियर टीचर बन चुके हैं, लेकिन बच्चों का समय में आपका बचपन का याद में दिलाता हूँ, बचपन में आप किस चीज पर फोकस करते थे?
1: बचपन में ज्यादातर खेलने पे ही ध्यान होता था, उस समय पढ़ाई का वो इतना रुझान नहीं था ग्रामीण क्षेत्र में।
0: जी सर,
1: फिर भी बाकी पढ़ाई का ज्यादा वो था नहीं उस समय, फिर भी हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। और
0: उस समय भी छात्रावास था सर?
1: छात्रावास नहीं थे, बहुत कम थे उस समय।
0: आज तो बहुत पंचायत में छात्रावास है।
1: समय मेरे तो 96 में 12वीं मैंने कर ली थी।
0: जी जी, 96 में।
1: तो उस समय छात्रावास नहीं थे, एक पिनवाड़ा छात्रावास था, लेकिन वो मेरी पढ़ाई ठंडी बेरी में हुई, फिर पास में ही काम है आमली में, फिर 9th से 12th तक पिनवाड़ा मेरा।
0: जी जी, ये शायद बॉर्डर है पाली और
1: बॉर्डर
0: पिंडवाड़ा में, बॉर्डर है क्योंकि आप ठंडी बेरी है और आवली का बात कर रहे हैं, तो ठंडी बेरी से दो है, आमली तो पिंडवाड़ा में,
1: आमली तो पिंडवाड़ा में, आमलिया पाली,
0: तो इसलिए
1: ठंडी बेरी में भी, ठंडी बेरी एक सिरोही जिले में और एक पाली जिले में।
0: जी, क्योंकि इसलिए मुझे याद है, क्योंकि हम आप रोड साइड सभी जगह में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गांव वाले हमें उलाना न दे जो हमें, हमारा पास कोई आया नहीं, इसलिए आज ढूंढ ढूंढ कर आपका पास आए, बहुत अच्छा उमंग उत्साह दिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जो छात्रा है तो उनका भी गीत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं, हमारा बच्चे सच्चे होते हैं और विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का साथ, जैसे सर ने बोला, पढ़ाई का साथ साथ खेलकूद में इच्छा रखते थे, लेकिन बच्चे पढ़ाई का साथ साथ गीत गाने में, कविता बोलने में भी होशियार है। उनका आज मंच मिल रहा है तो अपना परिचय देंगे, बहुत खुशी लग रहा है। तो एक छात्रा उपस्थित है, अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल लेवा, कौन सा ढानी से आते वो भी बताएंगे। बताओ।
3: मेरा नाम चोनिया कुमार, मैं मालव गाँव में रहती हूँ। मेरी फली का नाम है फली वाली फली।
2: वाह, क्या दमदम आवाज है, कोई डर नहीं, कोई झिझक, ऐसे होना चाहिए। और पिंडवाड़ा में जैसे हमें भूला का नाम सुनते हैं, कितना खून में जज्वा है, जैसे राजस्थान का मिट्टी में भी राणा प्रताप का खून जैसे लगा हुआ है, तो लगाव है। और ये सोनिया सुगुना सुरेश तो भरमार है, हर विद्यालय में मिलेगा ऐसा नाम, ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा। तो हमारा आज सोनिया इस कार्यक्रम को सजाएंगे, कोई एक प्रस्तुति सुनाएगी सोनिया
3: जी।
2: और आपका घर में कौन कौन है?
3: मम्मी पापा,
2: मम्मी
3: भाई बहन,
2: भाई बहन,
3: दादी दादा,
2: दादा दादी। सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
3: मम्मी।
2: आई क्यों अच्छा लगते हैं? बाप क्यों अच्छा नहीं लगते?
3: बाप तो मर जाएगा तब भी छोड़ के जाएगा, माँ कभी नहीं जाएंगे।
2: क्या बात, क्या बात, माँ कभी भी नहीं छोड़ सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ माँ होता है, इसलिए माँ का दर्जा अधिक है। बाप तो देते कमाई कर, लेकिन प्यार ममता स्नेह पापा का पास बस का बात नहीं, माँ का बस का बात है। बहुत अच्छा बात बताए सोनिया। तो एक प्रस्तुत करेंगे गीत
3: जी।
2: और तुम्हारा साथ को देने के लिए कोई है
3: जी?
2: अच्छा, उनको भी दीजिए। तुम्हारा नाम बताओ?
4: मेरा नाम हस्की कुमारी,
2: मालव गांव के हैं। और तुम्हारा दोस्त नाम बताओ?
4: मेरा दोस्त रिंकू कुमारी।
2: रिंकू कुमार कौन सा क्लास के?
4: नाइन्थ।
2: नाइन्थ क्लास से रिंकू। रिंकू के पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है, वो क्या आपको देता है? रिंकू क्यों दोस्त बना है? रिंकू आपको जो चीज बोलेंगे रुक जाता है, अभी रुकने के लिए बोले भाई रुको मैं तुम्हारा साथ जाऊंगा तब भी रुक जाती है ना, हाँ, इसलिए सहयोग देता है रिंकू, तुमको हर काम में सहयोग
4: देती है।
2: देती है। और तुमको कभी डर लगता है, अकेला जाने में डर लगता है? रिंकू का बिना डर लगता है?
4: नहीं
2: नहीं डर, रिंकू जाएंगे तब भी आप डरेंगे नहीं ना?
4: नहीं,
2: अकेला जा सकती है। अच्छा, रिंकू रहेगा तो और साहस मिलेगा, लेकिन साहस होना चाहिए। रिंकू तुम्हारा दोस्त है, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा दोस्ती है, तो रिंकू और उसकी, वाह, दोनों का बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न सुनेंगे।

श्री राम के पिता दशरथ थे, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे। श्री राम कहो श्री कृष्ण कहो, इन दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम की माता यशोदा थी, श्री कृष्ण की माता वासुदेव थी। श्री राम कहो श्री कृष्ण कहो, इन दोनों का मतलब एक ही है।

0: पीले थे श्री कृष्ण के कपड़े, नीले थे श्री राम को श्री कृष्ण को, इन दोनों का मतलब है कि श्री राम लड़े थे मथुरा में, श्री कृष्ण लड़े थे मथुरा में, श्री राम को श्री कृष्ण को, इन दोनों का मतलब एक ही है।
1: एक है और एक के है ना, श्री राम कहे चाहे कृष्ण कहे चाहे हनुमान कहे चाहे भगवान कहे चाहे अल्लाह कहे चाहे खुदा कहे, लेकिन सबका मालिक एक है। अब हम सब एक के है, हम सब एक है ना, आत्मा एक और एक के है परमात्मा कहे। तो श्री राम कहे चाहे हनुमान कहे जैसु कहे जिसको आप भगवान मानते है, लेकिन वो तो सबका मालिक है, एक है। बहुत अच्छा संदेश है, भक्ति में हृदय का तार परमात्मा तक पहुंच रहा है। और बच्चिया इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब जोड़ते हैं तो खुशी लगता है। तो सोनिया तुमको खुशी लगा
0: जी?
1: कितना खुशी? बहुत खुशी, वाह रे वाह। और उसका खुशी का राज वो पूरा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। और तुम्हारा दोस्त कौन है?
0: नीतू कुमारी।
1: नीतू कुमार कौन सा क्लास?
0: 9।
1: तुम बड़े होकर क्या बनेंगे सोनिया? डॉक्टर, इंजीनियर, मैडम, पायलट?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है?
0: मनुष्य का सुई लगाना,
1: इलाज। सुई लगाते तो मनुष्य को सुई लगा देंगे तो मनुष्य बेहोश हो जाएगा। जो बीमारी है जिसका इलाज चाहिए उसको इलाज करते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं। डॉक्टर का काम क्या है? ऑपरेशन करते हैं। सुई लगाना कब होता है? जिसको सुई आवश्यकता है उसको सुई देते हैं, नहीं तो सबको सुई लगा देंगे तो मनुष्य को क्या होगा? मर जाएंगे। हाँ, तो इसलिए सुई लगाना, डॉक्टर सोच समझ कर अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए अच्छा पढ़ाई करना चाहिए। घर में कोई डॉक्टर है तुम्हारा?
0: नहीं।
1: घर में कोई
0: परिवार? नौकरी में।
1: नौकरी में क्या नौकरी करता है?
0: वो स्कूल में जाता है।
1: स्कूल में जाते तो पढ़ाई?
0: चपरासी।
1: चपरासी
0: जी।
1: चलो स्कूल में पढ़ाई करते बहुत अच्छा है। और तुम तो डॉक्टर बनेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा जोर से, है ना? तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक गीत बहुत अच्छा लगा, और एक गीत सुनाएंगे, आदिवासी गीत। आदिवासी गीत सुनाएंगे? चलिए सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बात।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज तो बच्चे बिना खाए पिए भी तो लेट हुआ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज रेडियो मौका दे रहा है तो मौके का फायदा लेंगे। और सोनिया नाम जो सुनते हर विद्यालय में सोनिया तो नाम है ही है, और ऐसे टैलेंट बच्चे होते हैं सोनिया, इसलिए जो भी सुन रहे सोनिया सुगना सुरेश ये नाम देते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा यूनिक होते हैं। चलिए सुनते हैं सोनिया से और एक प्रस्तुति। ओके रेडी।

0: આ તો માં તો પેલી પિલકવાલા રે, આદિવાસી જંગલ રખવાલા રે, આ તો માં તો પેલી પિલકવાલા રે, આદિવાસી જંગલ રખવાલા રે, આલી કાની જંગલ માં રમે અમુ આદિવાસી બિરસા મુંડા વાલા રે.
1: आदिवासी मैंने शुरू से जो बसवास करते उसको आदिवासी कहते हैं, शुरू से सर आदि
2: आदिकाल से निवास करने.
1: तो आदिवासी नाम में इतना मिठास, इतना शुद्धता, और देखने में हमको भी उनसे बात करने अच्छा लगता है. आदिवासी का परिभाषा, आदिवासी का क्या लखा है, उस आदिवासी किसका साथ जोड़ते हैं?
2: आदिवासी आदिकाल से जो निवास करते हैं इस विश्व में या भारत भूमि में, जो आदिकाल से निवास करते हैं वो आदिवासी कहलाते हैं. ये इनका संबंध जल जंगल और जमीन से है और प्रकृति से है. जोहार इनका जो अभिवादन है, जो जोहार का मतलब होता है जो प्रकृति है उसको हम नमन करते हैं और प्रकृति के साथ ही प्रकृति के अनुरूप रहने का प्रयास करते हैं और प्रकृति को बचाने का हमारा प्रयास रहता है और इसी के साथ मिल करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं.
1: सही बात. इसलिए आदिवासी का एक ही स्लोगन होता है, एक ही नारा होता है, हमारा गांव में हम सरपंच, हम सरकार, हमारा गांव में हम सरकार, है ना सर? आपका स्लोगन कोई भी आदिवासी लोग देखते ना, झुंड में जाते हैं, नारा लगाते हैं, हमारा गाँव में हम सरकार, दिल्ली में सरकार, जयपुर में सरकार, लेकिन गाँव में
2: गाँव की सरकार.
1: ये आपका बहुत
2: जो इसी के हिसाब से चल रहा है,
1: क्योंकि जल जमीन जंगल और
2: स्थानीय जो नियम कायदे हैं वो स्थानीय पंचायत के हिसाब से चल रहे हैं. इसी ध्येय को लेकर के हमारा वो रहता है कि हम
1: सरकार. सरकार भी डरता है सर आपको देखकर, ये सरकार सबसे बड़ा सरकार है, क्योंकि आपको देखकर वो लोग सरकार बनाए. ऐसे शुरू से आप लोग का संगठन एकता और बचाव के लिए जंगल को बचाते हैं,
2: जंगल को,
1: जल को बचाते हैं, और जमीन को कोई लेने के लिए आएगा तो आपको उसको भगाएंगे. जैसे भूला में सर, भूला का एक कहानी होगा ना, बिरसा मुंडा जैसे
2: लिलूरी बडली वाला,
1: हाँ उसका बारे में जानते हैं ना, उसका गीत भी बना है,
2: गीत भी बना हुआ है, ज्यादा जानकारी नहीं है फिर भी
1: है. तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमें जाते जाते अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चाहेंगे. लास्ट में एक अंतिम प्रस्तुति होगी, है ना सोनिया? एक अच्छा गीत सुना देना, देशभक्ति हो, चाहे आपका होली में दिवाली में जो गाते हैं कोई भी त्योहार में एक गीत सुनेंगे. लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM. ये अंतिम प्रस्तुति होगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: चलिए सोनिया सोनिया सोनिया बार बार सोनिया का नाम आ रहा है क्योंकि सोनिया जैसे चांद जैसे आकाश में सभी तारे होते हैं लेकिन आलोक नहीं दे पाते, एक चांद पूरा रोशनी देता है। तो हमारा इस विद्यालय के होबनार हमारा अंतिम प्रस्तुति करेगी।

ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तू ए दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो बाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। माई तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, बाता मांगे मेरी तेरिया। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तू ए दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो बाज लगाए तो तिरंगा।

0: कई ना कई।
1: ताली बजाओ सोनिया के लिए, जोर से ताली सोनिया को भी ताली बजाओ।
2: ताली का साथ स्वागत के बोले बहुत सारा बच्चे, लेकिन सिलेक्टेड बच्चे और स्वइच्छा से खुद प्रस्तुति देने के लिए सोनिया आगे बढ़कर आया, इसलिए हमें बहुत खुशी है। रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था का संस्था प्रधान मैम को भी धन्यवाद और हमारा सर को भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सोनिया कैसे लगा?
0: अच्छा।
2: कैसे लगा?
0: अच्छा।
2: सर आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर?
3: कार्यक्रम आपने विद्यालय में कार्यक्रम किया, ये बहुत ही अच्छा रहा। आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विद्यालय में आए और बच्चों को जागरूक किया और इस रेडियो FM के बारे में जानकारी दी और उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने का आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको विशेष रूप से पुनः धन्यवाद देता हूँ।
2: धन्यवाद।
3: जय हिंद,
2: जय हिंद, जय भारत, जय जंगल, जय जुहार। जुहार को भी जुहार है, नमस्ते को भी नमस्ते। हम समझते हैं नमस्ते का मालिक मालूम होता है, तो बहुत खुशी लगा। ग्रामांचल में आए हैं इतना दूरस्थ जगह में मालव, हम तो ढूंढते ढूंढते कितना दिन से सोच रहा था भाई मालव कब जाएंगे कैसे जाएंगे, और ये तो आबू रोड से हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आज मौका मिला दूरस्थ जगह पहला बार आए, फिर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और इसका श्रेय तो माता पिता परिवार और विद्यालय परिवार को जाता है। सभी को नाम का साथ, मैम का नाम का साथ, सर का नाम का साथ, सभी बच्चों का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। अच्छा सभी को आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: say the parent was critical. Sometimes the parents have been physically abusing children, you know, beating a child, which is very common. So, or a parent has been very critical, so the child always has to keep proving themselves. Now, as a defense mechanism, so that no one should ever criticize me, no one should ever say anything to me, everyone should be scared of me.
1: Offense.
0: I become like this, loud and aggressive. And then I see the result. No one dares come and says anything to me. That's it. I've achieved what I wanted. It's okay how they feel. It's okay how they talk behind my back. In front of me, no one dares talks to me like this. Because as a child, someone was saying a lot to me. And that's created an impact. I don't want to listen to any of it more. So I build this wall. But it's actually a very innocent child inside. Very innocent.
1: But gone through some situations which he could not fight, he could not rise up.
0: Not only that, that child experienced hurt at that time.
1: Yeah.
0: Now the child doesn't want to get hurt again. Even if the child is now 30, 40, 50, 60 year old, doesn't want to experience hurt, so he becomes loud. So that if I'm loud and aggressive, no one will say anything. If no one says anything, I'll never get hurt. So it's a defense mechanism. So that I don't get hurt. Now, the minute I start working on myself and I say, I will not get hurt even if someone says something. So I'm strong inside. I can drop this artificial defense mechanism and I can be my natural, polite, sweet self to everyone.
1: So all these things can be, overcome by... Again, by being aware of your thoughts.
0: Yeah, being aware.
1: And awareness. And also, I think by being aware and doing this awareness meditation, whatever we were teaching the viewers, by being aware, you're also detached, aren't you?
0: Absolutely, because you're detached from your own perspective. You see, when this wife, this case of domestic violence, I am hurt. My husband hit me. How could my husband raise his hand on me? Where is my respect? You're attached to your own perspective. The minute you detach from your perspective and then you see the other person's perspective, you're stable. Your hatred has changed to sympathy. Because we talk about understanding people. I don't understand you. Why I don't understand you? Because I'm so attached to my perspective that I just can't see your perspective. Because I can see the situation only from my side. And from my side, it's totally different. But to be able to see it from your side, I'll have to get up from this chair and then come and sit on that chair. But for that, I have to get detached from this chair. I'm so stuck to my position, to my ideas of right, that I can't even get up from there. And that's empathy, that's understanding, and that's relationship.
1: One more question was that you were telling the other day about when a person is empty within, he gets angry and there's void. Emptiness, what do you mean by emptiness within?
0: Vacuum.
1: Of what? Where?
0: There are a lot of people who would say today that I have everything in life.
1: Mm-hmm.
0: I have professionally, family, wonderful family, materialistically have everything that I could think of. But inside there is something empty. They're not very sure what they're talking about. They're not even able to explicitly...
1: You mean to say there's some kind of a search?
0: There is...
1: Some kind of emotional fulfillment?
0: Yes.
1: Which is not fulfilled?
0: Which has not happened. Now what has happened is, we were doing all this for happiness, for contentment. At the age of 30, 40, whatever, we realized I've got everything. But I'm still experiencing stress and anger and worry and anxiety. So I'm empty in the sense that what I wanted, I haven't got, even though I got the whole list, what I thought was supposed to give me contentment. And then I say I'm empty. Now, while getting this success or this achievement, they compromised a lot.
1: Mm.
0: That compromising
1: makes
0: is making
1: feel
0: them feel empty.
1: Compromised a lot for...
0: Compromising
1: means...
0: in the sense, peace is my nature, but I got angry many times. honesty is my nature. But I compromised on that a number of times in order to achieve success. Humility is my nature. But I showed ego and acted through ego a number of times to reach that success.
1: So then you feel guilty. No? How can you feel empty?
0: No, and I did all these things. Every time I was doing these things, I was going against my natural personality.
1: So you feel bad about it. You feel sad about it. You feel guilty about it.
0: It's bad about it now. But even during that journey, let's say, that's what we talked about. This glass is full. Now I'm on the journey towards success. But I had to take care that the glass should not spill. But if I kept spilling the glass on the whole journey, and then 10 years later I've achieved the success, but the glass is empty by the time I reached there, then I'll say I'm empty. Because I created so much anger and resentment and sometimes revenge, and I did everything possible to achieve that success. It doesn't mean success is wrong. Doesn't mean achievements are wrong, just that I had to take care of this glass while moving towards them.
1: No, but before the movement, he was empty, you know, because...
0: No, look at a child, so contented. That's what's so attractive about a child. We teach the child then as he's growing up, in order to be happy, you have to get more marks. In order to do this, you have to do this. We teach him. And then in order to come first, you have to get tensed and you have to compete with your friends. Look at a child when the child is sleeping. So much serenity, calm, composed, relaxed, absolutely contented. The glass is full.
1: Can you teach us how meditation that we can sleep well like a child?
0: Let's sit back and relax, preparing ourselves for a good sleep. Let me just look at the day. Everything that's past, it's past. Full stop. However tough, however challenging, it's over. Now is a new moment and a new response, a new feeling will bring me and the situation in control. I am a pure, conscient energy. I'm already complete, beautiful, contented, and successful. Everything that I was looking for outside is already there in me. The purpose of my life is not to achieve it outside, but is to express it while I'm moving through my goals. I, the complete, perfect, pure, conscient being, master of the body and every sense organ, everything in control. Om Shanti.
1: Did you enjoy the meditation? I hope so. Please try it before you sleep. Namaste. Om Shanti.
0: Om Shanti. Every time we think of the past, we are making it the present because we are creating the same emotions again. Past is past, full stop. No why, what, how, but full stop. Let it not repeat on the mind. It is like rubbing the wound and therefore not allowing it to heal. There is nothing to learn from the situation that happened. The only thing I need to learn is whether I had the choice of responding in another manner. Holding on to the past, not letting go, will only create pain in me. The situation is the same, but the longer we hold it, the pain increases. In relationships, no one is ever wrong. Each one is...
2: तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात. और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले, और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं और हमारे शहर लखनऊ से, कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लखनऊ के शहर से, खूबसूरत शहर से आती है हमारी साथी, हमारी सीनियर बहन, जिनका नाम है ममता कपूर। और ममता कपूर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और एक शानदार रेगुलर सेवाओं के बाद अब समाज में कैसे अपनी सेवाएं दे रही हैं, या कहें कि दूसरी पारी जीवन की कैसे खेल रही है, आइए हम जानेंगे। तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और पर हम कहते हैं ना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो ममता जी आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
2: जी, ऑक्टावो की वादियों से आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो शो और आप इसे सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी, और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर, नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से में ममता जी हमारे साथ हैं और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है, और अब आप थाम के बैठ जाइए आपका दिल अगले 1 घंटे के लिए, देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, तो माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान है। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से सक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जब मैं हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना, मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता है था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे SSC बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी, उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हूँ ना आपके साथ। तो वो और मैं, मेरे से वो 2.5 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही SSC बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया। और वहाँ भी मुझे भैया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन पे इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर, मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे। और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स, सब उसी क्लास में करवाए। मुझे कहीं भी, मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझ पे दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई, और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई, मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है, इसलिए ये काम नहीं कर पाई, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया, और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल आबाद गत से करे, और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स, सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई, इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया। मेरे एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और मैं आप विश्वास करें, मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई, और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए। आई रिटायर्ड एज मैनेजर, मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे। बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से। मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही, और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
2: जी, तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन, और जब हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता, और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं, या हम उनको यही बताना चाहते हैं, और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं, जागरूकता, कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए, और उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है, और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक, जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया, बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भी भरपूर प्रयास किया और वो अमेरिका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला, और आपने वहां पर अपने प्रेम से, अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो हम भी इस बारे में जानते हैं कि हम एक आदमी की जो गरिमा है, जो देश के संविधान ने उसको दी है, तो यह वो गरिमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके साथ में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दोनों ही आपने उसको मिसाल बनाते हुए आपने जीवन को दिया है, और इसलिए हम लखनऊ से आपसे जुड़ पाए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मन की आंखों से 107.8 FM, और मैं हूं आपका होस्ट शरद। तो आज के इस शो में ममता जी से फिर हम आगे बढ़ते हैं, और उनके जो उन्होंने बात कही है, देखिए 2016 का जो कानून देश में लागू है, और आज भी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रैंप नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं एक व्हीलचेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध रहे, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है, तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया, तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे, और कैसे वो सहयोग मिल पाया, और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है, और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, लोग कहे बिना ही कह देते हैं। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अंबेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
3: देखिए जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो

0: मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने चार लड़के आए और जैसे गॉड सेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के आठ हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या? तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं। बस उस दिन का दिन, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया, और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या मतलब हर क्लास, हर ट्यूटोरियल, हर आउटसाइड लेक्चर, सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला। मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया, लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा। वरदहस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की, उसके अलावा साथियों ने, और ईश्वर का वरदहस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए एक भैया जी मिल गए रिक्शे वाले, तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे, वो हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे, मुझे मैनुअली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के चार जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके। और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की, मैंने LLB भी की भी डिग्री पाई, और वहाँ ज्वाइन करा नहीं लेकिन मैं एग्जाम देने गई, और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे। और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे, और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती, लेकिन देखिए भगवान, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा बावेली लोबियो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में बन गई, और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी अपने ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया, और मैं उस पर बैठ के 9:45 से शाम को 5 बजे तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी, और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की, और मेरी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं डॉक्टर ममता कपूर हो गई। फिर उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में, तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अट्यूनमेंट्स लिए, मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था लेकिन उससे और बढ़ा। लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर मास्टर थे उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी। तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और इस तरह मेरा सही पूछिए तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
1: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुव्वत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहीं कि
0: हाँ
1: हमें कोई चुनौती आ जाए तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में रैंप, अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया और बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल, उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि भले मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था, साजिश कॉलेज से कहते हैं, और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा था। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी। तो फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए, उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया। मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में, और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो जो तो जज्बा है, तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके, वो मैं जानना चाहूंगा।
0: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल्य थे, उन्होंने
1: जी
0: इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की और मैं
1: जी
0: उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36 37 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया। तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य कार्य और मेरी मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। ये जो चीफ होते हैं बैंकों के उनको तो हर 3 साल 5 साल में ट्रांसफर होके जाना, पर जो आया उसने ही मदद की। किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ। हाँ, इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला, और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे लेके जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रैंप जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी। लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए। तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब मुझे ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी।

0: मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई हूँ,
1: बहुत बढ़िया
0: रैंप से वापस गई हूँ। इतना कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला।
1: जी। और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता दी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे, उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डीआर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं। और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जो जल रहा है, कुछ नेताओं की क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उस उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
0: बहुत
1: तो
0: परेशान हो
1: उनको
0: गए
1: उनको
0: हैं।
1: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी भी आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा?
0: नहीं, उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि
1: जी
0: मेरे मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे। यहाँ लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने
1: जी
0: बताया। तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत वो मिली है।
1: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहाँ पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है, तो ये भी धारणा कई बार लोग हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं,
0: बिल्कुल
1: और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं, ये हमारे जीवन के मूल्यांकन किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे शख्सियत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे, और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो 1990 से लेकर शायद 1991 से लेकर कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
0: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को देती है उसके लिए भी हुआ था, नाम
1: नॉमिनेट हुआ था
0: मेरा
1: आपका नाम?
0: प्रस्ताव नॉमिनेट हुआ था। हाँ,
1: जी
0: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो,
1: जी
0: उसने लखनऊ में यूपी से 7 ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
1: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिल्य को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया जो वो 8 हाथ, वो हेवनली 8 हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी हमने
0: हाँ
1: याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया, और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे। जी
0: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
1: जी और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी, और शायद आप पहली शख्सियत है जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, ए से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है, तो ये सब जो करने की का जज्बा क्या माता पिता का रहा, या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आप

0: अंदर आई और वो जल पा रहा, कैसे हुआ ये?
1: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
0: जी,
1: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
0: और मैं आपको बताऊँ, हमारी दो बेटियाँ होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है। उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसमें लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है। तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें जिससे जल्दी से आहत ना हो। तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं, और वहाँ पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में। और मैं एक जमाने में, एक दौर में, कुछ बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से, या कहीं समुदाय से हम और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में, कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और इस सब में, भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसमें है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है। और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
0: जी,
1: ये तकलीफ दे बात है।
0: जी जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं, और हम सबको जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है, श्रोताओं आप जान लें कि खासतौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा। तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी, आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने जीवन में अपना एक मुकाम पाया, और उसका कारण है शिक्षा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी बहुत सारे देश के बच्चों के जो हालात है आप देखते हैं,
1: क्या मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूंगी? मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के, यहाँ के टॉप फोर स्कूल के बच्चों का मैंने लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में, अपने ओआईसी से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं, और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो जब वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया, और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन, जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था, जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी, मैं 5 साल पहले मधुबन से एक हमारे पहले के ही जाने वाले अनिल भट्टागर, जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए, वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो वो आए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इस पे भी मैं ईश्वर की दया ही कहूंगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के, किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना, और मिस्टर भटनागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ। बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हो चुकी हूँ और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं बाबा की होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ। और अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अब ब्रह्म कुमारी में आने के बाद मुझे पता चली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं वो सब आत्माएं हैं और उनका हमारे साथ अटूट और भाई भाई का नाता है और ईश्वर से हमारा अटूट नाता है, जो कि मुक्ति धाम शांति धाम में रहते हैं। और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है वो बाबा की याद और साथ में गुजरे और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूं और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूं और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
0: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके। और आज हम इस बात का, इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं। ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशव को जमाने और सजाने और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें। और श्रोताओं, फिर से ऐसी ही एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ।
1: शरद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने बहुत अच्छे अनुभव साझा किए हैं, मजा आ गया। आशा है कि हमारे भाई बहन इसका

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं ताल पे गिनती,
2: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात। छोटी

0: नमस्ते भाभी, ये लुई की लंबी लिस्ट वाली सारी सब्जियां हाजिर है।
1: ओ शुक्रिया मनोज, अब क्या बताऊं, जब तुम्हारे लुई भाई साहब रसोई में लग जाते हैं उन्हें तो घंटी भी नहीं सुनाई देती। कह रहे थे आज सबकी छुट्टी है, कुछ खास बनाता हूँ।
0: अरे फिर तो अच्छा हुआ, जो मैं बाजार निकल ही रहा था आज मंडी में ताजा ताजा। हाँ भाई एल्मो, ताजी भिंडी और पालक भी।
2: एल्मो मनोज अंकल के साथ खेलेगा अपना नया खेल, सब्जी गिनो रंग से छाटो। एल्मो गिन के छाटेगा 3 लाल और 3 हरी सब्जियाँ।
0: 1, 2, 3 हो जाओ शुरू।
2: पहले 3 लाल सब्जियाँ, गाजर। 1, 2, 3 3 लाल गाजर।
0: अरे वाह।
2: और अब 3 हरी सब्जियाँ, भिंडी। 1, 2, 3 3 हरी भिंडियाँ।
0: क्या बात है, तुमने तो चुटकी में गिन ली। अच्छा एल्मो, भाभी बाद में मिलते हैं।
2: ओके अंकल।
1: अच्छा मनोज, तो क्या कहते हो एल्मो, हो जाए मम्मी के साथ एक और गिनती वाला खेल?
2: नया खेल मम्मी के साथ।
1: बिल्कुल, और इस खेल को कहते हैं ताल पे गिनती।
2: ताल पे गिनती।
1: हाँ, मजेदार गिनती। एक खिलाड़ी सुर गाएगा और दूसरा उन सुरों को गिनकर उतनी ही बार इस डब्बा ढोलक पर ताल बजाएगा।
2: हो, जितने सुर उतनी बार डब्बा ढोलक। ओके, अब मम्मी पहले एल्मो बजाएगा
1: और मम्मी गाएगी। एल्मो तैयार?
2: सुपर तैयार।
1: तो शुरू करते हैं। ला।
2: मम्मी ने गाया 1 सुर, तो एल्मो बजाएगा ढोलक 1 बार।
1: वाह एल्मो वाह, पहला राउंड हुआ पार। टडा, अब अगला।
2: ला ला। 1 ला और 1 ला। मम्मी ने गाया 2 सुर और ये एल्मो ने बजाया ढोलक 1, 2, 2 बार।
1: बिल्कुल सही गिना उस्ताद एल्मो डब्बे वाले। और अब ध्यान से सुनो। ला ला ला।
2: 1 ला, 1 ला और 1 ला। यानी 3 सुर। एल्मो को ढोलक बजाना है 1, 2, 3 3 बार।
1: और इसी के साथ एल्मो ने किए ताल पे गिनती के सभी राउंड पार। शानदार। अब एक और ताल पे गिनती वाला खेल हो जाए।
2: Yeah! जाए।
1: ताल पे गिनती द्वितीय। इस खेल में हम दोनों बारी बारी से कोई धुन गाएंगे और दूसरा उस धुन में जितने सुर है उतनी ही चीजें गिनेगा।
2: हाँ, तो पहले मम्मी गाएंगी और फिर वो चीजें गिनेगा। रेडी?
1: रेडी। तो पहली धुन है ला ला ला ला।
2: 4 सुर, 4 चीजें। हाँ, यूरिंग। 1, 2, 3, 4 4 किताबें।
1: एल्मो ने पूरा किया एक और धुआंदार खेल।

0: अब मम्मी के गिनने की बारी
1: और एल्मो सुर में गाएगा ला ला ला ला ला।
0: पांच सुर। क्या गिनूं? हाँ, एक दो तीन चार पांच, पांच कटोरियां।
1: वाह मम्मी गिनती वाली, आपने भी राउंड किया पार फटाफट। अब मम्मी गाएगी, मम्मी गाएगी।
0: ठीक है, शुरू करते हैं। ला ला ला ला ला ला।
1: ओ छह सुर, छह सुर। एल्मो गिने का छह चम्मचे। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छह, छह छोटी छोटी चम्मचे।
0: शाबाश।
1: हाँ, मम्मी एल्मो को ताल पे गिनती खेल के बहुत मजा आया। क्या मम्मी और एल्मो और खेल सकते हैं?
0: एल्मो, अभी मम्मी को थोड़ा काम तो करना है, पर एक आइडिया है।
1: आइडिया?
0: हाँ, काम का काम और खेल का खेल। क्या एल्मो उस फाइल के ढेर से मम्मी को गिनकर तीन नीली फाइलें दे सकता है?
1: उस्ताद, एल्मो गिनती वाला तैयार है मम्मी। आइए लो, एक नीली फाइल, दो नीली फाइल,
0: हाँ,
1: तीन नीली फाइल।
0: शाबाश।
2: वैसे एल्मो को गिनने का शौक तो है, पर वो साथ साथ डब्बा मतलब ढोलक बजाने में भी सच में उस्ताद है।
0: हाँ, और मजे की बात तो ये है कि चाहे घर में रखी या आसपास की चीजें हो, गागा कर गिनना हो या एक ही रंग या आकार की चीजें ढूंढनी हो, ये सारे ही खेल गिनती सीखने के मजेदार तरीके हैं। हर रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
2: अरे वाह, ये तो काफी जबरदस्त खेल है भाभी, मैं भी चिंटू के साथ ट्राई करूंगा। वैसे चिंटू भी बाजार में सारी दुकानें गिन लेता है।
0: वाह बढ़िया है।
2: और उससे भी बढ़िया, जब बच्चे हमें गिनने को कहते हैं और हम भी खेल खेल में बच्चे बन जाते हैं।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

am light, and my world is made up of light. Lightness. Cool.

ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2026 और आज हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक तरफ सेवा का इशारा भी दिया है कि कैसे सेवा करते जाना है, अनेकों को रास्ता बताना है, बाप का परिचय देना है, तो दूसरी ओर बाबा ने स्व उन्नति के लिए भी हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे खुद भी ऐसा पुरुषार्थ करो, सेंसिबल बनो, पुरुषार्थ करने के लिए भी

कैसे निरंतर याद की यात्रा में रह सकते हैं, और श्रीमत पर भी ध्यान रखना है कि हम निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं, और इसीलिए बाबा कहते जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः हो जाता है। तो मन के अंदर शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखते हुए सेवा भी करनी है और स्व उन्नति का ख्याल भी रखना है। साथ ही साथ बाबा ने समय पर भी अटेंशन खिंचवाया है कि अभी समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए तुम बच्चों को समय को देखते हुए भी अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। उसी समय में शायद दिल्ली में कोई मंडप बहुत बड़ा बनाया था सेवा के लिए, और प्रदर्शनी बहुत अच्छे से लगाई थी। बाबा ने देखा, बाबा कहते बच्चे अपना मंडप खरीद लो ताकि जहां भी कोई खुला मैदान मिले अपना मंडप लगा दो और प्रदर्शनी कर लो, सेवा कर लो। हॉल के पीछे किसी को कन्विंस करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें कितना समय जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस के लिए ऐसे साधन भी ले लो ताकि आगे चल करके ये साधन भी बहुत अच्छा काम में आएगा। तो आज बाबा ने सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है उस पर हमारा ध्यान खिंचवाया। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। आज की मुरली से प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर है, सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आए हो। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं, दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म, अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, इस दुनिया में मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं, जयंती है तो जन्म कैसे लेते ही नहीं समझते। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ, शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है, गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को, जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्य की बुद्धि में बैठे। ये ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर, ड्रामा में फिक्स है तो बाबा को आना भी है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते ये ओपिनियन अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाएं का वर्षा दे रहे हैं,
राजयोग सिखला रहे हैं, हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। बाबा तो अनुभवी है, प्रदर्शनियों में देखने के लिए हजारों आते हैं, उसमें से कुछ लोग राजयोग सीखते हैं, फिर आते आते उसमें से भी घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म कराने वाला है रावण, उनके मत पर नहीं चलो। रावण की मत पर चलने से ही अनेक छोटे छोटे विकर्म भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई को दुख न दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है ना, बाबा कहते रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। ये कोई मंत्र आदि नहीं है, ये तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, कल्प कल्प ये समझाया था। गाते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी है पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? दुख से, रावण राज्य से। बाप आकर लिबरेट करेंगे तो किससे करेंगे? दुख से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में इविल, डेविल या शैतान कहते हैं। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं। बेहद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं। क्या खातरी देते हैं? तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूं। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी, हर एक अपने अपने धर्म के सेक्शन में परमधाम में चली जाएंगे। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर वन। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं। क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? नहीं। ये नॉलेज किस चीज का है?
बाबा कहे कोई बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज नहीं है, परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज में सारी नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि सब का मूल माखन है गॉडली नॉलेज। कितनी सुंदर गहरी बात बाबा ने कही कि बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज व जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो तुम जानते हो, सतयुगी नई दुनिया की जो रसम रिवाज होगी वही वहां चलेगी। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा जाता है सतयुग। तो इंजीनियरिंग की नॉलेज भी इसमें आ जाती है, क्योंकि नई दुनिया के क्रिएशन कैसे होगी, इंजीनियरिंग ही होगी एक प्रकार से। तो इसीलिए महल आदि बनाना तो वही रिपीट करेंगे, वो इंजीनियरिंग है, उसको कहा जाता है सतयुग। वहां की रसम रिवाज को मनुष्य नहीं जानते, वहां कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, वहां की इंजीनियरिंग ही न्यारी होगी। वह गाए ही जाते हैं सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, जो रसम रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। वह ड्रामा में नोंद है, आत्माएं अपना पार्ट बजाएगी, मकान कैसे बनाएंगे कैसे रहेंगे वह सब नोंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर वहां है देवता, शास्त्र में यह बातें कुछ नहीं है, ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं विष्णु का नहीं, ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद ये बनते हैं। राजयुग की तपस्या करते ही यहाँ है संगम युग पर, सूक्ष्म वतन में नहीं, यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाप समझाते हैं ये अंतिम यज्ञ है, फिर सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, किसम किसम के यज्ञ रचते हैं, बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है, ये यज्ञ सबसे बड़ा है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। फिर बाबा कहते दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, ये भी अच्छा है, मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यह जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो, छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि न हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है, अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, प्रदर्शनी करने वाली जो कमेटी थी उस समय, तो बाबा उनको डायरेक्शन दे रहे हैं वाटर प्रूफ मंडप बना लेवे। और बाबा डायरेक्शन दे रहे, बल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे, अर्थात क्लास कराते थे। बाबा तो बाहर वालों के सामने तो नहीं भाषण करते थे, बच्चों के सामने ही करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, कोई विघ्न न डाले। अच्छा इंश्योरेंस करा दो, अगर ऐसी कोई बात हो तो बाबा कहते इंश्योरेंस करा दो, सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है, अभी तो हम बाप के साथ है, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है, सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते मैं सदगति के लिए आया हूँ,
फिर रावण से दुर्गति होती है, सदगति दाता तो एक बाप ही है, कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते ये मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, ये ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। तो खुद समझो तो कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ ये समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो, यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे। मनुष्य अंदर में समझते हैं कि अगर हाँ परमात्मा आ जाए तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्य को तो पता नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं, अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वो तो सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या ये सब भगवान करते हैं? कोई मांस खा रहा है, कोई लड़ रहा है, क्या ये सब भगवान करते हैं? अगर सर्वव्यापी है तो क्या ये सब भी करते हैं भगवान? उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहां की वहां रही, सिर्फ प्रजा बनती है, राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए। बाबा जब हाथ उठवाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, सब हाथ उठाएंगे राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन राजधानी स्थापन करने में बाबा कहते कितनी डिफिकल्टी है। वहां कोई असुरों के विघ्न थोड़ी पड़ते हैं, धर्म स्थापन करने में कोई असुरों के विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता है शादी तो जरूर करनी है, शादी बिगर दुनिया कैसे चलेगी, अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी, जो दिन बीता वह कल्प पहले मुआफिक, रात को सोते हैं ख्याल चलता है, आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं ये ड्रामा है, उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं। तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधेरे में है, जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार, आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते हैं, वह भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा, ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती, विघ्न पड़ते हैं काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं, हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया,
बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते

कहते हैं मन मना भाव बस, इतने प्यार से कहते बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए, उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, इसका कल्याण नहीं करते हैं तो जरूर पद भी कम मिलेगा, जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहां प्रदर्शनी होती है तो वहां हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं। बाबा प्रेरणा देते हैं कि कहां प्रदर्शनी आदि अगर है तो वहां हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेजते हैं, शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करे चाहे 10 रुपए से करे, पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपए भी खर्च होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो किस जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। कोई भी कर्म करते हो लेकिन मुख्य बात अंडरलाइन की है बाप को याद करने की। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सब फिकरातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, जो बीता कल्प पहले मुआफिक। दूसरी पॉइंट, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी, यह जिम्मेवारी है। लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। आज का स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे, उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जहां सर्विस है वहां किसी के कमजोर संस्कारों को न देख, उनके प्रति रहम दिल की दृष्टि रख, अपकारियों पर भी उपकार करो। अच्छा ओम शांति।